आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई साल 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 25 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रेल की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। यह मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी।

0: वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरों मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The new Chief Minister of the State and the Council of Ministers will be sworn in tomorrow on the birth anniversary of Kavi Guru Rabindranath Tagore. Meanwhile, preparations are underway for the swearing-in ceremony at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Necessary administrative meetings are being held and tight security arrangements are being put in place for the occasion. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, senior BJP leaders and chief ministers from other states are expected to attend the oath-taking ceremony. President of Vietnam Tho Lam has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge, but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Speaking on the occasion, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis asserted that entrepreneurs, investors and professionals from the technology and manufacturing sectors in countries like India and Vietnam will shape the future of Asia. India and Vietnam have discussed to deepen cooperation in emerging technologies, innovation, research and startup ecosystems. Minister of State for Science and Technology, Jitendra Singh, held bilateral talks with his Vietnamese counterpart, Dr. Vu Hai Huang, in New Delhi yesterday. During the discussions, both sides exchanged views on cooperation in artificial intelligence missions, cybersecurity frameworks, innovation ecosystems and technology transfer initiatives. The meeting also reviewed ongoing academic and institutional engagements between the two countries, including collaborations involving research institutions, innovation hubs and technology incubation platforms. Addressing the meeting, Dr. Singh said that the comprehensive strategic partnership between the two countries has gained new momentum over the last decade. He said that around 10 researchers from Vietnam have availed fellowships under the India-ASEAN Research and Training Fellowship Program. Foreign Secretary Vikram Misri took part in a trilateral meeting between India, France and United Arab Emirates in Abu Dhabi yesterday, along with Reem Al-Hashmi, Minister of State and Special Envoy for India, and Martin Bryans, Secretary General of the Ministry for Europe and Foreign Affairs of France. The Ministry of External Affairs said the three countries agreed to strengthen their partnership and work on a roadmap with clear timelines. During the visit, Mr. Misri also met Khaldun Al-Mubarak, Managing Director and Chief Executive Officer, Mubadala Investment Company.

भक्ति संगीत के कार्यक्रम हिमांजलि में आज बस इतना ही। एफएम शिमला आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आइए सुनते हैं एक और भक्तिमय प्रस्तुति, मानस गान।

काकभुशुंडी ने संतों से जैसा और जो कुछ भी सुना था वो सारी कथा गरुड़ को कह सुनाई। प्रभु की महिमा के सागर की गहराई माप सकना असंभव है, अतः मद मान ममता सबका त्याग कर उनका भजन करना चाहिए। ये सुनकर गरुड़ पुलकित हो जाते हैं, आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आते हैं। उन्हें जो भ्रम हुआ था उस पर पछतावा हुआ और हर्ष भी, क्योंकि वो भ्रम अब टूट चुका था। किंतु एक जिज्ञासा मन में अब भी बनी थी। काकभुशुंडी ने हजार योनियों में जन्म लिया, उन्होंने कठिन साधना की, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वरदान पाया, किंतु अपने लिए अंत में काक का शरीर ही क्यों चुना?

अभी आप सुन रहे थे मानस गान। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, ए हरिहरन और साथी संगीतकार सतीश भाटिया। एफएम शिमला आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आइए अब सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ और आइए अब सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस साथ में प्रियंका ठाकुर। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को नई परिभाषा दी है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर कल उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की शौर्य, पेशेवर दक्षता और अदम्य साहस की सराहना करते हुए उन्हें नमन किया। राज्यपाल ने लोगों से ऑपरेशन सिंदूर की स्मृतियों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराकर सम्मानित करने का आह्वान किया। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लाहौल स्पीति जिले के दौरे के दौरान विश्व प्रसिद्ध अटल टनल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस टनल के बनने के बाद जिले में विकास और पर्यटन को नई पहचान मिली है। राज्यपाल ने कहा कि यह परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शी सोच का साकार रूप है। उन्होंने कहा कि अटल टनल केवल एक सुरंग नहीं बल्कि देश की सामरिक मजबूती, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और जन सुविधा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचपीएमसी को आगामी सीजन के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब खरीद के लिए समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आयोजित एक बैठक के दौरान निगम की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि बागवानों की सुविधा के लिए एचपीएमसी की कार्यप्रणाली के तहत अगले खरीद सीजन से पूरी प्रक्रिया और डेटा का डिजिटलीकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने शिमला जिला के रामपुर स्थित एक निजी नर्सिंग कॉलेज के छात्रावास में तपेदिक से संक्रमित 19 छात्राओं के मामले पर प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्टों का स्वतः ज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सिरमौर जिला के देवामानल गांव में 2 सगे भाइयों की खड्ड में डूबने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार 8 वर्षीय आयान और 9 वर्षीय अभिनव घर के पास खड्ड के किनारे खेल रहे थे। तंग रास्ते में एक भाई का पांव फिसलने से वो खड्ड में गिर गया और उसे बचाने के लिए दूसरा भाई भी खड्ड में उतर गया। पानी गहरा होने के कारण दोनों भाई डूब गए। इस

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी
1: एफएम शिमला आप सुन रहे 7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वित्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल आबूधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी

0: ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ₹103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं FM शिमला के साथ। आइए सुनते हैं चिंतन।

बर्बरीक भीमसेन का पोता और उनके पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। एक बार इसने भीमसेन को अत्यंत साधारण युद्ध कौशल से पराजित कर दिया था। जब पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष व्यतीत हुआ, तब सभी राजा उपलब्ध नामक स्थान में युद्ध के लिए एकत्र हुए। वहां से चलकर महारथी पांडव कुरुक्षेत्र में आए, जहां दुर्योधन आदि कौरव पहले से ही स्थित थे। उस समय भीष्म ने दोनों पक्षों के रथियों और अतिरथियों की गणना की थी। उसका सब समाचार जब गुप्तचरों द्वारा महाराज युधिष्ठिर को मिला, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, दुर्योधन का कौन वीर कितने समय में सेना सहित पांडवों का वध कर सकता है? इस प्रश्न पर पितामह और कृपाचार्य ने 1 महीने में हम सबको मार डालने की प्रतिज्ञा की है, द्रोणाचार्य ने 15 दिन में, अश्वत्थामा ने 10 दिनों में, और सदा मुझे भयभीत करने वाले कर्ण ने तो 6 ही दिनों में सेना सहित पांडवों को मारने की घोषणा की है। क्या हमारे पक्ष में ऐसा कोई योद्धा नहीं जो इसकी कोई प्रतिक्रिया कर सके? राजा युधिष्ठिर का ये वचन सुनकर अर्जुन बोले, भीष्म आदि महारथियों की तो ये सारी घोषणाएं असंगत हैं, क्योंकि युद्ध संबंधी जय पराजय का निश्चय किसी काम का नहीं होता। भला सात्यकी, भीमसेन, द्रुपद, घटोत्कच, विराट, धृष्टद्युम्न आदि से कौन पार पा सकेगा? सर्वथा अजय भगवान श्री कृष्ण भी आपके ही पक्ष में है, पर इतने पर भी यदि आपके चित्त को शांति ना होती है तो लीजिए, मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को 1 ही दिन में नष्ट कर सकता हूँ, ये घोषणा मेरी है। अर्जुन की बात सुनकर बर्बरीक ने कहा, महात्मा अर्जुन की प्रतिज्ञा मेरे लिए असहाय हो रही है, इसलिए मैं कहता हूँ अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप लोग सब खड़े रहें, मैं 1 ही मुहूर्त में सारी कौरव सेना को यमलोक पहुँचा देता हूँ। सिद्धम्बिका के दिए इस खड़ग और मेरे दिव्य धनुष बाणों को तो जरा देखिए, इनके सहारे मेरा ये कृत्य सर्वथा सुगम है। श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है। पहले इसने पाताल में जाकर 9 करोड़ दैत्यों को क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया था। फिर उन्होंने बर्बरीक से कहा, तुम भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण आदि महारथियों से सुरक्षित सेना को इतने शीघ्र कैसे मार सकोगे? वासुदेव के इस प्रकार पूछने पर बर्बरीक ने तुरंत ही अपना धनुष चढ़ाया और उस पर बाण संधान किया। फिर उस बाण को उसने लाल रंग के भस्म से भर दिया और कान तक खींच कर छोड़ दी। उस बाण के मुख से जो भस्म उड़ा, वो दोनों सेनाओं के मर्म स्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ। अब बर्बरीक बोला, आप लोगों ने देखा, इस क्रिया से मैंने मरने वाले वीरों के मर्म स्थान का निरीक्षण कर लिया, बस अब 2 घड़ी में इन्हें मार गिराता हूँ। इतने में ही श्री कृष्ण ने अपने तीक्ष्ण चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। बर्बरीक पूर्व जन्म में सूर्य वर्चा नाम का यक्ष था। जब पृथ्वी भार से घबरा कर मेरु पर्वत पर देवताओं के सामने अपना दुखड़ा रो रही थी, तब इसने कहा था, मैं अकेला ही अवतार लेकर सब दैत्यों का संहार करूंगा, मेरे रहते किसी देवता को पृथ्वी पर अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं। इस पर ब्रह्मादि ने क्रुद्ध होकर कहा था, दुर्मते, तू मोहवश ये दुस्साहस कर रहा है, अतएव जब पृथ्वी भार नाश के लिए युद्ध का आरंभ होगा, उस समय श्री कृष्ण के हाथ से तेरे शरीर का नाश होगा। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने चंडिका से कहा, इसके सिर को अमृत से सींचो और राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो। जीवित होने पर मस्तक ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ प्रभु। तब भगवान ने उसके मस्तक को पर्वत शिखर पर स्थिर कर दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब भीमसेन आदि को अपने युद्ध का बड़ा गर्व हुआ और सब अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे।

अंत में निर्णय हुआ कि चलकर बर्बरी के मस्तक से पूछा जाए। जब जाकर उसे पूछा गया तब उसने कहा, मैंने शत्रुओं के साथ केवल एक ही पुरुष को युद्ध करते देखा है। उस पुरुष के बाईं ओर 5 मुख और 10 हाथ थे, जिनमें वो त्रिशूल आदि आयुध धारण किए था, और दाहिनी ओर उसके 1 मुख और 4 भुजाएं थी, जो चक्र आदि शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित थी। बाईं ओर के मस्तक जटाओं से सुशोभित थे और दाहिनी ओर के मस्तक पर मुकुट जगमगा रहा था। वो बाईं ओर भस्म धारण किए था और दाहिनी ओर चंदन लगा था। बाईं ओर चंद्रकला चमक रही थी और दाहिनी ओर कौस्तुभ मणि झलमला रही थी। उसी रुद्र विष्णु रूप पुरुष ने सारी कौरव सेना का विनाश किया था। मैंने उसके अतिरिक्त किसी अन्य को सेना का संहार करते नहीं देखा। इस पर भीम आदि अपने गर्व पर बड़े लज्जित हुए।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर हुकम शर्मा। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं FM शिमला के साथ, और आइए सुनते हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा में प्रस्तुत है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से, धारावाहिक पाठ। आज आप सुनेंगे चौथे भाग का 25वां अध्याय। शीर्षक है कस्तूरबा का साहस।

कस्तूरबाई पर रोग के 3 घातक हमले हुए और तीनों में वो केवल घरेलू उपचारों से बच गई। उनमें पहली घटना उस समय घटी जब सत्याग्रह का युद्ध चल रहा था। उसे बार बार रक्त स्राव हुआ करता था। एक डॉक्टर मित्र ने शल्य क्रिया करा लेने की सलाह दी थी। थोड़ी आनाकानी के बाद पत्नी ने शल्य क्रिया कराना स्वीकार कर लिया। उसका शरीर बहुत ही क्षीण हो गया था। डॉक्टर ने बिना क्लोरोफार्म के शल्य क्रिया की। शल्य क्रिया के समय पीड़ा बहुत हो रही थी, पर जिस धीरज से कस्तूरबाई ने उसे सहन किया उससे मैं आश्चर्यचकित हो गया। शल्य क्रिया निर्विघ्न पूरी हो गई। डॉक्टर ने और उनकी पत्नी ने कस्तूरबाई की अच्छी सार संभाल की। यह घटना डर्बन में हुई थी। 2 या 3 दिन के बाद डॉक्टर ने मुझे निश्चिंत होकर जोहानिसबर्ग जाने की अनुमति दे दी। मैं चला गया। कुछ ही दिन बाद खबर मिली कि कस्तूरबाई का शरीर बिल्कुल सुधर नहीं रहा है और वो बिछौना छोड़कर उठ बैठ भी नहीं सकती। एक बार बेहोश भी हो चुकी है। डॉक्टर जानते थे कि मुझसे पूछे बिना औषधि या अन्न के रूप में कस्तूरबाई को शराब अथवा मांस नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर ने जोहानिसबर्ग में टेलीफोन किया। मैं आपकी पत्नी को मांस का शोरबा या बीफ टी देने की जरूरत समझता हूँ, मुझे इजाजत मिलनी चाहिए। मैंने उत्तर दिया, मैं ये इजाजत नहीं दे सकता, किंतु कस्तूरबाई स्वतंत्र है, उससे पूछने जैसी स्थिति हो तो पूछिए और वो लेना चाहे तो जरूर दीजिए। डॉक्टर ने कहा, ऐसे मामलों में मैं बीमार से कुछ पूछना पसंद नहीं करता, स्वयं आपका यहां आना जरूरी है। यदि आप मैं जो चाहूं सो खिलाने की छूट मुझे ना दें तो मैं आपकी स्त्री के लिए जिम्मेदार नहीं। मैंने उसी दिन डर्बन की ट्रेन पकड़ी। डर्बन पहुंचा, डॉक्टर ने मुझसे कहा, मैंने तो शोरबा पिलाने के बाद ही आपको टेलीफोन किया था। मैंने कहा, डॉक्टर मैं इसे दगा समझता हूँ। डॉक्टर ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, दवा करते समय मैं दगा बगा नहीं समझता। हम डॉक्टर लोग ऐसे समय रोगी को अथवा उसके संबंधियों को धोखा देने में पुण्य समझते हैं। हमारा धर्म तो किसी भी तरह रोगी को बचाना है। मुझे बहुत दुख हुआ, पर मैं शांत रहा। डॉक्टर मेरे मित्र थे, सज्जन थे। उन्होंने और उनकी पत्नी ने मुझ पर उपकार किया था।

मैं उक्त व्यवहार सहन करने के लिए तैयार ना था। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, अब स्थिति स्पष्ट कर लीजिए, कहिए आप क्या करना चाहते हैं। मैं अपनी पत्नी को उसकी इच्छा के बिना मांस नहीं खिलाने दूंगा। मांस ना लेने के कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो मैं उसे सहने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर बोले, आपकी फिलॉसफी मेरे घर में तो हरगिज नहीं चलेगी। मैं आपसे कहता हूं कि जब तक अपनी पत्नी को आप मेरे घर में रहने देंगे, तब तक मैं उसे अवश्य ही मांस अथवा जो कुछ भी देना उचित होगा दूंगा। यदि ये स्वीकार ना हो तो आप अपनी पत्नी को ले जाइए। मैं अपने ही घर में जानबूझकर उसकी मृत्यु नहीं होने दूंगा। मैंने कहा, तो क्या आप ये कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को इसी समय ले जाऊं? डॉक्टर बोले, मैं कब कहता हूं कि ले जाइए, मैं तो ये कहता हूं कि मुझ पर किसी प्रकार का अंकुश ना रखिए। उस दशा में हम दोनों उसकी जितनी हो सकेगी उतनी सार संभाल करेंगे और आप निश्चिंत होकर जा सकेंगे। यदि ये सीधी सी बात आप ना समझ सकें तो मुझे विवश होकर कहना होगा कि आप अपनी पत्नी को मेरे घर से ले जाइए। मेरा ख्याल है कि उस समय मेरा एक लड़का मेरे साथ था। मैंने उससे पूछा, उसने कहा, आपकी बात मुझे मंजूर है, बाकी मांस तो दिया ही नहीं जा सकता। फिर मैं कस्तूरबाई के पास गया। वो बहुत अशक्त थी, उससे कुछ भी पूछना मेरे लिए दुखदाई था, किंतु धर्म समझकर मैंने उसे थोड़े में ऊपर की बात कह सुनाई। उसने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, मैं मांस का शोरबा नहीं लूंगी, मनुष्य की देह बार बार नहीं मिलती, चाहे आपकी गोद में मैं मर जाऊं, पर अपनी इस देह को भ्रष्ट नहीं होने दूंगी। मैं बहुत प्रसन्न हुआ, ले जाने के विचार से घबरा गया, पर मैंने निश्चय कर लिया। डॉक्टर को पत्नी का निश्चय सुना दिया। डॉक्टर गुस्सा हुए और बोले, आप तो बड़े निर्दय पति मालूम होते हैं, ऐसी बीमारी में उस बेचारी से इस तरह की बातें करने में आपको शर्म भी नहीं आई? मैं आपसे कहता हूं कि आपकी स्त्री यहां से ले जाने लायक नहीं है। उसका शरीर इस योग्य नहीं है कि वो थोड़ा भी धक्का सहन करे। रास्ते में ही उसकी जान निकल जाए तो मुझे आश्चर्य ना होगा। फिर भी आप अपने हठ के कारण बिल्कुल ना माने तो आप ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि मैं उसे शोरबा ना दे सकूं तो अपने घर में एक रात रखने का भी खतरा मैं नहीं उठा सकता। रिमझिम मेघ बरस रहा था। स्टेशन दूर था। डर्बन से फिनिक्स तक रेल का और फिनिक्स से लगभग 2.5 मील का पैदल रास्ता था। खतरा काफी था, पर मैंने माना कि भगवान मदद करेगा। एक आदमी को पहले से फिनिक्स भेज दिया। फिनिक्स में हमारे पास हेमक था, जालीदार कपड़े की झोली या पालने को हेमक कहते हैं। उसके सिरे बांस से बांध दिए जाएं तो बीमार उसमें आराम से झूलता रह सकता है। मैंने वेस्ट को खबर भेजी थी कि वे हेमक, एक बोतल गर्म दूध, एक बोतल गर्म पानी और 6 आदमियों को साथ लेकर स्टेशन पर आ जाएं। दूसरी ट्रेन के छूटने का समय होने पर मैंने रिक्शा मंगवाया और उसमें इस खतरनाक हालत में पत्नी को बैठाकर मैं रवाना हो गया। हड्डियों के इस ढांचे में वजन तो कुछ रह ही नहीं गया था, खाया बिल्कुल नहीं जाता था। ट्रेन के डिब्बे तक पहुंचने में स्टेशन के लंबे चौड़े प्लेटफॉर्म पर दूर तक चलकर जाना पड़ता था। यहां तक रिक्शा नहीं जा सकता था। मैं उसे उठाकर डिब्बे तक ले गया। फिनिक्स पहुंचने पर तो वो झोली आ गई थी। उसमें बीमार को आराम से ले गए। वहां केवल पानी के उपचार से धीरे धीरे कस्तूरबाई का शरीर पुष्ट होने लगा। फिनिक्स पहुंचने के बाद 2-3 दिन के अंदर एक स्वामी पधारे। हमारे हठ की बात सुनकर उनके मन में दया उपजी और वे हम दोनों को समझाने आए। जैसा कि मुझे याद है, स्वामी जी के आगमन के समय मणिलाल और रामदास भी वहां मौजूद थे। स्वामी जी ने मांसाहार की निर्दोषता पर व्याख्यान देना शुरू किया, मनुस्मृति के श्लोकों का प्रमाण दिया। पत्नी के सामने इस तरह की चर्चा मुझे अच्छी नहीं लगी, पर शिष्टता के विचार से मैंने उन्हें चलने दिया। मांसाहार के समर्थन में मुझे मनुस्मृति के प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। मैं उसके श्लोकों को जानता था। मैं जानता था कि उन्हें प्रक्षिप्त मानने वाला भी एक पक्ष है, पर वे प्रक्षिप्त ना होते तो भी अन्नाहार के विषय में मेरे विचार स्वतंत्र रीति से पक्के हो चुके थे। कस्तूरबाई की श्रद्धा काम कर रही थी। वो बेचारी शास्त्र के प्रमाण को क्या जाने, उसके लिए तो बाप दादों की रूढ़ी ही धर्म थी। लड़कों को अपने पिता के धर्म पर विश्वास था, इसलिए वे स्वामी जी से मजाक कर रहे थे। अंत में कस्तूरबाई ने इस संवाद को

ये कहकर बंद किया। स्वामी जी, आप कुछ भी क्यों ना कहें, पर मुझे मांस का शोरबा खाकर स्वस्थ नहीं होना है। अब आप मेरा सिर ना पचाएं तो आपका मुझ पर बड़ा उपचार होगा। बाकी बातें आपको लड़कों के पिताजी से बात करनी हो तो कर लीजिए, मैंने अपना निश्चय आपको बतला दिया है।

साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से धारावाहिक पाठ। आज आपने चौथे भाग का 25वां अध्याय सुना। शीर्षक था कस्तूरबा का साहस।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा, प्रस्तुत करता थे डॉक्टर हुकुम शर्मा। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं FM शिमला के साथ।
1: सुरीला सफर संगीत का, साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो, क्या कहना उस प्रीत का।

सुबह हो या शाम आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला, और एफएम शिमला पर अब आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। जी हाँ, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे प्यारे श्रोता साथियों को। आवाज़ जो दिल को सुकून दे, एहसास जो दिल तक पहुँचे, यही है आपका अपना रेडियो शो गुड मॉर्निंग शिमला, जहाँ पर हर सुबह हम लेकर आते हैं खूबसूरत ख्याल, दिलनशीब बातें और सुकून भरे नगमे। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी रेडियो हम सफ़र टिम्पल ठाकुर। तो आगाज़ इस प्रोग्राम का करते हैं एक दिल को छू लेने वाले ख्याल के साथ। और ख्याल ये है कि हर एक दिन खास नहीं होता है, लेकिन हम उस दिन को कैसे जीते हैं, यही बात उस दिन को खास बना देती है। एक तरह से कहें तो एक आम दिन को खास बनाने का हुनर सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने हाथ में होता है। बस ज़रा सोचिए, ऐसा क्या करें कि ये दिन यादगार बन जाए।

जी हाँ बिल्कुल, अपना हर एक दिन बिंदास होके जी ये सॉन्ग अभी आपने एंजॉय किया गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम में गोलमाल 3 फिल्म से अनुष्का मनचंदा और शान की आवाजों में। और यकीन मानिए दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है जब इस तरह के पॉजिटिव वाइब्स वाले सॉन्ग्स हम इंजॉय करते हैं, सुनते हैं। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, एक अच्छा गाना और एक सुकून भरा लम्हा ही काफ़ी होता है हमारे दिन को ख़ास बनाने के लिए। तो चलिए अब कार्यक्रम में बात करते हैं आज की तारीख से जुड़ी हुई। आज 8 मई है और 8 मई का ये दिन क्यों खास है, ख़ास करके 8 मई को जो है दुनिया भर में विश्व रेडक्रॉस डे मनाया जाता है। ये दिन रेडक्रॉस आंदोलन के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कहानी शुरू होती है ईयर 1859 से, जब इटली के बैटल ऑफ सोलफेरिनो युद्ध में हज़ारों सैनिक घायल पड़े थे। उस समय हेनरी ड्यूनेंट ने बिना किसी भेदभाव के घायल लोगों की हेल्प की। यहीं से उनके मन में एक ऐसी संस्था बनाने का विचार आया जो युद्ध, आपदा और संकट के समय इंसानियत की सेवा करे। और फिर ईयर 1863 में रेडक्रॉस संगठन की स्थापना हुई और धीरे धीरे ये आंदोलन पूरी दुनिया में फैल गया। हर साल की तरह साल 2026 यानी कि इस साल भी इस दिन के लिए एक खास थीम रखी गई है, जो कि है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, यानी मानवता को जीवित बनाए रखना, जो कि अपने आप में रेड क्रॉस के पूरे उद्देश्य को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है।

गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर। और इसके अलावा रेड क्रॉस डे के अलावा आज 8 मई को विश्व थैलेसीमिया

0: थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य थैलेसीमिया जैसी गंभीर रक्त संबंधी बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। थैलेसीमिया जो कि एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर यानी कि वंशानुगत बीमारी है जिसमें हमारा शरीर पर्याप्त स्वस्थ हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा की गई थी ताकि मरीजों को और उनके परिवारों को बेहतर इलाज, सहयोग और जागरूकता मिल सके।
1: मैं विक्रांत कौंडल, अतिरिक्त सचिव हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शिमला, श्रोताओं, आगामी 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक अदालत में आप सुलह समझौते के आधार पर लंबित मामलों जिसमें सिविल, क्रिमिनल, कंपाउंडेबल, ट्रैफिक चलान, बैंक ऋण मामले तथा पारिवारिक विवाद जैसे मामलों का त्वरित समाधान पा सकते हैं। लोक अदालत का है यही आधार, न किसी की जीत न किसी की हार। धन्यवाद।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप हैं इस वक्त एफएम शिमला के साथ और आनंद ले रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला का, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ दिलकश नगमें और कुछ खास और अहम बातें जो आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और प्रोग्राम में अब जिक्र एक ऐसी ही खास बात का जो है हमारी और आपकी सेफ्टी से जुड़ी हुई। दोस्तों, जिंदगी एक हसीन सफर है, लेकिन ये सफर तभी खूबसूरत बनता है जब इसमें एहतियात और जिम्मेदारी शामिल हो। तो कुछ छोटी छोटी बातों का हमें ज़रूर ख्याल रखना है जो हमारे सफ़र को आसान और महफूज बना सके। और जब भी बात सफ़र को सुरक्षित बनाने की हो तो ज़रूरी हो जाता है रोड सेफ्टी का जिक्र करना। जब भी सड़क पार करें तो जल्दबाजी ना करें, एक आसान सा उसूल याद रखें, पहले थोड़ा रुके, दाएँ बाएँ देखें, तभी आगे बढ़ें। बस तक जो है अगर आप पैदल चल रहे हैं तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रोड क्रॉस करते वक्त मोबाइल का यूज़ ना करें, आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। और वो जो हमारे साथ ही ड्राइव कर रहे हैं उनसे एक दिली गुजारिश यही रहेगी कि अगर कोई राहगीर सड़क पार कर रहा हो तो अपनी रफ्तार धीमी कर दीजिए, उन्हें रोड क्रॉस करने दीजिए। और ख़ासकर अगर आप कहीं स्कूल के सामने से गुज़र रहे हैं तो अपनी गाड़ी की स्पीड को पहले ही धीमा कर लें, क्योंकि वहाँ मौजूद मासूम कदम हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होते हैं। और इसके अलावा एक और आदत जो हमें ख़तरे की ओर ले जा रही है वो है गाड़ियों और बसों में तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बजाना। जब म्यूज़िक बहुत बुलंद होता है तो बाहर की ज़रूरी आवाज़ें जैसे हॉर्न हो गया, ब्रेक या किसी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाती है, और यही लापरवाही किसी हादसे की वजह बन सकती है। इतना ही नहीं, बस में बैठे मुसाफिरों को भी इससे परेशानी होती है। कई बार किसी को अपने स्टॉप पर उतरना होता है लेकिन उसकी आवाज़ ड्राइवर या कंडक्टर तक पहुँच ही नहीं पाती है और वो अपना स्टेशन मिस कर देता है। और एक और ज़रूरी बात का जिक्र मैं ज़रूर यहाँ पर करना चाहूँगी जो अक्सर ट्रैवल करते समय रोज़ाना देखी जाती है, वो है बस में चढ़ते या फिर उतरते समय जल्दबाजी करना। जब भी बस में चढ़ें या उतरें तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अक्सर हम जल्दी जल्दी के चक्कर में धक्का मुक्की कर बैठते हैं जिसके कारण कभी चोट भी लग सकती है हमें। इसलिए थोड़ा ठहर कर संभल कर बस में ट्रैवल करें और ड्राइव करते समय मोबाइल का यूज़ बिल्कुल ना करें। अपनी गाड़ी की एक स्पीड लिमिट तय करें, तेज रफ्तार से बचें, क्योंकि धीमी रफ्तार ही एक महफूज सफर की पहचान है।

गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर, और कार्यक्रम में अब बात उस चीज की जो आज के दौर में हर किसी की, आपकी और हमारी आदत बन चुकी है। जी हाँ, वो है हमारा मोबाइल फोन। सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले अपना मोबाइल देखते हैं। रात को सोने से पहले मोबाइल स्क्रॉल करना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। हम रात को बस 5 मिनट के लिए अपना मोबाइल उठाते हैं, लेकिन कब आधा घंटा और फिर 1 घंटा निकल जाता है ये पता ही नहीं चलता है। हालांकि आज का जो दौर है वो डिजिटल है, मोबाइल इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी हिस्सा बन चुकी है। काम हो, पढ़ाई हो, कोई जानकारी लेनी हो या फिर दूर बैठे अपनों से जुड़े रहना हो, हर जगह तकनीक हमारी मदद कर रही है। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और जब वो लिमिट पार हो जाती है और हमारी सेहत पर असर डालने लगती है तो ज़रूरी हो जाता है थोड़ा सा संभलना।

जब हम देर रात तक मोबाइल स्क्रॉल करते हैं तो मोबाइल की ब्लू लाइट हमारे दिमाग को ये महसूस नहीं होने देती कि अब आराम करने का समय है, जिस वजह से हमें नींद देर से आती है और सुबह उठते ही थकान, आलस और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। और धीरे धीरे यही आदत हमारी आंखों पर असर डालती है, हमारी नेक पेन को बढ़ाती है और कई बार तनाव और बेचैनी की वजह भी बन जाती है। इसलिए ज़रूरी है थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स, यानी कुछ समय के लिए खुद को मोबाइल और स्क्रीन से थोड़ा दूर रखना। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तकनीक से दूरी बना ली जाए, बल्कि उसका सही और संतुलित इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि जब भी हम रात को सोने जाएं तो अपने मोबाइल को कम से कम आधा घंटा पहले दूर रख लें, सुबह उठते ही तुरंत मोबाइल स्क्रीन ना देखें और दिन में थोड़ा समय अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ बिताएं, अपने शौक पर काम करें और सबसे बढ़िया बात, कुछ कीमती जो है पल कुदरत की आगोश में ज़रूर

जाए। जैसे कि जब भी हम रात को सोने जाएं तो अपने मोबाइल को कम से कम आधा घंटा पहले दूर रख लें। सुबह उठते ही तुरंत मोबाइल स्क्रीन ना देखें और दिन में थोड़ा समय अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ बिताएं, अपने शौक पर काम करें और सबसे बढ़िया बात, कुछ कीमती जो है पल कुदरत की आगोश में ज़रूर बिताएं। यकीन मानिए, जब हम मोबाइल के कंट्रोल में नहीं बल्कि मोबाइल हमारे कंट्रोल में रहता है, तभी तकनीक सच में हमारी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाती है।

0: गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आपको बता दें कि सुबह 9:31 पर कुदरत के रंग प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और आज सुबह 10 से 11 के मध्य संगम कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं। इसके अलावा पुराने फिल्मों से नगमे आप सुनना चाहते हैं तो ये गाने आप सुन सकते हैं सुबह 11:05 पर और 11:30 पर पहाड़ी संगीत कार्यक्रम सुन सकते हैं और हिमाचली लोक गीतों पर आधारित ही लोक संगीत कार्यक्रम का आनंद आप उठा सकते हैं सुबह 8:32 पर। कुछ नए और पुराने फिल्मी नगमों का आनंद लीजिए फिल्म संगीत के तहत सुबह 8:45 पर, दोपहर 12:10 पर और शाम 8:30 पर। और इन प्रोग्राम्स का आनंद आप उठा सकते हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल एफएम शिमला पर अभी समय हुआ है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस आते हैं प्रियंका ठाकुर। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में कुल 31,182 पदों के लिए तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे। इन चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है और आज व 11 मई को भी नामांकन भरे जा सकेंगे। इन चुनावों के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 तक अपने नाम वापिस ले सकते हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल ने बेहतरीन कार्य किया है। शिमला में उन्होंने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का सर्वे किया है जिसमें हिमाचल को ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के लिए चयनित किया गया है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए हिमाचल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये सम्मान 9 मई को मध्य प्रदेश के सीहोर में दिया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह आज और कल 9 मई को प्रदेश के 2 दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नगर निगम एवं पंचायती राज चुनावों को लेकर मंडी जिला में विभिन्न संगठनात्मक एवं चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेंगे और पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। भाजपा सूत्रों के अनुसार सुदान सिंह का यह दौरा संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इससे चुनावी माहौल में पार्टी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा एवं दिशा मिलेगी। आईपीएल के धर्मशाला में 11 मई को होने वाले मैचों के लिए पंजाब किंग्स टीम कल सायं धर्मशाला पहुंच गई है। धर्मशाला स्टेडियम में पंजाब किंग्स की टीम अपने दूसरे होम ग्राउंड में 3 अहम मुकाबले खेलेगी। इसके लिए टीम आज से अभ्यास करेगी। टीम के कुछ खिलाड़ी आज धर्मशाला पहुंचेंगे। पंजाब किंग्स के लिए धर्मशाला के मुकाबले बेहद अहम माने जा रहे हैं। पंजाब किंग्स के साथ होने वाले मुकाबले के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम कल 9 मई को धर्मशाला पहुंचेगी। इस संग में बस इतना ही, नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी
1: एफएम शिमला। आप सुन रहे हैं 103.7

0: मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर VCK, CPI और CPIM के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली BJP सरकार इस शनिवार 25 वैशाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, JP नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित BJP विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। DMK और ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के महासचिव E. Palaniswamy को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम TVK को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव A. Anbajgan ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन की चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ Khan के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में

0: कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा।

0: राजनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा चुनाव में। तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ। आइए सुनते हैं एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस आते हैं प्रियंका ठाकुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचपीएमसी को आगामी सीजन के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब खरीद के लिए समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आयोजित एक बैठक के दौरान निगम की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि बागवानों की सुविधा के लिए एचपीएमसी की कार्यप्रणाली के तहत अगले खरीद सीजन से पूरी प्रक्रिया और डेटा का डिजिटलीकरण किया जाएगा। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में कुल 31,182 पदों के लिए तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे। इन चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है और आज व 11 मई को भी नामांकन भरे जा सकेंगे। इन चुनावों के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के पहले दिन कल कुल 16,891 नामांकन पत्र भरे गए। इसमें मंडी जिला में सबसे अधिक 3,731 जबकि लाहौल स्पीति जिला में सबसे कम 74 नामांकन पत्र भरे गए। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू हुई तथा कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन से होती हुई आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों ने मैराथन में भाग लिया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। शिमला के जुबड़हट्टी हवाई अड्डे में 10 मई से फिर से नियमित विमान सेवा शुरू होने जा रही है। एयरलाइंस एयर दिल्ली शिमला और शिमला धर्मशाला के लिए मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन उड़ानें संचालित करेगी। कंपनी ने एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी है। ये सेवाएं 2 नवंबर 2025 से बंद थी। अब दोबारा सेवाएं शुरू होने से पर्यटन कारोबार और यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में इतना ही, नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी। आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: जिंदड़ी रे दिन असोचार सुमिरन कर
3: एफएम शिमला पर आइए सुनते हैं लोक संगीत कार्यक्रम।

लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आपने कृष्णलाल सहगल की आवाज़ में ये सरमौरी लोकगीत सुना। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं तारावती की आवाज़ में ये अगला लोकगीत।

0: कृतिका तनवर के गाए इसी लोकगीत के साथ लोक संगीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
2: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

अपने रेडियो सेट्स पर आपने ट्यून किया है FM शिमला 103.7 MHz पर, और आइए सुनते हैं फिल्म संगीत के तहत कुछ फिल्मी नगमे।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: फकीरा फम का ये सॉन्ग अभी आपने इंजॉय किया किशोर कुमार और अज़ीज़ नज़ान की आवाज़ों में, और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला सॉन्ग आपके लिए प्ले कर रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर, और कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं दूसरा आदमी। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में।

अब आपको बताते हैं आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल से कौन से मुख्य कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं। सुबह 9:30 पर सुरबेला में आज आप सुनेंगे किशोरी अमोनकर से राग देसकार पर आधारित गायन। सुबह 10 बजे से 11 बजे के मध्य आनंद लीजिए रिमझिम कार्यक्रम का 11:05 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। सुबह 11:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं। फिल्मी गीतों का आनंद आप उठा सकते हैं। फिल्म संगीत कार्यक्रम में दोपहर 12:10 पर और शाम 8:15 पर। दोपहर 1:10 से 2 बजे के मध्य आप सुनेंगे सैनिकों के लिए कार्यक्रम। दोपहर 2 बजे सुनिए सुनहरी किरणें कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे जैविक खेती में जीवाणु खादों का महत्व एवं प्रयोग, और साय 7:10 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनेगा स्वरोजगार के लिए मधुमक्खी पालन, इस विषय पर बातचीत। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे स्पीति कार्यक्रम। 3:05 पर सुनिएगा सामायिक चर्चा। शाम 8 बजे धारा रे गीत में आज आप सुनेंगे किशोरी लाल शर्मा डोलमा और प्रदीप कुमार नेकी के गाए लोकगीत। शाम 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। रात 9:15 पर गुलदस्ता कार्यक्रम में आनंद लीजिए दिलकश गजलों का, और रात 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे करंट अफेयर्स। रात 10 बजे से 10:30 के मध्य आप सुनेंगे कार्यक्रम मन भावन सुरबहार। इस कार्यक्रम में सुनिए कुछ पुराने फिल्मी नगमे रात 10:30 से 11 बजे के मध्य। इसके अलावा हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में आज आप सुनेंगे 4:20 पर सिरमौरी कार्यक्रम, 4:50 का समय रहेगा महास्वी कार्यक्रम का, किन्नौरी कार्यक्रम सुनेगा 5:20 पर, 6:06 पर बिलासपुरी कार्यक्रम और 6:35 पर आज आप सुनेंगे कुल्लवी कार्यक्रम। तो ये है वो मुख्य मुख्य कार्यक्रम जो आज आप सुनने वाले हैं आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल से, और इन सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी शिमला का प्रसारण। अपने रेडियो सेट्स पर इस वक्त आपने ट्यून किया है FM शिमला 103.7 MHz पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मुख्य समाचार, प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने का आज दूसरा दिन। नामांकन के पहले दिन कुल 16,891 नामांकन पत्र भरे गए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह आज से प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर। शहरी निकाय व पंचायती राज चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का करेंगे मार्गदर्शन। किन्नौर जिला में हिमालय क्षेत्र की अद्वितीय जैव विविधता को उजागर करने के उद्देश्य से आज से 3 दिवसीय किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। और 11 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में होगा IPL का अहम मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने का आज दूसरा दिन है। इन चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने के पहले दिन कल 16,891 नामांकन पत्र भरे गए और 11 मई को भी नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
1: राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मंडी जिला में सबसे अधिक 3,731 जबकि लाहौल स्पीति में सबसे कम 74 नामांकन पत्र भरे गए। इसके अलावा चंबा में 2,067, ऊना में 1,892, हमीरपुर में 1,572, बिलासपुर में 1,459, सोलन में 1,415, कांगड़ा में 1,407, कुल्लू में 1,383, सिरमौर में 917, शिमला में 784 जबकि किन्नौर में 190 नामांकन पत्र दर्ज किए गए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश की कुल 31,182 पदों के लिए 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे। आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं प्रियंका ठाकुर।
0: भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह आज से प्रदेश के दो दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। उनका ये दौरा प्रदेश में चल रहे नगर निगम व पंचायती राज चुनाव के दृष्टिगत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रवास के दौरान वे मंडी जिला में विभिन्न संगठनात्मक व चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेंगे और पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार सौदान सिंह आज शाम मंडी पहुंचेंगे। कल उनका मंडी जिला में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों, संगठनात्मक बैठकों व चुनावी गतिविधियों में भाग लेने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे नगर निगम व पंचायती राज चुनावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। किन्नौर जिला में क्षेत्र की समृद्ध प्राकृतिक विरासत के संरक्षण व उत्सव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज से 10 मई तक कल्पाकंडे के गोली में किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। ये उत्सव कल आयोजित होने वाले ग्लोबल बिग डे व हिमालयन बर्ड काउंट के साथ समन्वित रहेगा। उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस फेस्टिवल का उद्देश्य किन्नौर व हिमालय क्षेत्र की अद्वितीय जैव विविधता को उजागर करना और स्थानीय समुदायों और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को सुदृढ़ करना है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन संरक्षण व सतत विकास के सिद्धांतों पर आधारित होगा और टूरिज्म को हवा देगा जिससे पर्यावरण, स्थानीय संस्कृति और पारिस्थितिकी का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। आज विश्व रेडक्रॉस दिवस है। ये दिवस मानवता, सेवा और सहायता की भावना को समर्पित है। विश्व रेडक्रॉस पर हर साल 8 मई को हेनरी ड्यूटेंट की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। वर्ष 2026 की इस वर्ष की थीम है ऑन द साइड ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के पक्ष में खड़ा होना है। ये थीम मानवता को जीवित रखने और अग्रिम पंक्ति के नायकों को सम्मान देने पर केंद्रित है। ये दिन युद्ध, आपदा और महामारी के दौरान राहत कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को समर्पित है। इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुनिया भर में संघर्ष, प्राकृतिक आपदा और स्वास्थ्य संकटों के दौरान जरूरतमंदों को मानवीय सहायता प्रदान करने वाले स्वयंसेवकों के प्रयासों को ये थीम सलाम करता है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। इस मैराथन के आयोजन से आकाशवाणी न केवल अपनी गौरवशाली संस्कृति और अस्मिता का

0: उत्सव मना रही है बल्कि स्वास्थ्य, स्फूर्ति, एकजुटता और लोक संपर्क का संदेश भी प्रसारित कर रही है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने और वास्तुकार व शिल्पकारों को लाभ देने के उद्देश्य से पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के लागू हो जाने से जहां विभिन्न व्यवसायों में लगे कारीगरों का विकास हो रहा है, वहीं उन्हें 1,00,000 रुपये तक का ऋण सस्ती ब्याज दर पर 5% पर मुहैया करवाया जा रहा है। आकांक्षी जिला चंबा भी अपनी समृद्ध कला व संस्कृति के लिए जाना जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना यहाँ के शिल्पकारों के लिए भी लाभकारी साबित हो रही है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
1: चंबा का प्रसिद्ध चंबा रुमाल हो, यहाँ की चप्पल हो या यहाँ की प्राचीन धातु कला हो, इससे कई शिल्पकार वर्षों से जुड़े हैं तथा आज देश विदेश में अपनी छटा बिखेर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसे शिल्पकारों के उत्थान के लिए ही पीएम विश्वकर्मा योजना संचालित की गई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुरू होने से इस कला से जुड़े शिल्पकार काफी उत्साहित हैं और जिला के कई शिल्पकार इस योजना से जुड़कर इसका लाभ भी ले रहे हैं। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: शिमला जिला के जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे में 10 मई से फिर नियमित विमान सेवा शुरू होने जा रही है। एलायंस एयर दिल्ली शिमला और शिमला धर्मशाला के लिए मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन उड़ानें संचालित करेगी। कंपनी ने एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी है। ये सेवाएं 2 नवंबर 2025 से बंद थी, अब दोबारा सेवाएं शुरू होने से पर्यटन कारोबार और यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में 11 मई को पंजाब किंग्स 11 और दिल्ली कैपिटल्स के बीच IPL मैच खेला जाएगा। कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में पंजाब किंग्स 11 की टीम कल शाम धर्मशाला पहुंची। धर्मशाला में खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों में खासा उत्साह देखने को मिला। कोच रिकी पॉन्टिंग की देखरेख में टीम आज से अभ्यास करेगी। पंजाब किंग्स के लिए धर्मशाला के मुकाबले बेहद अहम माने जा रहे हैं। टीम को पिछले 3 मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में प्लेऑफ की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए धर्मशाला में जीत दर्ज करना जरूरी होगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स की टीम कल धर्मशाला पहुंचेगी। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, पूर्व CPS के सरकारी आवास खाली न करने पर हाईकोर्ट सख्त। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाईकोर्ट सख्त, पूर्व CPS के सरकारी आवासों पर कब्जे को लेकर प्रदेश सरकार से मांगा रिकॉर्ड। पंजाब केसरी की खबर है, नई दिल्ली शिमला के बीच 10 मई से बहाल होगी हवाई सेवा, शिमला धर्मशाला के बीच भी होगी उड़ान। हिमाचल में हाईटेक होगी सेब की खरीद फरोख्त, शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, CM ने HPMC को फल खरीद की तैयारी के दिए निर्देश। दैनिक जागरण की एक खबर है, शास्त्रीय अध्यापकों की भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने का आज दूसरा दिन। नामांकन के पहले दिन कुल 16,891 नामांकन पत्र भरे गए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर। शहरी निकाय व पंचायती राज चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का करेंगे मार्गदर्शन। किन्नौर जिला में हिमालय क्षेत्र की अद्वितीय जैव विविधता को उजागर करने के उद्देश्य से आज से 3 दिवसीय किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित और 11 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में होगा IPL का अहम मुकाबला। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला पर भी प्रसारित किए जा रहे थे। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM।

0: हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए।
1: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको।

सुबह की ताज़ी हवा, पहाड़ों की ठंडी फिजाएं, देवदार की खुशबू और आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर हाजिर हैं हम आपके अपने कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है कुदरत के रंग।

कुदरत कभी शोर नहीं करती, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। कभी पहाड़ों की चुप्पी, कभी बारिश की बूंदें, कभी हवा का धीमे से गुजरना, सबके पास जैसी अपनी अपनी कहानियां होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की इस प्यारे से गीत के साथ।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुदरत के रंग। इस कार्यक्रम में अवतार फिल्म का सॉन्ग अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि हम अक्सर बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असली सुकून तो छोटी छोटी बातों में छुपा होता है, जैसे सुबह की धूप लेना और घर में दादी नानी या अपनी माँ के हाथ की चाय पीना, या फिर किसी अपने के मुंह से ये सुनना कि कैसे हो, ठीक हो ना, या फिर यूं ही बालकनी में बैठकर बादलों को गुजरते हुए देखना। और अपनी बालकनी में बैठे हो और हिमाचल में आप हो तो फिर क्या कहने। हिमाचल में कुदरत हर मोड़ पर आपको रुककर मुस्कुराने की वजह देती है। कहीं दूर पहाड़ों पर जमी बर्फ, कहीं देवदार के पेड़ों के बीच से आती हवा, तो कहीं मंदिरों की घंटियों में घुली शांति, ये सब दिल को एक अलग ही सुकून देते हैं।

जब भी सफ़र का जिक्र होता है तो ये शब्द सुनते ही ना जाने कितनी यादें हमारे सामने आ जाती है। कभी दोस्तों के साथ की ट्रिप, कभी फैमिली के साथ बिताए गए पल, और कभी वो अकेले वाले सफ़र जिनमें इंसान खुद को सबसे ज़्यादा समझता है। और कभी कभी ना ये ज़िंदगी जो है पहाड़ी रास्तों जैसी हो जाती है, थोड़ी चढ़ाई, थोड़े मोड़, थोड़ी धुंध, लेकिन नज़ारे हमेशा खूबसूरत ही मिलते हैं। और एक बात तो तय है कि जो लोग कुदरत के करीब रहते हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं सुकून ज़रूर बसता है। तो हम आपसे भी यही कहना चाहते हैं कि मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान भी किसी सुबह की धूप से कम नहीं है।

0: हुक्का हुआ, हुक्का हुआ, हुक्का हुआ।
1: दोस्तों, ये कुदरत हमें बहुत कुछ सिखाती है। पेड़ सिखाते हैं झुकना, विनम्र होना, नदियाँ सिखाती है चलते रहना, और पहाड़ हमें सिखाते हैं मजबूती से अड़िग रहना। जिंदगी में परेशानियाँ तो आएगी, लेकिन हर रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। जैसे पहाड़ों पर लंबी सर्दियों के बाद फिर से हरियाली लौट आती है। और सच कहें तो कभी कभी सिर्फ खुलकर हंस लेना भी बहुत बड़ी थेरेपी होती है। तो जहाँ भी है, जैसे भी है, खुश रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है।

0: कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, और आइए अब सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस साथ में प्रियंका ठाकुर। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने का आज दूसरा दिन है। इन चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने के पहले दिन कल 16,891 नामांकन पत्र भरे गए और 11 मई को भी नामांकन भरे जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कल मंडी जिला में सबसे अधिक 3,731 नामांकन प्राप्त हुए, जबकि लाहौल स्पीति में सबसे कम 74 नामांकन दर्ज हुए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी, जबकि 14 और 15 उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश की कुल 31,182 पदों के लिए 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह आज से प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। उनका यह दौरा प्रदेश में चल रहे नगर निगम एवं पंचायती राज चुनाव के दृष्टिगत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रवास के दौरान वे मंडी जिला में विभिन्न संगठनात्मक एवं चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेंगे और पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। इस दौरान वे नगर निगम व पंचायती राज चुनावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। आज विश्व रेडक्रॉस दिवस है। यह दिवस मानवता सेवा और सहायता की भावना को समर्पित है। इस वर्ष की थीम मानवता को जीवित रखने और अग्रिम पंक्ति के नायकों को सम्मान देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर प्रदेश के कई स्थानों पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। धर्मशाला का HPCA स्टेडियम में 11 मई को पंजाब किंग्स 11 और दिल्ली कैपिटल्स के बीच IPL मैच खेला जाएगा। पंजाब किंग्स की टीम कल शाम धर्मशाला पहुंची। धर्मशाला में खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों में खासा उत्साह देखने को मिला। टीम आज से अभ्यास करेगी। पंजाब किंग्स के लिए धर्मशाला के मुकाबले बेहद अहम माने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स की टीम कल धर्मशाला पहुंचेगी। किन्नौर जिला में आज से 10 मई तक किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस फेस्टिवल का उद्देश्य किन्नौर एवं हिमालयी क्षेत्र की अद्वितीय जैव विविधता को उजागर करना तथा स्थानीय समुदाय और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को सुदृढ़ करना है। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है। यह दिवस लोगों को थैलेसीमिया जैसी गंभीर रक्त संबंधी बीमारी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष का मुख्य संदेश है, सुरक्षित जीवन के लिए जागरूकता और नियमित जांच आवश्यक। इस अवसर पर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा रक्तदान शिविर, जागरूकता रैली और स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में इतना ही, नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।

नरसिम्हा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और अमित कुमार की आवाज़ों में। इस वक्त आप सुन रहे हैं सुरों की शानदार जुगलबंदी के साथ संगम कार्यक्रम। कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम को आइए सुनते हैं कार्यक्रम में इस अगले गीत में। फिल्म का नाम है बादल।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
1: हमको मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
1: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम

संगम कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडिया वेव और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी ये सुने जा सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने का आज दूसरा दिन है। इन चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने के पहले दिन कल 16,891 नामांकन पत्र भरे गए। इसके अलावा 11 मई को भी नामांकन भरे जा सकेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
2: राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मंडी जिला में सबसे अधिक 3,731 जबकि लाहौल स्पीति में सबसे कम 74 नामांकन पत्र भरे गए। इसके अलावा चंबा में 2,067, ऊना में 1,892, हमीरपुर में 1,572, बिलासपुर में 1,459, सोलन में 1,415, कांगड़ा में 1,407, कुल्लू में 1,383, सिरमौर में 917, शिमला में 784 जबकि किन्नौर में 190 नामांकन पत्र दर्ज किए गए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश की कुल 31,182 पदों के लिए 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे। आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं प्रियंका ठाकुर।
1: भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह आज से प्रदेश के दो दिवस

0: दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। उनका ये दौरा प्रदेश में चल रहे नगर निगम व पंचायती राज चुनावों के दृष्टिगत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रवास के दौरान वे मंडी जिला में विभिन्न संगठनात्मक एवं चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेंगे और पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार सौदान सिंह आज शाम मंडी पहुंचेंगे। कल उनका मंडी जिला में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों, संगठनात्मक बैठकों व चुनावी गतिविधियों में भाग लेने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे नगर निगम व पंचायती राज चुनावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से अपनाने के लिए कल नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा कि सहयोग के तहत दोनों संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान के लिए अपनी क्षमताओं के साथ साथ परिषद की चिकित्सा अनुसंधान विशेषज्ञता का लाभ उठाएंगे। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। इस मैराथन के आयोजन से आकाशवाणी न केवल अपनी गौरवशाली संस्कृति और अस्मिता का उत्सव मना रही है, बल्कि स्वास्थ्य, स्फूर्ति, एकजुटता और लोक संपर्क का संदेश भी प्रसारित कर रही है। आज विश्व रेडक्रॉस दिवस है। ये दिवस मानवता, सेवा और सहायता की भावना को समर्पित है। विश्व रेडक्रॉस हर साल 8 मई को हेनरी ड्यूनेंट की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। वर्ष 2026 की इस वर्ष की थीम है ऑन द साइड ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के पक्ष में खड़ा होना। ये थीम मानवता को जीवित रखने और अग्रिम पंक्ति के नायकों को सम्मान देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस भी है। ये दिवस लोगों को थैलेसीमिया जैसी गंभीर रक्त संबंधी बीमारी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा रक्तदान शिविर, जागरूकता रैली और स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर जाँच और सही उपचार से थैलेसीमिया मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं। शिमला जिले के जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे में 10 मई से फिर नियमित विमान सेवा शुरू होने जा रही है। एलायंस एयर दिल्ली शिमला और शिमला धर्मशाला के लिए मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन उड़ानें संचालित करेगी। कंपनी ने एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी है। ये सेवाएं 2 नवंबर 2025 से बंद थी। अब दोबारा सेवाएं शुरू होने से पर्यटन कारोबार और यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के शिमला एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र से सुन रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला।

अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर लिसनर्स। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। वक्त हुआ है

प्रोग्राम पुरानी फिल्मों से का तो प्रोग्राम लेकर मैं हाजिर हूँ अनुराधा ठाकुर। आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, तो इन पुराने गीतों का आप आनंद लेंगे अब से लेकर ठीक 11:30 तक। तो लीजिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं शागिर्द फिल्म के इस गीत के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं मजरू ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

में हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्यार की जा से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की, गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

9-2-11 इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। शब्द रचना थी मजरू की और संगीत रचना एस टी वर्मन की।

पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तीसरी कसम से आशा भोसले की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

तो लीजिए दोस्तों, इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं सौदागर फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में। गीत के बोल और संगीत रचना दी है रविंद्र जैन ने।

103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 11:30 हुए हैं, वक्त हुआ है कार्यक्रम पहाड़ी संगीत का। तो लीजिए, पहाड़ी संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुना रहे हैं मुकुल कौशल की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: तो दोस्तों, इसी लोकगीत के साथ पहाड़ी संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 12 बजने को है। हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के लिए आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्त, कोलकाता।
1: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन TARA हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने TARA हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने से भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास बताया।

0: वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्य प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हों। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 15 मार्च के बाद से देश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। महानिदेशालय ने बताया कि परीक्षण किट की कमी से संकट और गहरा गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 77,418 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will visit Somnath Temple in Gujarat on the 11th of May to mark 75 years since the restored temple was inaugurated by India's first President Rajendra Prasad in 1951. The Prime Minister today wrote an article in a national daily paper and shared this information. In his article, he said it was a privilege for him to attend two important events related to Somnath within a few months. Earlier this year, Prime Minister Modi attended the Somnath Swabhiman Parv, which marked 1,000 years since the first attack on the temple. The Prime Minister called Somnath a symbol of India's civilizational strength and resilience. He said the temple's journey represents a movement from destruction to creation and shows how faith and culture can survive even after repeated attacks and hardships. The Prime Minister remembered the role of the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel, in rebuilding the temple after independence. Mr. Modi said Patel had strongly believed that the reconstruction of Somnath was a national duty. The West Bengal BJP Legislature Party will meet in Kolkata this afternoon to elect its leader. The party's central observer and Union Home Minister Amit Shah will be present in the meeting. The BJP registered a historic victory in the just-held assembly elections, ending the TMC's 15-year rule in the state. The swearing-in ceremony of West Bengal's first BJP government will be held at Brigade Parade Ground in Kolkata tomorrow. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen and Chief Ministers of all NDA-ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Defence Research and Development Organisation DRDO and the Indian Air Force have successfully conducted the maiden flight trial of the Tactical Advanced Range Augmentation Tara weapon off the coast of Odisha yesterday. In a statement, the Defence Ministry said the modular range extension kit Tara is the country's first indigenous glide weapon system that converts unguided warheads into precision-guided weapons. Defence Minister Rajnath Singh has congratulated DRDO, IAF, DCPP and the industry for the maiden flight trial.

शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी। माटी की महक है जहां, खेतों खलियानों की वही आवाज घाटियों में गूंजती है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एफएम।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। वक्त हुआ है कार्यक्रम फिल्म संगीत का, तो लीजिए फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुना रहे हैं माय नेम इज़ खान फिल्म का ये गीत शफाकत अमानत अली की आवाज़ में।

तो दोस्तों, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 12:20 होने को है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। बहनें सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन।

0: कार्यक्रम महिला सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस हसीन सफर में हम रहेंगे आपके साथ, आपके हम सफर सपना शर्मा
1: और मीनाक्षी वर्मा।
0: आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: बहनों, जिंदगी का हर दिन अपने साथ कोई ना कोई खास संदेश लेकर आता है
0: जी।
1: कुछ दिन हमें मुस्कुराना सिखाते हैं तो कुछ दिन इंसानियत का असली मतलब भी हमें समझाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने। और देखिए ना, आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है जो हमें सेवा, सहयोग और मानवता की प्रेरणा देता है। जब भी किसी इंसान पर मुश्किलों का पहाड़ टूटता है, तब मदद का बहनों एक छोटा सा हाथ भी जो है ना, वो उम्मीद बन जाता है
1: जी। किसी की पीड़ा को समझना और बिना किसी स्वार्थ के उसकी सहायता करना, यही सच्ची मानवता है।
0: बिल्कुल मीनाक्षी। और देखिए, आज हम अपनी बहनों से बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खास दिन की जो दुनिया भर में सेवा और करुणा की मिसाल माना जाता है
1: जी। और बहनों, आज है 8 मई और आज का ये दिन मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में
0: जी।
1: ये दिन मानव सेवा, करुणा, सहायता और इंसानियत के नाम पर समर्पित होता है
0: जी हाँ, बिल्कुल। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य जो है बहनों, लोगों को ये बताना है कि कठिन परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध, महामारी या किसी भी संकट के समय मानवता सबसे पहले आती है। रेड क्रॉस संस्था दुनिया भर में घायल, बीमार और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करती है
1: जी। और साथ ही विश्व रेड क्रॉस दिवस महान समाज सेवी हेनरी डुनेट की जयंती पर मनाया जाता है। उन्होंने घायल सैनिकों की सेवा से प्रेरित होकर रेड क्रॉस की स्थापना की थी। उनके प्रयासों के कारण आज लाखों

0: लोगों को राहत और सहायता मिल पाती है।
1: जी हाँ बिल्कुल। और देखिए मीनाक्षी, इस वर्ष की थीम की अगर हम बात करें ना, तो इस वर्ष की थीम है मानवता को जीवित रखना।
0: जी
1: और रेड क्रॉस हमें ये संदेश देता है कि मानवता से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता।
0: जी सपना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और सपना, जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी ऐसी मदद करके किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, तो उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है।
1: जी
0: चाहे रक्तदान हो, ज़रूरतमंदों की सहायता हो, या संकट के समय सहयोग, हर
1: बिल्कुल
0: छोटा प्रयास समाज को बेहतर बनाता है।
1: जी हाँ। और विश्व रेड क्रॉस दिवस भी बहनों यही संदेश देता है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो आइए इस विश्व रेड क्रॉस दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि इंसानियत और सेवा की भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे।
0: जी, और किसी की मदद करने के से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, और हमारा जीवन अगर हम किसी की मदद करेंगे तो और भी बेहतर होता जाएगा।
1: जी बिल्कुल। तो मीनाक्षी, ये तो हमने बात की अपनी बहनों से आज के खास दिन की, और बहनों और भी बहुत कुछ खास रहने वाला है आपके लिए इस कार्यक्रम में। तो आपको सुनते रहना है अपना पसंदीदा कार्यक्रम। और देखिए मीनाक्षी, अपनी बहनों का मनोरंजन तो हम ज़रूर करवाएंगे, है ना?
0: जी बिल्कुल। और क्यों ना उन्हें कार्यक्रम का पहला गीत सुनवा दें।
1: जी

0: सपना जब कभी मन मुताबिक कोई काम नहीं होता ना, तो अक्सर हम तनाव में आ जाते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं और किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता।
1: बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने। लेकिन बहनों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए बहनों, हमारा दिमाग जो है ना, नकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है
0: जी।
1: इसलिए हम कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते और अपने लक्ष्यों से भी भटक जाते हैं।
0: लेकिन बहनों, आप चाहें तो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने दिमाग को सकारात्मक बनाए रख सकती हैं
1: जी।
0: बस जरूरत है तो खुद को तैयार या प्रशिक्षित करने की।
1: बिल्कुल। और जो लोग आपके बारे में बेहतर सोचते हैं, आपके लिए अच्छा करते हैं, उन्हें धन्यवाद कहकर या अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर जो है ना, आप अच्छा महसूस तो कर ही सकती हैं।
0: जी, कृतज्ञ भाव हमारे जीवन को सकारात्मक प्रभाव देता है
1: जी।
0: साथ ही तनाव के स्तर को भी कम करता है और जब हम किसी के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, तनाव कम रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।
1: जी हाँ बिल्कुल। और देखिए बहनों, आपके जीवन में जो कुछ भी सकारात्मक है ना, उसके लिए अपनी आत्मा से धन्यवाद दें, क्योंकि कृतज्ञता आत्मा से खिलने वाला सबसे खूबसूरत फूल है।
0: जी सपना, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। साथ ही सकारात्मकता को जीवन में बनाए रखने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुद को संतुलित रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
1: जी हाँ, नकारात्मक ऊर्जा आपके आत्मविश्वास को तोड़ती है और साथ ही बहनों, सकारात्मक दृष्टिकोण को विचलित भी करती है। इससे बचने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है ध्यान।
0: जी, योग ध्यान से निकलने वाली ऊर्जा शरीर में उत्साह लाती है और सकारात्मक हमें बनाती है। इसलिए रोज आप थोड़ा सा समय निकाल कर योग करें, ध्यान करें, ताकि आपका जो मन है वो शांत रहे, दिमाग में नए और अच्छे विचार आएं।
1: जी बिल्कुल। आप देखिए मीनाक्षी, जैसे कहते भी है ना कि खाली दिमाग जो होता है ना, वो शैतान का घर होता है
0: जी।
1: और जब दिमाग अपने काम को पूरा करने पर केंद्रित होता है तो नकारात्मक ऊर्जा हम पर देखिए ना, हावी हो ही नहीं सकती। यानी जब हम कोई ना कोई काम करते रहेंगे, अपने दिमाग में कुछ ना कुछ हमारे ये चलता रहेगा कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है, या कुछ भी आप अपने शौक के काम कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, तो नकारात्मकता है जो है वो आपके दिमाग में हावी नहीं होगी।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि आप बिजी होंगे तो कुछ और सोचने का समय ही नहीं मिल पाएगा
1: जी।
0: और इसके अलावा बहनों, अगर हो सके तो आप दूसरों की मदद करें, किसी भी तरीके से करें, किसी काम में मदद करें।

0: दें, किसी विचार को सोचने के लिए, किसी समस्या का हल करने के लिए,
1: जी
0: किसी भी तरीके से जब आप दूसरों की मदद करेंगी तो वो अपनी स्थिति से बाहर निकल पाएंगे।
1: बिल्कुल मीनाक्षी। और देखिए ना, जब हम दूसरों की मदद करते हैं ना, तो देखिए एक हमारे मन को भी सुकून मिलता है ना?
0: जी, और यही जो सकारात्मक ऊर्जा है ना, फिर कई गुना वापस हमें प्राप्त होती है, कई गुना बढ़कर।
1: जी बिल्कुल। तो बहनों, आप अपनी जिंदगी को बदल सकती है, आपके अंदर इतनी शक्ति है, बस जरूरत है सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करने की।
0: जी, इसके अलावा सही मूड और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा खान पान और पर्याप्त नींद भी बहुत जरूरी होती है।
1: जी,
0: नींद की कमी आपको चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना देती है, बहुत गुस्सा आने लगता है, हर बात पे हम चिढ़ जाते हैं अगर हमें हमारी जो नींद है वो सही तरीके से पूरी ना हुई हो।
1: बिल्कुल। तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है ना?
0: जी
1: काम काज के साथ साथ भरपूर नींद भी लेनी है, आपको खान पान भी अच्छा रखना है ना? ऐसी पौष्टिक चीज़ें आप अपने आहार में शामिल करें ताकि आपको ऊर्जा मिल सके। अपनी दिनचर्या में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने मन मस्तिष्क में, देखिए बहनों, बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
0: जी ये सपना, ये तो हमने बताई कि किस तरीके से बहनें नकारात्मक चीज़ों को पीछे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ सकती हैं, तो क्यों ना हम अपनी बहनों को एक गीत सुनवा दें जिससे उनके मन में एक नई भावना, एक नई सकारात्मक ऊर्जा जाग उठे।
1: जी बिल्कुल।

0: तो देखिए बहनों, आज है शुक्रवार और आज हम आपसे बात करते हैं सौंदर्य चर्चा से संबंधित। तो देखिए मीनाक्षी, आज हम अपनी बहनों से क्या बात करने वाले हैं सौंदर्य चर्चा में?
1: बहनों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका मन सुंदर है तो आपका चेहरा भी सुंदर होगा।
0: जी बिल्कुल
1: आजकल हर कोई सुंदर और चमकदार त्वचा पाना चाहता है।
0: जी
1: टीवी हो, सोशल मीडिया हो या बाजार, हर जगह महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की भरमार है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन क्या सच में खूबसूरत दिखने के लिए ये महंगे प्रोडक्ट्स जरूरी हैं?
0: देखिए मीनाक्षी, चेहरे की सुंदरता तो जहाँ समय के साथ साथ बदल जाती है,
1: जी
0: फैशन बदलते हैं और मेकअप भी कुछ घंटे बाद जो है वो उतर जाता है, लेकिन व्यक्ति की जो आंतरिक सुंदरता है ना, उसका अच्छा व्यवहार, उसकी सादगी, उसकी सोच और चेहरे की सच्ची मुस्कान जो है वही लंबे समय तक लोगों के दिलों में जगह बनाती है।
1: जी बिल्कुल सपना। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ही महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें,
0: जी
1: लेकिन फिर भी हमारी जो बहनें हैं वो ज़्यादा सुंदर दिखना चाहती हैं, तो इसके लिए वो खुद की छोटी छोटी चीज़ें जैसे प्राकृतिक देखभाल वो अपनी कर सकती है, जीवन में कुछ अच्छी आदतें अपना सकती है, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और उनकी त्वचा का जो रंग है वो भी खिलेगा।
0: बिल्कुल, बजाय इसके कि आप महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें।
1: जी
0: तो चलिए बहनों, आज सौंदर्य चर्चा में बात करेंगे कि बिना महंगे प्रोडक्ट के कैसे आप अपनी त्वचा का ख्याल रख सकते हैं। देखिए ना, कई बार हम बाहर से तो बहुत कुछ लगाते हैं बहनों, लेकिन अंदर से शरीर को ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहला और आसान सा उपाय आपको क्या करना है? आपको भरपूर पानी पीना है।
1: जी हाँ सपना, पानी हमारे शरीर से गंदगी बाहर निकालने में मदद करता है और त्वचा को प्राकृतिक चमक भी प्रदान करता है।
0: जी
1: अगर हम दिन भर पर्याप्त पानी पिएं तो चेहरा अपने आप ही फ्रेश और हेल्दी दिखने लगता है।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा हमारी रसोई में कई ऐसी चीज़ें भी मौजूद होती हैं बहनों, जो त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। जैसे हल्दी और बेसन की अगर हम बात करें, तो इसका उबटन बनाकर भी आप अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकती हैं।
1: जी, पुराने समय से लोग इसका इस्तेमाल करते आए हैं। बेसन त्वचा को साफ करता है और हल्दी चेहरे पर निखार लाती है।
0: जी हाँ। और इसी तरह अगर हम दही की बात करें, तो दही त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, और अगर शहद की बात करें तो शहद चेहरे को मुलायम बनाने में मदद करता है।
1: जी, और इसके अलावा आप एलोवेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। त्वचा का सबसे अच्छा दोस्त एलोवेरा को ही माना जाता है।
0: जी
1: ये ठंडक देता है और स्किन को ताजगी महसूस

0: करवाता है।
1: जी बिल्कुल मीनाक्षी, अब देखिए अगर हम खीरे की बात करें तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि खीरे को अगर हम अपने आहार में शामिल करती हैं तो वो हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है।
0: जी
1: उसी तरह अगर हम इसका इस्तेमाल हम अपने चेहरे की सुंदरता को बनाने के लिए भी करते हैं तो ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है।
0: जी बहनों, आपको क्या करना है कि खीरे के स्लाइस डार्क सर्कल हटाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकती हैं।
1: जी
0: चेहरे पर अगर आप निखार चाहती हैं तो खीरे का जो जूस है उसे अपने चेहरे पर आप लगा सकती हैं। जो भी चीज़ आप लगाएं वो अपनी स्किन के हिसाब से लगाएं, यानी कि आपकी त्वचा को जो चीज़ ठीक रहती है, सूट करती है, उसी तरीके से आप चीज़ों का इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल, इसके अलावा देखिए आलू की अगर हम बात करें तो आलू चेहरे की झुर्रियों को कम करता है। आलू के छिलके से हफ्ते में 3 बार चेहरे को मसाज करने पर जो है वो दाग और धब्बे कम हो सकते हैं आपके चेहरे के।
0: जी, और सपना आजकल बहुत ज़्यादा धूप हो गई है तो ऐसे में चेहरे पर टैनिंग होना तो एक आम सी बात है।
1: जी
0: तो बहनों, इसके लिए आप क्या कर सकती हैं कि नींबू का रस और उसके छिलके को आप अपने चेहरे पर लगा सकती हैं। इससे धूप में जितनी भी टैनिंग हुई होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है।
1: जी बिल्कुल, इसके अलावा करेले की अगर हम बात करें तो देखिए चेहरे पर होने वाली एलर्जी में करेले का छिलका जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो ये छोटे छोटे कुछ घरेलू नुस्खे हैं बहनों जिन्हें अपनाकर आप अपनी त्वचा में निखार ला सकती हैं।
0: जी, तो बहनों आपको इसके साथ साथ अपने खाने पीने का भी खास ख्याल रखना है।
1: बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि देखिए खाने पीने का जो है ना वो हमारी दिनचर्या पर, हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे चेहरे पर काफ़ी असर होता है।
0: जी, अगर हम सही समय पर नींद नहीं लेते हैं तो उसका असर सबसे पहले हमारे चेहरे पर दिखाई देता है।
1: जी बिल्कुल,
0: आंखों के नीचे काले घेरे, थकान, फीकी सी त्वचा, ये सब नींद की कमी के कारण हमें होता है।
1: बिल्कुल बहनों, तो आपको क्या करना है, आपको भरपूर नींद लेनी है और साथ ही साथ फल, हरी सब्जियां और पौष्टिक भोजन तो लेना ही है ताकि आपकी त्वचा भी सुंदर दिखे और आप अंदर से भी ऊर्जावान बनी रहें।
0: जी, इसके साथ साथ तनाव कम रखें और हमेशा मुस्कुराती रहें। बहनों, एक बात हमेशा याद रखें कि तनाव सिर्फ मन को ही नहीं चेहरे की चमक को भी कम कर देता है।
1: जी
0: अगर मन खुश हो तो चेहरा अपने आप खिल उठता है।
1: बिल्कुल मीनाक्षी, तो बहनों आज हमने बात की कि खूबसूरत दिखने के लिए हमेशा महंगे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी सी देखभाल, अच्छी आदतें और घरेलू उपाय भी हमारी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं।
0: जी।

0: तो बहनों अब पहुंच गए हैं हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, जहां हम आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताते हैं, किसी चीज के छोटे छोटे गुण बताते हैं जो
1: जी
0: काफी फायदेमंद होते हैं।
1: बिल्कुल मीनाक्षी।
0: तो क्यों ना आज हम सपना अपनी बहनों को छोटी इलायची के बारे में ही बता दें।
1: जी बिल्कुल बताएंगे अपनी बहनों को, क्योंकि हमने अपनी बहनों से कहा था कि आज हम बहुत कुछ खास उनके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, कहने के लिए तो ये छोटी इलायची है, लेकिन इसके गुण और इसके फायदे जो है ना बहुत बड़े हैं बहनों
0: जी,
1: है ना। मुंह में ताजगी देने के साथ साथ इलायची का सेवन जो है ना बहुत से सेहत लाभ भी हमें देता है।
0: जी जैसे कि अगर आपके गले में तकलीफ है और गला दर्द हो रहा है, तो सुबह उठते समय और रात को सोते समय आप छोटी इलायची चबा चबा कर खा सकते हैं और उसके साथ गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। इससे गले की जो खराश है उसकी समस्या में काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा और इस प्रक्रिया को आप कुछ दिन तक करते रहें।
1: बिल्कुल, इसके अलावा पाचन शक्ति की अगर हम बात करें तो भाई पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए भी छोटी इलायची काफ़ी कारगर साबित है। इलायची के हर रोज़ सेवन से पाचन संबंधी समस्याओं से आसानी से निजात मिल सकती है। इसके अलावा पेट संबंधी जो समस्याएं हैं, जैसे भूख है, एसिडिटी है, गैस बनना, सीने में जलन होना, यानी इन सभी समस्याओं को कुछ हद तक कम करने के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद रहती है।
0: जी, और आप लोग बहनों क्या जानती हैं कि चाय में हम इलायची डालकर पीते हैं तो उससे स्वाद तो बढ़ ही जाता है, लेकिन इसका एक

0: और फायदा ये भी है कि ये हमें तनाव ग्रस्त करता है, यानी कि इलायची वाली चाय पीने से जो हमारी टेंशन है ना, काफी हद तक कम हो जाती है। तो जरूर आप लोग भी इसे करके देखें कि आपकी कितनी टेंशन कम होती है।
1: जी बिल्कुल। और इसके अलावा देखिए मीनाक्षी, अगर हम बात करें ना हिचकी की, देखिए ना कई बार अचानक ही हमें हिचकी आना शुरू हो जाती है,
0: जी
1: तो हिचकी की समस्या कभी भी शुरू हो जाती है, कभी कभी ये बिना रुके जो है ना बहुत देर तक आती रहती है, तो ऐसे में इलायची का सेवन काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इलायची में वे गुण होते हैं जो हिचकी की समस्या से निजात दिलाते हैं।
0: जी और इसी प्रकार से अगर शरीर को

0: उपयोग कर सकते हैं। इसके सेवन से शरीर में मौजूद जितने भी विषैले पदार्थ हैं, व्यर्थ पदार्थ हैं, वो किडनी के द्वारा बाहर निकल जाते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और इसके अलावा बहनों, खांसी की अगर हम बात करें तो खांसी की शिकायत में भी हम इलायची चूर्ण और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। इसके अलावा कफ के साथ गले में जलन परेशान करे तो आपको क्या करना है, घी चीनी के साथ छोटी इलायची के चूर्ण का सेवन करना है। और अगर सूखी खांसी है तो सूखी खांसी होने पर छोटी इलायची, खाने का तेल और चीनी मिलाकर जो है वो आपको औषधि तैयार करनी है और इसका सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना है।
0: जी तो बहनों, ये तो अब हमने आपको बता दिए छोटी इलायची के छोटे छोटे गुण, लेकिन बहुत ही फायदेमंद।
1: बिल्कुल।
0: तो अब बहनों को हम कार्यक्रम का अंतिम गीत भी सुनवा देते हैं।
1: जी हाँ।

0: देखिए मीनाक्षी, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कार्यक्रम समाप्ति की ओर, तो अपनी बहनों से अनुमति लेते हैं कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार,
1: नमस्कार।

महिला सम्मेलन, जी हाँ, अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। दोपहर के 1 बजने को है। हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर

राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबू धाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिस्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबुधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शुभ वाणी लाभ वाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी। माटी की महक है जहां, खेतों खलियानों की वही आवाज घाटियों में गूंजती है, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए FM।

अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माई डियर लिसनर्स. 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला. वक्त हुआ है प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती का, तो इस कार्यक्रम का आनंद आप अब से लेकर ठीक 2 बजे तक उठा पाएंगे. जी हाँ दोस्तों, तो कार्यक्रम का जो है वो शुरुआत कर रहे हैं हम फिल्म दिल धड़कने दो. इस फिल्म के गीत के साथ आवाज़ें हैं यशिता शर्मा, सुखविंदर सिंह, मनीष कुमार, टीपू, फरहान अख्तर और शंकर महादेवन की. गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत या है शंकर एहसान लॉय ने.

म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम में नेक्स्ट म्यूजिकल नंबर आपके लिए प्ले कर रहे हैं तनु वेड्स मनु फिल्म से। आवाज़ है लहम्बर हुसैनपुरी की, गीत के बोल लिए हैं राजशेखर ने, संगीत दिया है कृष्णा ने।

0: लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं पटियाला हाउस फिल्म का ये गीत महालक्ष्मी अय्यर, हर्द कौर और जस्सी की आवाज़ों में। गीत की बोली की है अन्विता दत्त ने, संगीत दिया है शंकर एहसान लोय ने।
1: दिस इज समथिंग।

प्रेम रतन धन पाए उस फिल्म का गीत अभी आपने सुना पलक मूचल और साथियों की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने, संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने।

म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर, और प्रोग्राम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं बंगिस्तान फिल्म से। आवाज़ें हैं सोना मोहपत्रा, अभिषेक नीरवाल और श्रद्धा फरीदी की। गीत के बोल लिखे हैं पुनीत कृष्णा ने, संगीत दिया है राम संपत ने।

श्रीकांत फिल्म का गीत अभी आपने सुना, सचेत टंडन और परम्परा टंडन की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे थे योगेश दुबे ने, संगीत से सजाया था सचेत और परम्परा ने।

म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर, और प्रोग्राम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म से। आवाज़ें हैं विशाल मिश्रा, नेहा बसीन और इरशाद कामिल की। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, संगीत दिया है विशाल मिश्रा ने।

पुष्पा टू द रोल फिल्म से अभी आपने एक गीत एंजॉय किया श्रेया घोषाल की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे रकीब आलम ने और संगीत दिया था देवी श्री प्रसाद ने।

भूल भुलैया 3 फिल्म से भी आपने ये गीत सुना श्रेया घोषाल की आवाज़ में। गीत के बोल और संगीत से सजाया था अमाल मलिक और प्रीतम ने। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुना रहे हैं शिमला मिर्च फिल्म से। आवाज़ें हैं मीत ब्रूस, अनजान और स्टीवन बेन की। गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने और संगीत दिया है अनजान ने।

तो दोस्तों, इसी गीत के साथ म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम अब समाप्त होता है। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। दोस्तों, वक्त हुआ है कार्यक्रम सबरंग का। लीजिए, सबरंग कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज में ये गजल।

0: तो दोस्तों, इसी गीत के साथ सबरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 2:15 होने को है दोपहर हिंदी समाचारों के लिए। आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
2: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग 1.5 दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
1: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने

0: कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे

0: सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैंड के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई

0: बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर यानी 774 किलो हर्ट्स और एफएम शिमला 103.7 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं स्पीति कार्यक्रम।

जुले पीती मीमा छांगमाला याकाशवाणी शिमला इनू पीती डेग्रीम की तुजुर रानसुंग पीती की डेग्रीम ला तेरिंग स्पीति वस्त्र से न खोलाक यांग थेने समय की सही उपयोग करला ज्ञाकर की लोन करला शुनाइन स्पीति की वस्त्र से न पीती लुम्बा की खोलाक शुनाइन अग्या लिंग लग्युदो का कि पीती लुम्बा ते मीनांग मेती देमू रंग यापोका पीती रू ठांगमू मीनांग मेती योगा तेने खोला का अति हिसाब सु होंगा खोला गया ते मी सेना पूजा या की सोसो तेने आने सेना पमो या की सोसो योगा तेने अल्ला अजाया पूजा की खोला कोला शुनाइन हजा या कि पीती ते मीनांग मेती ठांगमू लुम्बाइनो अति फिला खोला का मांग छिया फाल रे की ठोनमू खोंगा पीती मीग्या की खोला रे गोज खो ठांगमू योन्ना पीती की मिया दी खोला गया खोंगा यंग रेगु सेना दी ते मीनांग में ती ठोनमू का दी ते याहू रंग फाल की चेमका दी खो तंग रेगु या पूजा या खोंगा चार लाख सेना चार लाख ते हजी लुंग लुक तंग रेलुक की पाहु ना सुजवा पाहु ला याक पुछा ये तेने अति ला चार लाख जुआ तेने दीते चेम जी यांग दिमु छाई खोंगा चार लाख ते मीनांग में ती ट्रन मु का योगा सुम्पा ते सुतन सुतन ते फाल नींबू सेन सूती पतलून हिनो ई ला लुक की फाल काल जी तेने ताजी अति गापला पट्टी जोशी सुतन जुआ फाल तंग सुतन की सूती सुतन ते ठोनमु मीना मेती योगा केरा जी पाते छिनु केरा चला चार लाख ला खोयांग खोला रेगुन ला खोना ते केतपाला दमना तेरा हई दी ची सका केरा सका यांग पट्टी का सका ई ते सूती तंग फाल की पट्टी का जोशी केतपाला दमगा इया ते पूजा या की खोला ला दमगा पीती आने या से ना फोमो या की खोला चीन हुआ ताइल फिला शुनाइन सुलमा सुलमा से ना यंग इते मीना मेती सुल से ना सुल चाकचे तेने आने या खोंगा इते रेंगबू जाए यंग याहू चाय फालकी का जवा था थालो या

yang hoi gra ki ndame da ka swa ite ring bu chai yak bu chai oka ik ton mu ka yoka yang lokpa lokpa te chi sa ka sna lokpa te luk ki pa hu na zo ite phita la gonam chuk chi minang me ti te mu cha chi konga lingse te chin was na ite phal ki yang kutpa ki ka nga ite minang me ti demu cha chi yang daminda design ki ka onga yang ane ya ita shi ka so minang me ti design demu ka chua rishi ka ne ha daminda babsal ki design ka chukshi iling se chua igabla ila ane ala yang sulmal damna kera ka yoka kera te yang sulmala yang ketpala damna ka zwa ite phal ki ka zwa yang raya ka zwa yang baskot se na yang ite yang sulma taru ka khonga ite minang meti demo chai yang oti chai yoka tivik se na yang shiu ane ya tivi te minang meti demo chun zwa ifita la gonam ki re ka chukshi minang meti demo zwa lam te kangwa gubla अति ते ताई पाल की पट्टी का निनुम चाही गोंगा इते लाडू यंग का योगा इते मिनांग मिति ठोनमु का योगा होई दी खोला या तारू लम का थांगबु या लम का गोंगा थेने इताजी का थेने आने या कि तक्चा ची ची जिनुवा से ना पैरा कौनता उल्तिक मुतिक उ थेने अति दिग्रा यंग पिजुप दोचन घ्यूं तंग अति या मिनांग मिति dimu dimu odi ane ya ki cha ko yang ta tak cha ka minang me tio ka u ya puja ya ki tak cha chi nu wa sena khonja ya la yang ulti ka ka kaung ka ka surtu ka ka chering ki pa ka ka oji di piti ru minang me ti dimu dimu khola rang chala rang odi ka ka oji piti ki khola ya te topla लापचा ची गिनु की लुंगबी खोला याते खोंजी और माजे तलुक सोला माजे तायंग और की न्याम पुला जुड़ाई चुया फिला काहिनो ये फिला यंग दिमु छे खोला खोंजी याक पूछा है और लुक्सो की गहराइयों की महत्व का दीका सिखाई चुआ यंग न्याम पुला और लुंगबी चीज सम्मान रंग अतिया का फैचा की लापचा का ये खोला या इनो तेन थांग भी खोला या मजे ता तासंग का मिया ये खोला या मिना मिती खोंगा दी ते स्पीति खोला कोला छिंग ये सुमिन था आने कुमारी दोर्जे की न्यू लंबुजी न्यंदा जा

आने कुमारी दोर्जे की लुयन पुगाबला था समय की सदुपयोग सेना तुझत ला दिमुचाई यंग आया उपयोग भेजा पीति मीमांगला तुझत की सम सदुपयोग की सेना यंग दिमुचाई खातर भेजा की फिला चिग्नी सुमशुनाइन सुजत तुझत ते आजी मिजे ला मिनांग में ती मूल्यवान सेना खाक छिनमु चला चिकिनु मूल चला गाड़ी यंग आया की तकचाया खांगबाया यां दोबारा चुनेगा तुझो ते लंच जी पुसोना तेने लोग जी मियाँगा समय ही जीवन से ना तुझो ते मिजे मिलिंगला मिजे ला यां वाया निशु चिपचित घंटे होगा थोपका अति ला वाया धीमु छाशी उपयोग भेजा वाया की मिजे ला यां वही थर खेल जा फिला ई ला लोग समझे गे नो थामी याला हलम तुझो ला लहा मजो वा तिंग ला काहुन्योंगा अति फिला तुझत ला लिहा जोया ते मिनांग मेती खाक छिनमु जी इनो तुझत ला लहा सेना ची सेना हॉय जी री तुझत ला हॉजी याकपु छाई यंग यरके छाई ला पेचा रंग लिहा ची युन ना तुझत ला डूब चुक जा फिला इनो यंग मी चुक सेन ना तुझत ला कीमत ते हाक होया फिला इनो अति ते तिंग ला हॉया ला खाऊ म्योंग जा फिला इनो यरगे तंगना याकपु योंगना फिला इनो दांग दिनिया की कालवा नांग दो तुझे की बर्बादी ते मिनंग मेती कारण यो का जिसे ना ची ची हुआ मोबाइल फोन सोशल मीडिया टीवी सुमी गया ला लिमी लम चू यो जी तुझे ला मैं व्यर्थ चू फिला इनो और जी यंग लाभ के इन टू याला चेला से ना कौन जाया मोबाइल से मिनंग मेती तुझे बर्बाद चुआ कौन जला हाँ मिखवा चम आया मोबाइल से ना यो अति सुख कौन जाए पेचा लाभ जाया का मियाँगा अति ला तिंग ला लूंडा ते तिंग ला कौन जाया पछताई चुआ अति फिलन दी ते मनोरंजन रंग लिहा अच्छी इन्ना की न्याम पुला संतुलन से ना आया यंग बराबर चुया भी हाक होया समय के उपयोग से न ची सको तुझे ला लह पेचा लिहा ते तो मंशोला डूब चुक जाओ जी निन्सरे की ला ची ची फेनना है ना अति ते होया लिस ची ची चू या तिरिंग जो फेनना है तिरिंग तो फेनना है ते अति ते समलोंगा लतांग जी ते अति गाबला पेचा की टू या ला लापना लंच है ना अति ते गा तो गा मुलाए टू या चुन या ला सिल जा रंग व्यायाम चुया से ना यहाँ योगा रे फेनना है ना अति की लिहा का चुना अति तैयारी चुना मिया तुझे अनुसार ला

Ani tashi somoki lunyen pugabla ta gyaka kilon panchayat chunaw pradesh ki tong tsum dungya nipchu rangji panchayat nangdu min ki shukangna shangma nipat ninu di chunaw ki min kangna te shangma nika ni te chino san tong churuk rangget get kya gupchu khungchik min shukanga di mathia di te churuk mai supa min kanga seka राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार जिला मंडी रोमांश्य तोंग सुम रंग सुमजु रंग चिक मी ठाक सेका और जिला लाहौल स्पीति नांगदू न्यूंगशो मी कांगा चीचन दुंजु खुंचिक मी दर्ज चुआ सेका दिमाथिया यंग हॉय पं चंपा नांगदू तोंगी रंग यंग स्टासर्ट ऊना नांगदू यंग तोंग ची रंग गेत गया रंग यंग बानवी हमीरपुर नांगदू तोंग चिक रंग अबग्या रंग बत्तर बिलासपुर नांगदू तोंग चिक रंग जी रंग उनसठ सोलन नांगदू तोंग जी रंग चांगा कांगड़ा नांगदू तोंग चिक रंग जिबग्या दुन कुल्लू नांगदू तोंग चिक सुमग्या रंग तेरासी सिरमौर नांगदू गेत रंग सतरा शिमला नांगदू दुनग्या रंग चौरासी किन्नौर नांगदू यंग नब्बे मिन दर्चुआ सगा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव फीला चुनाव की मई 12 सुबह मिन तेदा रंग यंग मिन वापिस ने ना इंदु सेखा अजी फीला यंग चूरू रंग चौंगा महिला उम्मीदवार चुनाव सुम्पाते यंग जारी चुआ सेखा देश की यंग कुल तोंग कत्ती हजार रंग बीएससी पदों की फीला यंग दीदे सुम्पा चरण हिनु सेखा यंग दिला निशु गे चपके तरंग नि सुमजू महिला वोट चुका सेगा थेने यंग हवाई सेवा की लोन कोला शिमला जिला की जुबलहट्टी रंग हवाई अड्डे नांगदु मांगदु चुनाइनो सेगा लियांग दिला नियमित सेवा का गौचुआ सेगा एयरलाइंस एयर दिल्ली शिमला रंग शिमला धर्मशाला फिला मंगलवार चिपू ते मेंडवात में बाकी हफ्ता या यंग उड़ाई चुआ सेका कंपनी सु एडवांस बुकिंग का कोच हुआ सेका गल दी नवंबर नी नसु 2025 नसु दी बंद फूसा सेका दी सेवाया ते यहाँ यहाँ दिबारा कोच हुआ सेका तेरे यंग रेड क्रॉस दिवस तेरिंग विश्व सने यंग जिम्बली नांग दो रेड क्रॉस दिवस ते मिना में ती मनाई जोवा सेका दी दिवस लते मिस्र की सेवा रंग यंग याकपू जी फीला इनो सका यंग दी थे विश्व रेड क्रॉस दिवस थे लौता मई गेदला तंगा दिला और 2026 ला वर्ष ला ऑन द साइड ऑफ ह्यूमैनिटी का सेना मानवता है सेना और मिसर ला याकपू हों जी फीला इनो सका तेने दी थे ग्याकर की लोन कोला चिंगी सुमिन था आने

0: स्पीति कार्यक्रम आपने सुना, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडिया वेव 387.6 मीटर और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी आप ये सुन सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में शामिल होने वाले कुल उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष मार्च में 2,17,00,000 तक पहुंच गई है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित ये योजना सेवानिवृत्ति के बाद नागरिकों को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रबंधन को परिसंपत्तियां एनपीएस के तहत लगभग 1,600,000,000 तक पहुंच चुकी है। अटल पेंशन योजना में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी 8,96,00,000 से अधिक हो चुकी है। इस योजना का शुभारंभ मई 2015 में किया गया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने एशिया कप में शानदार प्रदर्शन कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करने वाले स्पीति घाटी के लोसर गांव के युवा खिलाड़ी तंजिन तशी को सम्मानित किया। गौरतलब है कि भारतीय टीम में हिमाचल से शामिल एकमात्र खिलाड़ी तंजिन तशी ने प्रतियोगिता में कई शानदार गोल किए और चीन के खिलाफ मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी हासिल किया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: मुख्यमंत्री ने तंजिन तशी को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए 2,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि तंजिन तशी जैसे खिलाड़ी प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और सरकार आइस हॉकी सहित शरतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी। इस दौरान ये भी बताया गया है कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से काजा में लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से आइस हॉकी स्टेडियम और 8 करोड़ रुपए की लागत से क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। दोनों परियोजनाओं को केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल है और इस वर्ष कार्य शुरू होने की संभावना है। स्पीति के इस होनहार खिलाड़ी की उपलब्धि से पूरे हिमाचल में खुशी का माहौल है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश के कर्मचारियों से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का वायदा किया था और इसे अपनी प्रमुख गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि सरकार के आश्वासनों पर विश्वास करते हुए बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने ओपीएस को चुना, जबकि कुछ कर्मचारियों ने एनपीएस में बने रहने का निर्णय लिया। सिकंदर कुमार ने कहा कि आज स्थिति ये है कि एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र सरकार की दरों के अनुसार लगभग 60% डीए दिया जा रहा है, जबकि ओपीएस कर्मचारियों को राज्य सरकार की दरों के अनुसार केवल 45% डीए मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि समान पद, समान कार्य और समान जिम्मेदारियों के बावजूद कर्मचारियों के बीच इस प्रकार का अंतर पूरी तरह भेदभावपूर्ण है। नए वैश्विक आर्थिक क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज शिमला में शुरू हुआ। कोटशिरा कॉलेज शिमला और देशभक्त यूनिवर्सिटी मंडी गोविंदगढ़ पंजाब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने किया। उन्होंने सम्मेलन को आज के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, जो सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।
3: जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस है, हिंदुस्तान कैसे उसमें उभरता हुआ इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, वो सारे टच होंगे। यहाँ पर जो एक्सपर्ट आए हैं, तो मुझे विश्वास है कि ये जो 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, ये अपने आप में सक्षम होगी, इनोवेटिव होगी और यहाँ ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़े हुए एक्सपर्ट इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: सम्मेलन में विशेषज्ञ वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, पर्यावरण व तकनीकी सहित सभी क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे, ताकि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को कर्मचारियों के वेतन, पेंशन

0: पेंशन और दैनिक खर्च चलाने के लिए लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है, जो इस सरकार की विफल आर्थिक नीतियों का सबसे बड़ा प्रमाण है। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास ना तो आर्थिक दृष्टि है और ना ही वित्तीय प्रबंधन की कोई स्पष्ट नीति। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश की जनता को राहत देने के बजाय केवल महंगाई बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश की जनता के हितों की आवाज उठाती रहेगी और कांग्रेस सरकार की जनविरोधी, आर्थिक रूप से विफल और पक्षपातपूर्ण नीतियों को लोगों के बीच उजागर किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। आज का विषय है भारत में उच्च मूल्य वाली फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है।
2: कृषि विकसित भारत के विजन में एक आधारभूत स्थान रखती है। पिछले एक दशक में इस क्षेत्र ने 4.45% की दर से वृद्धि दर्ज की है, जो पूर्ववर्ती दशकों की तुलना में सर्वाधिक है। इस परिवर्तन के केंद्र में बागवानी है, जो भारत की उच्च मूल्य फसल अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में उभरी है। फलों और सब्जियों से लेकर फूलों, मसालों और बागान फसलों तक बागवानी ग्रामीण परिदृश्य को रूपांतरित कर रही है। पारंपरिक मुख्य फसलों के विपरीत उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलें प्रति इकाई भूमि पर अधिक प्रतिफल उत्पन्न करती हैं और कृषि सकल मूल्य संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत में कृषि के विकास के प्रेरक के रूप में बागवानी क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कृषि फसल उपक्षेत्र के सकल मूल्य उत्पादन में लगभग 37% योगदान देता है और भारत की कृषि विकास की दिशा में एक आधारशिला के रूप में उभरा है। उत्पादन में निरंतर वृद्धि इस क्षेत्र के बढ़ते योगदान को रेखांकित करती है, जो न केवल समग्र कृषि उत्पादन में बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था के भीतर मूल्य संवर्धन में भी परिलक्षित होता है। बागवानी क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति इसके रणनीतिक महत्व को और सुदृढ़ करती है। देश सब्जियों, फलों और आलू के उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। वैश्विक उत्पादन में फलों का योगदान 9.18% तथा सब्जियों का योगदान 8.18% है। केंद्रीय बजट 2026-27 ने उच्च मूल्य कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए फसल विशिष्ट क्षेत्र आधारित भिन्न रणनीति पर बल दिया है, जो कृषक आय बढ़ाने और उत्पादन प्रणालियों में विविधता लाने की इसकी क्षमता को स्वीकार करता है। नारियल क्षेत्र भारत की बागवानी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो लगभग 3 करोड़ लोगों, जिनमें लगभग 1 करोड़ किसान शामिल हैं, की आजीविका का समर्थन करता है। भारत नारियल उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 22.44% योगदान देता है तथा खेती के क्षेत्रफल के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है, जो विश्व के कुल नारियल क्षेत्र का करीब 19.23% है। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत नारियल विकास बोर्ड ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नारियल की खेती और संबंधित उद्योगों के एकीकृत विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक नारियल प्रोत्साहन योजना प्रस्तावित की गई है, जिसमें प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में पुराने और कम उपज देने वाले पेड़ों को उन्नत पौधों और उच्च उत्पादकता वाली किस्मों से प्रतिस्थापित करना शामिल है। भारत में काजू और कोको की खेती के संगठित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समर्पित संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं। बादाम एक अन्य उच्च मूल्य समतोषण मेवा नट फसल है, जो विशेष रूप से हृदय संबंधी तथा पाचन स्वास्थ्य के लिए अपने पोषण और स्वास्थ्य लाभों के कारण व्यापक रूप से पहचानी जाती है। बागवानी सांख्यिकी इकाई कृषि व किसान कल्याण विभाग के अनुसार भारत में वर्ष 2024-25 में बादाम का उत्पादन करीब 14,000 मीट्रिक टन रहा, जिसकी खेती मुख्यतः जम्मू कश्मीर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में केंद्रित है। जम्मू कश्मीर देश के कुल उत्पादन में 83% से अधिक योगदान देता है और कश्मीर क्षेत्र में प्रमुख प्रसंस्करण

0: और विनिर्माण केंद्र स्थापित है। हिमालय क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण मेवा फसल चिलगोजा है, जो अत्यंत मूल्यवान चिलगोजा पाइन नट्स का उत्पादन करती है। इसे अक्सर चैंपियन ऑफ द रॉकी माउंटेन्स कहा जाता है। ये फसल हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जनजातीय समुदायों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चिलगोजा पाइन उत्तर पश्चिमी हिमालय की आंतरिक शुष्क चोटियों में उगता है, जहां कम वर्षा और भारी शीतकालीन हिमपात जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं, जिससे ये प्रजाति पारिस्थितिक रूप से अनुकूल होने के साथ साथ स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण बन जाती है।
1: सामयिक चर्चा आपने सुनी, विषय था भारत में उच्च मूल्य वाली फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा। वाचिक स्वर प्रभा शर्मा का था। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
3: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। वक्त हुआ है प्रोग्राम फिल्म संगीत ओल्ड हिट्स का। तो लीजिए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आदमी फिल्म के इस गीत के साथ, लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने और संगीत दिया है नौशाद ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एक श्रीमान एक श्रीमती से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की और संगीत रचना कल्याण जी आनंद जी की।

0: दोस्तों, हम साया फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आशा भोसले की आवाज़ में गीत की वो लिखे थे हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया था ओपी नैयर ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं हाय मेरा दिल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है उषा खन्ना ने।
1: दुनिया कहती मुझको पागल, अरे मैं कहता दुनिया को पागल। हाय हाय मेरा दिल।

तो दोस्तों, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत ओल्ड हिट्स प्रोग्राम अब समाप्त होता है। एक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 3:30 हुए हैं। लीजिए, अब पेश है युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: हवाएं पूछती हैं अब वो खुशबू खो गई कहाँ, परिंदे ढूंढते हैं अब वो शजर जो सो गई कहाँ। हमने तरक्की तो कर ली मगर ये कैसा मंजर है कि प्यासी है धरती और हर तरफ समंदर है। नमस्कार युवा साथियों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त अंकिता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो सिर्फ चर्चा का विषय नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का सवाल है, जलवायु परिवर्तन। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि आजकल मौसम कुछ बदला बदला सा है, कभी बेमौसम बारिश तो कभी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। क्या आपको याद है बचपन में मई का मतलब होता था आम का मज़ा, लेकिन आज मई का मतलब है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और हीट वेव की चेतावनियाँ। ये सब कुछ और नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन की दस्तक है। आज के इस खास शो में हम जानेंगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और हम युवा इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं। चलिए इस तपती दोपहर में ठंडक का एहसास ढूंढते हैं और करते हैं आज के सफ़र की शुरुआत इस सुरीले गीत के साथ।
1: तुम तनक तुम तनक तुम तनक तुम

न सौंधी खुशबू मिट्टी की, ना सावन का वो शोर रहा, इंसान की अपनी फितरत से कुदरत का बदलता तौर रहा। दिसंबर जल रहा है और जून में बारिश होती है, देखूं कैसे ये धरती अब अपनों की खातिर रोती है। प्रकृति की खूबसूरती को बचाना ही हमारा मकसद है। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज असल में पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वो वृद्धि है जो हमारी मानवीय गतिविधियों की वजह से हो रही है। आज आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। भारत में भी हम इसके असर देख रहे हैं, चाहे वो हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना हो या बदलता हुआ मॉनसून। दोस्तों, गर्मी के महीने में गर्मी होना स्वाभाविक है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में गर्मी का जो रौद्र रूप हम देख रहे हैं वो प्राकृतिक नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी धरती का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। जंगलों का कटना और कंक्रीट के जंगलों का बढ़ना, इसने

शहरों को हीट आइलैंड बना दिया है। यही कारण है कि आज मई के महीने में भी पहाड़ों पर ठंडी हवाएं नहीं बल्कि गर्म लू चलने लगी है। अगर हमने आज अपनी कार्बन फुटप्रिंट को कम नहीं किया तो आने वाला समय गर्मी की तपन और घातक सिद्ध कर सकती है।

परिंदों के ठिकाने छीनकर वो खुद को आबाद कहता है, कंक्रीट के इन जंगलों को वो शहर ए आज़ाद कहता है, मगर जब सांस लेने को हवा तक कम पड़ जाएगी तब समझेगा कि इसे विकास नहीं विनाश कहते हैं। अब वक्त चेतावनी का नहीं कार्यवाही का है। बेमौसम बारिश, भीषण सूखा और चक्रवाती तूफानों की बढ़ती संख्या इस बात का सबूत है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है। खेती तबाह हो रही है और कई पशु पक्षी हमेशा के लिए विलुप्त हो रहे हैं। अगर हम आज भी नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं जब साफ पानी, ताज़ी हवा सिर्फ इतिहास की किताबों में मिलेंगी। जलवायु परिवर्तन कोई दूर का खतरा नहीं बल्कि हमारे दरवाजे पर खड़ी हकीकत है।

दिए को जलाने के लिए एक लौ ही काफ़ी होती है, बंजर जमीन को बदलने के लिए एक बूंद ही काफ़ी होती है। उठो कि मिलकर बचा लें इस डूबती हुई किश्ती को, वरना आने वाली सदियां बस धूल ही फांकी होती है। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि आजकल सिर्फ गर्मी ही अधिक नहीं, बल्कि अचानक धूल भरी आंधियां भी तेज़ी से चलने लगी है। इसके साथ ही बेमौसम बरसात भी होने लगी है। क्लाइमेट चेंज ने मौसम के चक्र को बिगाड़ दिया है। एक युवा होने के नाते हम अक्सर सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, पर याद रखिए, बदलाव छोटे कदमों से ही आता है। छोटे छोटे बदलाव बड़ी क्रांति ला सकते हैं, जैसे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का त्याग करना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। आप सभी भी अपने स्तर पर रिसाइकल और रीयूज़ की आदत डाल सकते हैं और साथ ही कम से कम बिजली की खपत कर सकते हैं, पानी की हर बूंद बचा सकते हैं और इस चिलचिलाती धूप में अपने घरों की छतों पर पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं।

निराशा के इन बादलों के बीच उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। हमें अपनी जीवन शैली में बड़े बदलाव करने होंगे। रिड्यूस, रिज्यू और रिसाइकल को केवल नारा नहीं बल्कि आदत बनाना होगा। ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए कोयला और पेट्रोल के बजाय सूर्य, हवा और पानी से बनने वाली ग्रीन एनर्जी की ओर तेज़ी से बढ़ना होगा। शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाना और कचरे के सही निस्तारण के लिए गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग करना एक बड़ी क्रांति ला सकता है। हमें ऐसी तकनीक को बढ़ावा देना होगा जो कम प्रदूषण करे और टिकाऊ हो।

इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी किसी नए दिन नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी इस खूबसूरत सी प्रकृति का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें आकाशवाणी शिमला। नमस्कार।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
1: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। वक्त हुआ है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। तो लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दुलारा फिल्म के इस गीत के साथ। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में गीत के बोल लिखे हैं रानी मलिक ने और संगीत दिया है निखिल विनय ने।

दोस्तों, इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुना रहे हैं फिल्म बंटी और बबली से। आवाजें हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की, शब्द रचना गुलजार की और संगीत रचना शंकर एहसान लॉय की।

तो दोस्तों, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत प्रोग्राम अब समाप्त होता है। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 4:20 होने को है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और आकाशवाणी एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। प्रस्तुत है हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आइए सबसे पहले सुनते हैं सिरमौरी कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।

सिरमौरी कार्यक्रम दा तुसो भी सुनने वाले का स्वागत असो। सुरेश कुमार सिंह ताके डोबेशी तुसो भी का राम राम। गीतों और बातों के यो बैगे बठिया कार्यक्रम दे एतलो मारे बात लाने बुजुर्ग का मान सम्मान करना ची। इंदा के साथ कुछ खबर सार सुन बे और त्रिलोकपुर एक धार्मिक स्थल इंदा का शी भी चर्चा लाऊं और गिरे कुछ लोकगीत तो भी सुनबे। पर गाया गया साये कार्यक्रम की शुरुआत करूबे यो बहुत बढ़िया सिरमौरी लोकगीत तो साथी।

ब्रह्मदत्तरो साथी को गाऊं दो सिरमरी लोक गीत आमे सोबिये सुनो। ऐसा के बोलो जे यालटू के मिठियाए और ठगड़े के शीख बस ये चिताइयो। जब हमें जाते दो यालटू पाओ तो पहले कड़ुओ लागा और जब तीन के बाद पानी पियो तो पानी मिठो लागो। तैसे ही हमारे गौरों के गांव गढ़ों के और ठोड़ों के जो थोड़े भी बुढ़ाई को सो बुजुर्गों सो कभी कभी तिनके जो बातों से बड़ी कड़वी जी लागो। कल जे दिकांडी जी बेलारियो यो जानी जे सासो दे शूल भेनाए पर तिनके पूरे जीवन गाने का अनुभव और अपनी बीती बारी के जो सीख हो सो से तिनके बातों के माध्यम से आग औलाद कैसे चेतावनी चाहो सिखाने चाहो। और बात बीत दे उम्र बीत दे बुढ़ाई को की बातों सच्ची साबित हो जतोड़े जिनी गौर दे बुजुर्गों का मानो बुढ़ाई को की इज्जत हो से जो गर्व स्वर्ग समान हो। और जैसे गांव का देवी बूढ़े ठोकड़े के सियाने के शाह पूछो सजा गांव भी समाज का नाव थो। ऐसा बोलो बोलो जे सजाओ सियाणा जे ने समा पछियाणा उम्र के बूढ़े कोई हो दो देशों का बचपन चौ देशों को छोरपण और तीन के बाद बुढ़ापा सभी के जीवन गाणी दा आओ। पर जरूरी नहीं हो जितोड़े बूढ़े बुजुर्ग हुए से सब सियाणे हुए सब जानकार हुए सब जो ऐसी मौत सीखो के पुछने जुगे हुए जेने अपनी जीवन गाणी दो कुछ सीखो से ही अपने चौथेपणों दे आग औलाद के नोये नौलों के भी सीख दे सको। जोंजा आपू जानो से ही ओकी आगे भी बखाणो। और इजो भी बोला जब भाई मनो का ठोकड़ा मुजोई का जागा संद बयानवे जागा सुता और अदराते पागा यानी कि तेसी ठोकड़े का भी किए सुखा थी ने जेने मनो युदो का तो जेने जानो तेने समाज ओ किया गया भी बखाणो चाहिए ताकि तस्के जो गुण सीख का फायदा है से समाज के भी बेटा। और तेसी गौरव का भी किए सुखा थी ने जैसे गौरव का मुजो यानी कि जिंदगा से पूरा छापोर टिको दो तेसी मुजोई दी टैक लानी पड़े तिंदे के जगवाली करनी पड़े। और तशाई सजा आदमी तेसकी भी सेहत ठीक रहो देने जोंजा संदो साथी और जिस सूरज उग दे यानी कि जब प्रदोष कालो फिरे यानी कि जब देश चुप तो लागो और सौंद पड़ दी लागो जुंजा तेखणो सुतो और जिसो जखणो दो आंदा लागो सूरज उगदा लागो तेखणो सुतो तेसकी भी सेहत ठीक रहो देने। और जुंजा आधी रात एक थी यात्रा शुरू करो ऐसो बोलो जो भाई रात के चौथे पर दे तो बुतो के बेड़ो तो जुंजा के थी अपनी नोए यात्रा शुरू करो तो सज यात्रा भी शुभ मानने जान दे। अपने बुजुर्गों की कदर करनी चाहिए क्योंकि हमारे सभी के भी हमेशा जवान रोने।

बुढ़ापा सभी की जीवनगाणी का आंदा मौते शिखक है शाह पुछक है और अशो बशक है रितोक हितोक है खागो बागोक है खेलो खुमलिक है अमारे जो ठगड़े सो बुढ़ाई को सो तिनकी राह राय शुमारे शाह पूछ हम जरूर लौनी चाहिए। तभी तो वैसे आने वाली पीढ़ी के भी और जितोड़ी भी कुगोड़ी टोलियो से भी सुगोड़ी पोलियो काम भी हमारे तभी तो सफल होले कुछ हमें आपका भी अच्छो कुछ सीखे पाऊंगे। सुन भेजो गीत।

जो कि तरह बीरो साथी को गाउन दो एजवा में गीत सुनो एबे खबर सार। पहले समाचार सौ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलो जाए ऑपरेशन सिंदूर जो पछले वर्ष 8 मई दा शुरुआत थिया तिंदा जो सशस्त्र सीमा बले और सैनिक ऐसे बैगे बटिया जो ऐसी अपने साहस वीरता और दृढ़ संकल्प का जो ऐसे परिचय दिया प्रदर्शन करा और देश के जो सुरक्षा है तेनिए बखूबी करी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है एचपीएमसी के आने वाले जो सह उसी जनते ही हैं से जरूरी व्यवस्था करने ते इंतजाम करने ते निर्देश दिए ताकि बागवानों के किए भी बातें की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़ो। पंचायतों के चुनाव ते ही नामांकन पत्र बनने के जो सिलसिला से हिजो 42 शुरू होए रहा 42-7 तारीख ते भी नामांकन भरे हुए एतलो भी नामांकन भरेलो है और 11 मई दे भी पंचायत चुनाव दे भाग लौने वाले जतड़े भी इच्छुक उम्मीदवारों से अपना नाव के जो अर्जी ऐसे दे सको नामांकन पत्र भरे सको। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस दे शामिल होने वाले कुल उपभोक्ताओं की जो संख्या है से यो वर्ष मार्च तोड़ी 2,17,00,000 तोड़ी पहुंचे रहे और इन्दे ते जो जमा परिसंपत्ति असो से 16,00,000 करोड़ रुपये तोड़ी पहुंचे रहे जबकि अटल पेंशन योजना दे 8,96,00,000 खाते खुलें दे असो ऐसी जो योजना सो से इन्दे की शुरुआत 2015 दे करे गए थे। ये थे भाई खबर सार और अभी हमारे बात लाने सिरमौर का एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल त्रिलोकपुर। त्रिलोकपुर एक गांव सौ छोटा जिया कस्बा पे बने रुआ और 924 किलोमीटर की दूरी पांदी बसांदास समुद्र की तलाई सा 430 मीटर यानी कि 1,410 फुट की ऊंचाई पांदी ऐसा जो कस्बा है छोटा जिया नगर ऐसे बसांदास। एथे माता बाला सुंदरी का बैगेबठिया मंदिर हो भगवती त्रिपुर बाला सुंदरी माता का जो मंदिर है देख दे माता के दर्शन कर दे जातरू ना केवल हिमाचल प्रदेश से बल्कि भारत के कई और राज्यों से भी एथे धार्मिक यात्रा कर दे पूजो। ऐसो बोलो जे जो जम्मू के कटड़ा से उबड़े

आकाशवाणी शिमला, वक्त होगा 4:50। एजा वक्त श्रोताओं तुम रहे अपने पसंदीदा कार्यक्रम रहा जिंदा नाव सो महास्वी कार्यक्रम। कार्यक्रम सुनने वाले बद्य श्रोताओं के सब दुपोले दविंदर शर्मा दीपोली शिलुई दादू हाथों जोड़ ढाल श्रोताओं सब दुपोले तो मैं तुम बद्य श्रोताओं रे स्वस्थ रे ठीक होने की कामना भगवान दू करो और हमें उम्मीद करो कि तुम्हें ठीक होले कार्यक्रम का इंतजार भी कर दे लग रहे होले। श्रोताओं आज विश्व रेड क्रॉस दे सोसो है क्योंकि हमें जानो जे 8 मई दा विश्व रेड क्रॉस तो रेड क्रिसेंट आंदोलन रे जो मानवीय प्रयासों सम्मानित करने तो इंदेरे संस्थापक हेनरी डुनेंट री जयंती मनाने के मनाया जाओ है। एजा देश आप दे संघर्ष तो स्वास्थ्य आपात रे वक्त सहायता प्रदान करने वाले स्वयं सेवकों रे कामों उजागर करो है। श्रोताओं जो हेनरी डुनेंट थे से 1901 दे नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पोल के माच थिए। तो जो विश्व रेड क्रॉस डे सो ये आज मनाया जा लगाओ हमें तुम सभी श्रोताओं के भी इसी देश और सब जो पोले तो शुभकामनाएं दे हुए। श्रोताओं आजकल हालांकि मौसम गर्मी का मौसम हो लेकिन जो बीचों बीचों जो बारिश हो तो ये रोजाना है किसी की फिर की जो शेर हो से हद ज़्यादा हो जानी दो इनकी भी गर्मी का मौसम हो परंतु ये प्रकृति राई थोड़ा ऐसा एर एक साव हो रहा हो कि भाई गर्मी रे मौसम था भी गर्मी का एहसास नहीं हो लगाओ। चलो भगवान रहा थोड़े मर जाओ हमें तुम कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल कार्यक्रम जहाँ आगू बढ़ो तुम्हें जानो यो हमें तुम सभी श्रोताओं रहा लोकगीत करो मनोरंजन खूब कराओ है यहीं साथ बातचीत भी हमें करो है और जो कार्यक्रम शुरुआत होंगे से एक बढ़िया जे हमारे एक हारूलो से सुनने क्योंकि गर्मी का मौसम ओसो है बोसाओ जेठो रे मीने दे महाराज हुए महासु क्षेत्र इत थोड़ी परंपरा हो जे ऐसी मौसम दे विशु भी लाए जाओ मिले हो है तो विशु रे उपलक्ष्य दा शुरुआत दाई ऐसा एक खूबसूरत जे हारूल तुम सभी श्रोताओं के पेश हो।

कुम्बोरा मेला भाई या बिशुलागो रिजटी श्रोताओं ए जो हारूल जो है भी गाछार थे नरेंद्र सिंह कसराई के गाए इन्होंने आवाज दे एज हारूल सुने क्योंकि आजकल आम जे रोपोलो बोलो कि जो बोशाओ जेठो रे मीने हो इंडे गर्मी रे मौसम दे बिशुलागो है मेले लागो है तो लेकिन जो आज के पीढ़ी हो ना ये थोड़ी जे एबे जो हमारी पुरानी संस्कृति हो यहीं के थे हट लागे हो इंतु थोड़े जे अपरिचित ओ लागे यानी कि तेन को जो पुराने वक्त दू चले होंगे काम काज थे या कोई परंपरा थी से तई दू अनभिज्ञ हो गया तेन को ऐसा ही नहीं पता था कि जे बिशु लागो है तो केरो लागो है और जो बाड़ी खूंद बाड़ी खूंद केरे बाड़ने बाड़ी जाओ है झाल टिपा है भी बल्कि नरेंद्र सिंह कसराई के विस्तार तो बोलो पर आमो भी थोड़ा ऐसा ख्याल छाड़ना चाहिए कि जो हमारी अपनी पीढ़ी हो आईने वाली पीढ़ी हो हमारे छोट हो तेनों भी आमो इन दू तेनों को इंद्री जानकारी देनी चाहिए और क्योंकि हालांकि वक्त मारो प्रकृति रा भी इंदा थोड़ा कमाल हो प्रकृति रा जो संतुलन से बिगड़ भी लगाओ तो आज जो कार्यक्रम दे हमारे बातचीत भी करने से इंदे रही बारे दे करने कि जो प्रकृति का संतुलन हो एक कहरा बिगड़ लगाओ यहीं पसे बिगड़ने रे का का कारण हो और आमे यहीं कहरा कहरा थोड़ा सा संभाल सको सुधार सको है श्रोताओ दुनिया का आधुनिकीकरण तय औद्योगिकीकरण करो प्रकृति साथे बड़े पैमाने का एक खिलवाड़ हो लगाओ प्राकृतिक संसाधन रे अंधाधुंध दोहन तय प्रकृति साथे निर्मम खिलवाड़ो राई नतीजा ओसो है जे पर्यावरण दा संतुलन बिगड़ने करियो माछरे स्वास्थ्य गाए तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ो यही साथ जीव जंतुरी कोई प्रजाति भी लुप्त हो लगियो अक्सर देखो जाओ श्रोताओं आमे गौरे भी देखो है कि जो जांगलो दे रीछ भालू रोत है एबे से उदे उदे आ जाओ और तेंदुए हो कोई भी उदे लो हाइटो दे भी देखे जाओ है तो इंदर पचेरा कारण ए जाइयो कि आमे उबे जांगलो काट लियो जो तेनोरे आवास स्थान थे रोने री जागे थी से आमे काट लियो जई करो से भी एबे उदे उदे आज लागियो और पूरी दुनिया दे तो मौसम चक्र दे लगातार आईनी आवे बदलाओ तो यो बिगड़ दे पर्यावरण रे संतुलन करो पेड़ो पौधे री कोई प्रजाति रे अलावा जीव जंतुरा हद जो जीव जंतु तेनरी हद सारी प्रजाति रे अस्तित्व का शेबे संकटों रे बादल भी मंडरा लागो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता परिषद री धांदू जारी रिपोर्टों रे मुताबिक पूरी दुनिया दी करीब करीब 10 लाख जो प्रजातियों तिंदेरे विलुप्त होने रा भी

गाओ। क्योंकि जैव विविधता तई तो पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरह प्रभावित ओ लाग्यो जैये करो दुनिया भररे माछरे स्वास्थ्य तई तो तेनीरे जीवनरी गुणवत्ता खे नुकसान पहुँच लगाओ। मौसमरे तेजीदू बिगड़दे मिजाजराई असर असो जे आजकाले ज्यादातर ठंडे रहने वाले यूरोप अजो अमेरिका जे इलाके भी ग्लोबल वार्मिंगे करो बुरी तरह तोप लाग्यो। उत्तरी ध्रुव दी लोयो यूरोप एशिया अफ्रीका हर के थी जलवायु परिवर्तन रे खौफनाक दुष्परिणाम नजर आज लाग्यो। कैथेई शिले इलाके भी भीषण गर्मी करो झुलस लाग्यो तो कैथे सूखे इलाके बाढ़े करो त्राई त्राई कर दे लाग रो जांगलो झुलस दे लाग रो पर्यावरण रे इं तेजी दू बदल दे दोरो दे भली भांति ऐजा समझना जरूरी हो जे जीव जंतुरी अनेक प्रजाति रे लुप्त होने राजू सीधा असरो से पूरी मानव सभ्यता गाये पड़ना भी स्वाभाविक हो। प्रदूषित ओ लागे पर्यावरण रे आज जो भयानक खतरे आमो सामने आज लागे हो तैयें करो शायद ही कोई अनभिज्ञ होला। हालांकि श्रोताओं हमें छोटे दुई जो हमें स्कूलों के पढ़ दे होए तो दी चालों में पढ़ो है कि भाई पर्यावरण प्रदूषण रे कौन से नुकसान का फायदा नहीं करो नुकसान हो लागे और केरा में यहीं रोक सको है फायदे का हो सको है अगर हमें पर्यावरण संभाल छाड़ ले बचाए छाड़ ले। लेकिन पढ़े खाली पढ़े यहीं का से जो से इंदिरा निवारण नहीं कर सकते इन देखे आम हर माचो आगो आज पहल करने पड़ ले पेड़ों लाने पड़ ले काटने दू बचाने पड़ ले ये जी हद सारी एरी बातों है जी आमें हालांकि पढ़ू भी हो जानू भी हो समझू भी हो लेकिन यहीं का से आमें अमल नहीं कर दे आमो ऐसा भी स्वीकार करने दू गुरेज नहीं करना चाहिए कि एनो समस्या के थी ना के थी जिम्मेवार आमें आपोस होए। क्योंकि यहाँ दो तरीका बोलो जाओ है 84 लाख जीव हो 84 लाख प्राणी हो लेकिन सब जो समझदार माछ बोला जाओ परंतु जो माछ और एक करम हो करतू तो से तो बाध्य जीव मुजदू पूरे धाओ समझदार ते इसके बोला जाओ लेकिन समझ रहे काम से करदा ही नहीं थी। आम में जानो जे प्रकृति रे चीन प्रमुख तत्व पानी जांगलो तोई जमीन जैं बगैर प्रकृति अधूरी हो एज तो विडम्ब नहीं हो सो जे प्रकृति रे एनो चीय तत्वरा दोहन एरा किया जा लगाओ जे प्रकृति रा संतुलन ही डगमगांदा लागो हो जिंदेरे परिणाम अक्सर भयानक प्राकृतिक आपदेरे रूपो दे सामने आज लाग्यो। प्रकृति साथ है बोड़े पैमाने गाए पूरी दुनिया दी जो छेड़छाड़ो लागियो तिंदेराई नतीजा ओसो जे पछले कुछ वक्त दू भयानक तूफान बाढ़ सूको भूकंप जी प्राकृतिक आपदेरा सिलसिला तेजी साथ बोड़ लगाओ पर्यावरण संतुलन डगमगाने करो माछो एबे किस्मी किस्मीरी भयानक बीमारी रे जाओ दे फोस लाग्यो तेनोरी प्रजनन क्षमता गाय भी इंदेरा दुष्प्रभाव पोड़ लगाओ तेनोरी कार्यक्षमता भी ऐ प्रभावित ओ लागियो कैंसर हृदय रे रोग अस्थमा ब्रोंकाइटिस फेफड़े रे संक्रमण न्यूमोनिया लकवा जे मरीजोरी संख्या तेजी साथ बोड़ लगियो माछोरी कमाईरा बोड़ा हिस्सा इनो बीमारी रे इलाज गाए ही खर्चो लगाओ जब भी कोई बुरी प्राकृतिक आपदा आ जाओ तो आमे प्रकृति कुछ नहीं शुरू करो लेकिन आमे नहीं समझना चाहते कि प्रकृति तो रो रोयो अपना रौद्र रूप देखाओ आमो सचेत करने का प्रयास करो कि जे आमे हेबी भी नहीं संभले और जो आमे प्रकृति साथ खिलवाड़ बंद नहीं किया तो आमो आईने वाले वक्त दे खतरनाक परिणाम भुगतने के तैयार रोना होला। और श्रोताओं क्योंकि आमो को पता ही हो सभी समझदार सभी सोच अच्छी सोच छाड़ने वाला माँच हो लेकिन जो कर्म से अच्छे नहीं करला अपनी ताइए से अच्छे कर्म नहीं करदा रे के जीव जंतु तो माछ दू का उम्मीद कर सको है तो ऐसी समझने जाले सोचने जालू सुधुल जालू प्रकृति आमरी मारे समान हो जो आमो अपने प्राकृतिक खजाने दू हद सारी बहुमूल्य चीजों प्रदान करो लेकिन अपने निहित्थ स्वार्थे करो आमें अगर प्रकृति साथे निर्मम खिलवाड़ बंद नहीं करूले तो प्राकृतिक तबाही के प्रकृति कैरी कैरी दोषी ठहरा सक दे। श्रोताओं बातचीत हो गई पर्यावरण जो मारा सो प्रकृति रा संतुलनों से बिगड़ लगाओ कैरा बिगड़ लगाओ इंद्र बार।

तेरे थरों चो नीले ठंडे पानी दे कुएं। गाने वाली थी निशा बाला। श्रोताओं, हमें

जानो है कि आमे पहाड़ियों और आमों को ऐसा भी पता हो जो मारे दर्दे हो इन्हें हद सारे ऐसी चीज़ों है जो आमे अगर ते नर ठीक रहो साथे प्रयोग कर ले तो से आमों के हद ही फायदेमंद हो। से चाह जड़ी बूटी वाली चाह कोई से मसाले वाले या कोई रेकी चीज़ साल फसल वाले अगर अपनी चीज़ों आमे तैयार कर ले उगा ले तो ये निरोग भी हो है और ये करो आमी उगाने करो आमरे पैसे रे बचत भी हो है। तो एरी एक चीज हो हींग जो हद ही फायदेमंद हो है और इंदेरे हद सारे लाभ हो। श्रोताओं माच खाने पीने का जो से हद शौकीन हो खाना स्वादिष्ट तो ही हेल्दी बनाने के भोईते जो गोरो तींदा हिंगोरा तुड़का लाया जाओ चा गोरो दी बनने वाली दाल ओली या सब्जी हर चीज़ों दा हिंगोरा इस्तेमाल जरूर किया जाओ है। हिंगोरा प्रयोग सिर्फ खाना चाणने दाई नहीं बल्कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स तो यों सुगंध बढ़ाने वाली चीज़ों दा भी किया जाओ है। सदियों दूर चाले माछो हिंगोरा इस्तेमाल कोई शारीरिक समस्या ठीक करने के भी कर दे लागेंदे हो। हींग फेरुला नावरा एक पौधा हो जिंदेरे जोड़ दू प्राप्त किया जाओ जिंदे खे अंग्रेजी दा ऐसा फिटीडा बोला जाओ है। ऐस पौधेरी लगभग 170 प्रजाति हो जैं मुझे दू चीन भारत और पंजाब तो ही कश्मीरों दी उगाई जाओ। ऐसी पौधेरे रस सुकायो हींग बोनोए खाने दा जै हींग तुड़के दा पाया जाला तो से तिस खाने रा स्वाद बढ़ाने रा काम करो। हिंगोरे खुशबू हद तेज हो और इं खुशबू दूरों ताई महसूस की जा सको। दक्षिण भारतों रे खाने दा हिंगोरा काफ़ी उपयोग किया जाओ तेथे बनने वाले दाड़ो तो ही सांभर हिंगो दू बिना अधूरे ही माने जाओ। ऐसी भी मान्यता हो जे हींग देवरा खाना हो है ऐसी तो थी स्वादोरे बात इंदु अलावा हींगो दे कोई औषधीय गुण भी हो यानी कि हींग गोरु दुआई रा काम भी करो है। कह रहे कि सांसोरी तकलीफ होता आराम दे हो हींगोरो तेल अतिरिक्त बलगम हटाने दे मदद करो जैसे माछो सांसों लोने दी आसानी हो है। ऐ करो संक्रमण होने रा खतरा भी कम हो जाओ। हींग छाती दो जमा ओए होंदे बलगमो अजो रेकी रुकावटो दूर करने दी मदद करो। खांसी भी दूरे भगाओ हींग खांसी सूखो खांसी इन्फ्लुएंजा ब्रोन चिटीज अजो अस्थमा यानी कि दोमा दूर करने दी भी मददगार हो। देशी घी और साथे हींगोरा पाउडर बुझो खाइला तो ऐ खांसी अजो सांसों दू संबंधित बादी बीमारी दी राहत मिलो है। थोड़ी हींग तींदा एक चम्मच शहद यानी कि मो अजो आधा चम्मच चीटे प्याज और रस मिलायो सांसों दू संबंधित बादी समस्याएं दू बचने के रोज ऐसी मिश्रा थोड़ी थोड़ी मात्रा दा सेवन करियो। हिंगोरे कुछ रह के फायदे हींग पानी दी गोयो ना भी साथे इंदिरा लेप लाने करियो या घीओ दी भूजी हों हींग शहद साथे मिलायो खाने करियो पेटो री जुडाओ से दूर हो जाओ है। पेटो दी होने वाली दर्दोरे वक्ते हिंगोरा एक छोटा जहाँ टुकड़ा पानी साथे पियो आराम मिलो। घुटने दी होने वाली दर्दों दा आराम पाने के हींग पानी दी मिलायो घुटने का इंदिरा लेप लाना जाओ। दांतों दे होने वाले दर्दोरे वक्ते हींग पानी साथे उबायो इंदिरा कुल्ला किया जाना चाहिए। शेले करो जे मुंडो दी दर्दो ली तो पानी दी थोड़ी जी हींग गोयो तई मुंडो दी लानी चाहिए आराम मिलता हो। थोड़ी जी हींग पानी दी गोयो तिंदेरी कुछ बूंदो रोज नाको दी पाने करो माइग्रेन री बीमारी भी दूरे होए। पसली दी होने वाली बेदनी रे बोगते पानी दी हींग गोयो इंदेरा लेप करने करो बेदनी दा आराम मिलो। हींग तोई माशोरी दावरा चूरन गाठे यानी कि अंगारे गाशे पायो इंदेरा धुआं मुँह दा लोने करो हिचकी दूरे होए। श्रोताओं ये थोड़े हिंगोरे फायदे हिंगोरे बारे की जानकारी एबे डेंदे डेंदे एक शिट्रावा तुहियों।

लो बाराम गुंजेटे रह गए एसी लोकगीत साथे श्रोताओं आज कार्यक्रम रा वक्त होगा हो मुलाकात कर दे पर्सी इतवारे इसी वक्त है आज देवेंद्र शर्मा दी पोली शिलू खे दे जाजत बादे सुनने वाले खे राम राम।

महाजवी कार्यक्रम अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। प्रस्तुत है किन्नौरी कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।

किनोरिंग बयसी नमस्कार जू आकाशवाणी शिमला केंद्र तो जू प्रोग्राम कल्पारंग कुलोरीले केंद्रोदली रिले हाचो बयसे ग सुदेश नेगी हाजिर तो किनोरिंग प्रोग्राम लिखशीस दोग बसी राजी खुशी तो चाय ग आशालन तो किना चो की राजी खुशी नीतिज किना नु कमानो व्यस नीतिज बयसे दोक तोलिंगता मौसमली सोलचल मिग मबुत्तुनियो आयली दोक हुन वालीली सचुदु मनिया दे बैसे तोरो प्रोग्राम कुमो दम दम गिथा दा रोंचे प्रदेशु खास खास खबर सारे लिखाशी तो कश था उस बत्याशे तोरो हे विषय देन चर्चा लंते जु कशा चोयके नु जीवन रंग जुट्या नियो सोड़ोके नु सुरक्षा कशानु जिम्मेदारी रिंगो बैसे सोड़ोके कशानु जीवनु तंगेस दोक्तेता जरूरी नीज जुसो एक ही नेज नहीं हो चाहे कशा पैदल यूनो नीमा साइकिले चलामु नीमा या तो गाड़ी गानु उपयोग लनु नीमा देयारो चू कुमो कशा दोक सड़के नु इस्तेमाल लंसी मुदे मगर कशा हसल होए हाथी मचल्स की कशा नु सांदाई लापरवाहीस हतुली जीवनु तंगेस खतरा हचिमसो कैजरिंगो वैसे भारत कुमो हर बोशंग ख्याचता हजारों हिसाबस सड़ोके दुर्घटना का चोनियो जो दुर्घटना अनुयुम्स ख्याचता चेकुतेक वजह लापरवाही रंग नियमेनु अनदेखा लानोनियो सड़ोके नु सुरक्षा सिर्फ सरकार यादोक ट्रैफिक पुलिसु जिम्मेदारी मानीच नियो बल्कि जो कशा चोके नु जिम्मेदारी नियो वैसे जोर खास बतंग हुए दुखी गाड़ी का चलाए रंग सावधानी अनु बोरतेनु वाली जरूरी निज नियो इत्ता ख्याजता हमेशा हेलमेट रंग सीट बेल्ट प्रयोग लनिम ग्यामिक अदि आई दोक बोधी तेज रफ्तार गाड़ी मचलाम ग्यामिक तोलिंगशोंग ख्याजता मी वाली दोक तेज स्पीड आस गाड़ी का चलात नियो खासकर न्यू युवा छंगानुता टाइम बुजदू की भाई पन्न रुंगसिया दोहन तेज स्पीड गाड़ी का चलास नहीं हो आई जोर खास बतंग जेली दो कि रका तुंग तुंग गाड़ी का चले होनी हो रक तुंग तुंग या नशा लन्नन ता तो कभी ली गाड़ी मतलब हम गेमिंग नहीं हो आई कई मी गनु टाइम बचू कि मोबाइल रोंचो गाड़ी का चलास नहीं होली दो कतई मनीज गेमिंग नहीं हो जूसली हम अहम दो खाला गैस जो बतानु दोक जरूर ध्यान ताम गैमिंग मदे दंगची बैसी ख्याचता कशानु पैदल यूनो नीमा हमेशा फुटपाथ प्रयोग लनिम गैमिक दंगची सड़क क्रॉस लनु बेरंग जेबरा क्रॉसिंग प्रयोग जरूर लनिम गैमिक दंगची ट्रैफिक सिग्नल पालन लनिम गैमिक जू चोई बतानु ध्यानो तामा तंगमा कशा दोक कई दुर्घटना दंग भोचन सुकैशोनियो दंगची ख्याचता छंगा रंग बुजुर्गेनु सड़कनु नियमेनु जानकारी रनिंग वाल जरूरी नीज हते बुजुर्ग मेगा सड़क दिन यूनो नीमा कशानु जिम्मेदारी नीज की दोगानु मदद लनिम गयामिक तोरो मेनो सुरक्षित ड्राइविंग जीवन की रक्षा रिंगो कई दुख अभियान ली चले मरे जो अभियान नु सफलता दोगी संभव नी तो नियो अगर कशा अमराव नियमेनु पालन लन्ना मानिया वैसे सड़कनु नियम तोड़ियामिक बहादुरी मानीज नियो बल्कि दोपंग मुँह रखता लोचनी हो इदें के चल्स की बैग ठदा ठदा दा दोक ओम्स दुआ तो करी हो मगर जू दोक दो मुँह रखता निज नहीं हो नियमे नु पालन लाने की समझदारी निज नहीं हो वैसे सड़के सिर्फ ओमी मानीज नहीं हो जू कशानु जीवनु यात्राओ हिस्सा निज नहीं हो मगर हुजी सड़के सांदाली लापरवाही वजेस दुर्घटनाओं कारण हचिन मदे तोकजु वाल जोरियु बतंग हचिन नियो होली त्यारो चुकुमो ख्याचता नंग ने हचिस जिंग जे हचिस रुओ ठद मा ठद थासी मच नियो तेता मीनु दोहन जीवन खतम हचित तेता मीनू सपना का अधूरा दक्षित नियो लेकिन चेकु ते एक सवाल होल दू कि भाई जो दुर्घटना गनु रोके आशिमिशकोता रिंगो तो बिल्कुल रोके आशिमिशकोत नियो अगर कशा जो चोई जिम्मेदारी गानी ब्यामा ये जू हाथ

सकानू कम लंच शिमशकोत नहीं हो। अगर बोधी स्पीड बाइक या गाड़ी का माचल्या माँ हादली मी दोखन सड़कों द्वानू निपी होए चलसन की हाथ ची माँ चित्रियों चल नहीं हो। दो सांदाली लापरवाही की मत दोक वाल दो भारी पड़े नहीं हो मानिया दे। दो बोधी ख्याचता तेज गतिस माचल्याम गया मिक या दोखन लापरवाही मला निम गया मिक रक तुंग तुं ड्राइविंग मलानिक आई दोक नियमेनु पालन लनु जरूर गैमिंग नियो। मी पंख्याचता किमोज द्वनु निपी तो किमो पेरंग इंतजार लन दियो मराव अमा बोआ दियो छंगा दियो पेरंग दियो दो सुरक्षित किमो बच रही हो। दुग जु इत जिगित गलतीस दोगानु जीवनु कुमो सोदक चुतांगेस अंधेरा कसनियो दो तांगेस सड़ोकेनु द्वनु का ओम्स जू बतानु जरूर गौर लनिम गैमिंग नियो। सड़ोकेनु सुरक्षा थ विकल्प मनी नियो बल्कि जरूरत नियो जू सिर्फ नियम मनी बल्कि जीवनु रक्षाओ साधन नियो। दो कशानु सौदाई ट्रैफिक नियमेनु पालन लनिम गैमिक आई सीट बेल्ट रंग हेलमेट प्रयोग लनिम गैमिक साथ ही आई दनुली जागरूक लनिम गैमिंग नियो। होयली कशानु हिमाचल पहाड़ी राज्य नियो हर दो मिनट देन तो मोड़े मोड़े बस होएगु कुमो दो सावधानी बरतनी तो जरूरत नियो सावधानी चेक्यू तेक बचावनीस मनिया दे। बैसे जुता पद्याशे सांदा छरे बतंग कचता दे माँ ईद की थंग ले रोंचे रोंची जुगी थंग।

वैसी श्रीमती मायुम नेगी पंग किना रोंची शेच नियो कश तो वैसी सांझा प्रत्याशी हालिया नासुम गुरु रविंद्रनाथ तू जयंती लिधु नियो सांझा प्रत्याशी रविंद्रनाथ टैगोरु बारे वैसे भारत महान कवि साहित्यकार दार्शनिक रंग विश्वविख्यात रविंद्रनाथ टैगोरु जयंती दोक पूरा देशु कुमो दोक श्रद्धा रंग वाली दोक सम्मानस मोनैज नियो रविंद्रनाथ शरीफ इत कवि मानिनियो बल्कि आने भारतीय संस्कृति रंग मानवता दोक सच्चा उपासक तोच नियो आने नु जन्म ख्याजता 1861 में कोलकाता कुमो इतोक वाली तेग पेरम कुमो हाचिशिद नियो जी सोची आने नु रुचि ख्याजता आने नु साहित्य संगीत रंग कला कुमो तोच मदे आने नु लेखनियो कुमो प्रकृति सुंदरता मीऊ जीवनु संवेदनागारंग देश प्रेम भावना दोक स्पष्टता इंबस नियो वैसे रविंद्रनाथ टैगोरस कविता का कोथा का नाटक गीथांगारंग उपन्यास देश के क्षेत्र नुकुमो ओम्स दो दो, दो खास योगदान राशित नियो आने नु सपना का तोरोली म्यू कुमो बच नियो आने नु मशहूर काव्य रचना गीतांजलि तांगेस आने नु बोशंग 1913 में साहित्यो तोक नोबल पुरस्कार आने नु पुरेशित नियो जो सिर्फ आने नु तांगेसी मानी बल्कि पूरा भारत तंगेसली गर्व बतंग तोचनियो वैसे रविंद्रनाथ बताऊ कुमो ख्याचता शिक्षा सिरिप दोक किताबेसी किताबें दंगस्तांगी सीमित मानिज ग्यामिग बल्कि दो म्यू चरित्र रंग सोचू विकास लनिम ग्यामिग रिंगो हुजुई तांगेसी आनेस शांति निकेतन कुमो विश्व भारती यूनिवर्सिटी स्थापनाली लंशित दंगची तालीमु कुमो ख्याचता प्रकृति रंग संस्कृति जोड़ेमु कोशिशली लयशित मदे कशा चोकेनु गरम महसूस लने की भारत राष्ट्रगान ख्याचता जनगण मन गुरु रविंद्रनाथ टैगोरु देन नियो अनेनु गीतांगानो रंग कवितांगानु कुमो मानवता प्रेम रंग शांतियु संदेश पुरस मदे गुरु टैगोर ख्याचता सोदई समाजु जोड़ेमु रंग मियु कुमो बेन्नंग निमु सिख्याजित नियो आने नु विचार तोरोली होतई नियो तेतियाना दो वक्त तोच तोरोक्चु बोदले दो दोर कुमो कशानु आने नु आदर्शनु प्रेरणा उन्नुन समाजु कुमो भाईचारा शिक्षा रंग संस्कृति पंग मजबूत ननिम ग्यामिंग नियो तोरोक्सु सामयो कुमो समाजु कुमो ख्याचता तना भौतिकता बोध्या दोनियो दे रंग रविंद्रनाथ टैगोरु विचार कशानु शांति रंग मानवता ओम जंगचित मदे वैसे गुरु रविंद्रनाथ टैगोरु जीवनु कशांगा होय सिख्याजित की सिर्फ आधुनिकता मानी बल्कि संस्कार सकारात्मक सोच ली जीवनु तंगे वाली जरूरी निचरी हूँ तोरोक्सु युवा छंगा तकनीक रंग इंटरनेट दौरो ओम सुधा दोनियो दुख साथी मराओ संस्कृति बोली रंग जो मानवीय मूल्य गनुली साध लिखिस बीम गैमिंग नियो शिक्षा होता ही नीस नियो हथियाना

मी हचो। तुरुक्त युवा पीढ़ी पंग ग्यामी की दोगा मोबाइल रंग सोशल मीडिया दुनिया स्थाई सीमित मानिम ग्यामिक बल्कि किताबें साहित्य संगीत रंगली जुड़न ग्यामिक मराव कुमो इलमु शेस्मिक ऐ समाजु कुमो दम सेमसस कामंगलानिम ग्यामिक हालिया रविंद्र नाथ टैगोरस अनेनु ज्ञान रंग रचना दुनिया कुमो नाम रोशन लहशीद जुसोई युवा गनु तंगेस प्रेरणानियो की मेहनत अनुशासन रंग दम विचारेसी हरली मी दोक ते सफलता हासिल लानिम सो कैचरिंगो तोरो देशु हुए युवा छंगानु जरूरत नियो कि मराव तांगे सीमा नहीं बल्कि समाज रंग राष्ट्र विकास तांगेसली सुनचैन ज्ञामी करियो तोरुक तो युवा पीढ़ी हालिया नशा को चंग बोधी ध्यान से धोनियो हुए गुकुमो रविंद्र नाथ टैगोरु विचारे नु अपने आमा हुशिमा दोकदम ओम जंगचित नियो अनेस युवा गनु ज्ञान संस्कार रंग आत्मविश्वास देन युनु प्रेरणाली रहशित नियो अने नु जंगचित देन जु युवा शक्ति पंग नशौच वर्क्यो निमा शिक्षा संस्कृति रंग राष्ट्र निर्माणु कोचंग भीम ग्यामी बस ही दतो के सांदा सेरे रविंद्र नाथ टैगोर बारे सांदा जानकारी कष्ट तेमा आई की थंग ले रोंची रोंची जुगी थंग।

ਬਸੀ ਕਿਨਾ ਸਿਥੰਗ ਦਾਰੋਂ ਜਿਸੇਚ ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਕੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਰੰਗਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਦੋ ਕਸ਼ਤਾ ਬਸੀ ਸਾਂਦਾ ਪਰਦੇਸ਼ੂ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਜੁਲੀ ਬਤਿਆਸ਼ੀ ਪਰਦੇਸ਼ੂ ਸ਼ੁਮ ਹਜ਼ਾਰ ਤਿਸ਼ ਰਾਓ ਨਿਸ਼ਨੀ ਜਾਓ ਸੋ ਰੂਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਕੁਮੋ ਕੁਲ ਨਿਜਾਓ ਸੀ ਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਸ ਈ ਰਾਓ ਪੁਨੀ ਜਾਓ ਤਿਸ਼ ਪਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂਗੇਸ ਸ਼ੁਮ ਚਰ ਨੁਕੁਮੋ ਨਿਜਾਓ ਟੁਕ ਰੰਗ ਨਿਜਾਓ ਰਾਏ ਨਿਜਾਓ ਸਾਹੇ ਮਹਿਮਿਆ ਬੋਟਿੰਗ ਹਚੋਯ जु चुनावे नु तांगेस नामांकन पत्र पंगमु प्रक्रिया शुरू हचिशी आई तोरोक चरंग सी हिद मई म्याली नामांकन जु पंगिम सोक्यातोय पंचायती राज चुनाव चिन्ह देन मानिच्य लेकिन भाजपा अनुसमर्थित जु जिला परिषद उम्मीदवार नु सूची जारी लैशीत नामांकन का ओम्स खेचखेची जगाउन देन उम्मीदवारेस अनुअनु नामांकन पत्र दाखिल लैशीत शिमला ने रंग उपायुक्त कार्यालय कुमो जिला परिषद चुनाव तंगेस भाजपा कांग्रेस रंग आजाद उम्मीदवारेस अनेगनु नामांकन पत्र पंक्षित जिला परिषद हलोक धामीच भाजपा प्रत्याशी कमलेश शर्मा तुक नामांकन दाखिल लैशीत ऐ मीगनु सुविधागानु दिल्यामु लोशीत आई खबर तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू रंग जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगीजिस एशिया कपुकुमो शरे प्रदर्शन लन्नन देश रंग प्रदेशु नामंग रोशन लंसिया ख्याचता स्पीति घाट्यू लोसर देशंग युवा खिलाड़ी तंजिन टशीपंग सम्मानित लहशीद जोर भारतीय टीमुकुमो हिमाचलस एकमात्र ख्याचता खिलाड़ी तंजिन टशीस प्रतियोगिता कुमो कई दोखुन शरे गोल लैशीत आई चीनू खिलाफ मैचू कुमो मैन ऑफ द मैचू खिताबली हासिल लैशीत बैसीज दत्तो के प्रदेशु खास खास खबरसार हुन गड़ी इसलिए इशारा के तू बोर्शमु तांगेस तो युम सुबेरंग आई ईद की थंग रोंची इस बोर्शे रोंची जोगी थंग

किन्नौरी कार्यक्रम अभी आपने आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुना। प्रस्तुत है लोकगीत। आइए सबसे पहले सुनते हैं सुनीता शर्मा की आवाज़ में गाया ये लोकगीत।

0: भुवनेश कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना ये लोकगीत। इसी के साथ लोकगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जनसंपर्क को सुगम बनाने के उद्देश्य से आज राज्य सचिवालय शिमला में एकीकृत डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड डिजिटल कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए प्रमुख इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पहल जनता व सरकार के बीच डिजिटल सेतु का कार्य करेगी, जिससे जनसंपर्क अधिक सुविधाजनक और प्रभावी बनेगा। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली विभिन्न सरकारी विभागों को एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैठक संबंधी आग्रह भेजने की सुविधा भी प्रदान करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने एक बैठक में नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन व हिमाचल सदन और हिमाचल भवन चंडीगढ़ में आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली में निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन के कार्य की समीक्षा करते हुए परियोजना को 15 जून से पहले पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में कल 9 मई

0: राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के निर्देशानुसार इन लोक अदालतों में बैंक मामलों, श्रम विवादों और बिजली व पानी के बिलों से जुड़े प्रकरणों सहित अन्य लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रंजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अब तक करीब 63,000 मामले निपटारे के लिए प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडरों की आपूर्ति भी बढ़ा दी है। सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में वाणिज्यिक आपूर्ति लगभग 70% तक बहाल हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कहीं भी पेट्रोल या डीजल की कमी नहीं है।
1: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। ये दिवस मानवता, सेवा और सहायता की भावना को समर्पित है। विश्व रेड क्रॉस हर साल 8 मई को हेनरी ड्यूनेंट की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है ऑन द साइड ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के पक्ष में खड़ा होना है। इस मौके पर बच्चों और रेड क्रॉस स्वयंसेवकों ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें रेड क्रॉस का स्टिकर भेंट किया। मुख्यमंत्री ने भी रेड क्रॉस फंड के लिए अंशदान दिया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से रेड क्रॉस फंड में उदारतापूर्वक अंशदान का आग्रह किया और कहा कि इस फंड से एकत्रित धनराशि संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने दारचा शिंकुला सड़क पर बर्फ हटाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लाहौल स्पीति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष व उपायुक्त किरण भड़ाना ने इस सड़क को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने के आदेश जारी किए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने दाचा श्रृंखला सड़क पर बर्फ हटाने और मार्ग बहाली का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सड़क अब डबल लेन के रूप में तैयार है, जिस पर भारी और हल्के दोनों प्रकार के वाहन चल सकेंगे। प्रशासन ने कहा है कि वाहनों की आवाजाही मौसम और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित की जाएगी। पर्यटकों, यात्रियों और स्थानीय लोगों को यात्रा से पहले जिला प्रशासन द्वारा जारी मौसम और सड़क संबंधी एहतियात और नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। दाचा श्रृंखला सड़क मार्ग खुलने से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय लोगों की आवाजाही को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने आज शिमला में चारों नगर निगमों सहित नगर निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर पार्टी के जिला व ब्लॉक अध्यक्षों से फीडबैक ली। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से चुनाव से संबंधित सौंपी गई जिम्मेदारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम को हर रोज फीडबैक देने को कहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स और आकाशवाणी एफएम 103.7 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आइए अब सुनते हैं बिलासपुरी कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।

संजा रे छे बजे ने पांच मिनट होए गए तुहें सुना रहे अपना प्यारा ब्लास्टप्री प्रोग्राम। सबने सुनने वाले हो पुन मारा प्यार भरा नमस्कार। तो जी आज के प्रोग्राम में जो आ तुम्हारे मनोरंजन खातर मैं तुहां खातर बढ़िया बढ़िया छांटी छांटी ने लंदुरे प्यारे प्यारे लोकगीत नंद आई जानी सुनी कने कने जी छोटिया छोटिया गल्लां बातां भी तुहां ने करनिया मैं कने तुहां सुनानिया खास खास खबरां भी।

सीताराम कन्नै साथियां री आवाज च सुनिया है तुहें प्यारा जिहा इक लोक गीत। तां जी देखो अजकला री न्याणे जो है से ऑनलाइन गेम कन्नै डिजिटल दुनिया च खोए रहे रहिंदे। छोटे छोटे न्याणे देखो जो पहले थोड़ी जिद करा हैं, रोआ हैं, उटका हैं, उरे परे दौड़ उरे वहाँ हैं, तिन्हारे हत्था च भी आज मोबाइल देखा जाए, इसका मोबाइल पकड़ी कने जो आ चल उरे वहाँ देखा रहे वहाँ कुछ कदी पोएमा सुने दे वहाँ कने नंद लिया दे वहाँ। इतते तिन्हारी सामाजिक कने शारीरिक विकास प्रभावित हो जाता। स्क्रीना सामने बड़े भारी टाइमा रहने के कारण तिना जो कई टैपारी अखा री बीमारियां, शरीर री बीमारियां, दिमागा री बीमारियां उन्हें लगी आंदियां। इत तेजो आसे बच्चे कल्ले कल्ले रहना भी पसंद करने लगी, पूरे कमरे च घुसड़ुरे रह कने पता नहीं क्या क्या तीजा मोबाइलों पर चलांदे रहंदे, कने अप्पू जो जो आसे कई टैपा दिया बीमारियां लांदे रहंदे। पुराने टैमा री लुखनेरा खेल, कोकड़ाची, गिट्टे, चौआ वगैरह जो आ सीता इनारे नाओ जो ऐसे अजकल रे न्याणे पता भी नहीं रो रहे है। इना परंपरागत खेलना जो खेलने खातर ज़्यादा टाइम या ज़्यादा जगह री भी जरूरत नहीं होंगी। कई खेल एड़े से जे अपू चीए हैं छोटे जे कमरुए च भी खेली सकाएं, छोटा आंगन होगा तो इस च भी या अपने कोठे पर जाई कने भी खेली सकाएं, तो ऐसा खर्चा भी इस पर ज़्यादा नहीं होंदा। कई बार तो हाँ जो कोई चीज़ बाहर ते चाहिए भी नहीं होंदी आई, तो एड़े खेल जे हैं खेल गए इस तिहारा शरीर तो तंदुरुस्त रहना ही रहना, कने दिमाग भी खरा रहना, कने दोस्ती भी बनुरी रहनी, कने अहाँ जो हारने कने जितने री आदत चोई से भी बनुरी रहनी। तां जे अहें कल्ले ही खेल आए मोबाइला पर खेल आए तां जो क्या पता भी अहें खेल रहे कल्ले, जे नहीं कीता जीव तो बंद करता, करी गया जीव तो चलाई लीता, नहीं गाने सुन लीते। तो इस खातर ये जे बारा ते खेलने वाले खेल है, बाहर जाई कने खेलने वाले खेल है, लोगों ने मिली कने बच्चों ने मिली कने खेलने वाले ये बड़ भारी जरूरी है। अहें जे पुराने टाइमा च जाए तो अहें देखा है भई महाभारत रे टाइमा भी जो से ऐसे खेल खेले जाते थे, रामायण च भी अहें देखा भी ऐसे खेल खेले जाते थे। अंग्रेज तां जे मारे मुल्खा च आए तो इन्हें जो आ से क्रिकेट भी उरे लंदिया, कने इतना क्रिकेट रा रुझान हो गया इन्हें लोगों जो जो आ से मुलाजम भी क्रिकेट खेलने खातर रखना शुरू करता। मारे खेलना च जो ऐसे खास खेल जो थे से गुल्ली डंडा, चौआ, सत पत्थर का खेल यानी पिट्ठू, इसके अलावा जो आ से खिन्नू बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन, ये भी बड़ भारी याने खेल है। फिर तंगे तो तुहें कंचे तो तुहें देखे होने भाई बड़ भारी शौक अहाँ न्याणे कंचे भी अहें खेलने। इसके अलावा कुड़ियां देखो तो झुंड बना रही अहें कने गिट्टे उसे खेल दियां रहंदियां थियां। कुश्तियां तो अली भी अहें देखा ही है, पर पहले छोटे छोटे न्याणे आपू च ही खेला है, कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती खेली ले हैं, खो खेल रहे हैं, विश्व अमृत खेल रहे हैं, फिर लंग

बड़ी टांग, चोर सिपाही, ऊंच नीच रा पापड़ा, ऐसी बड़ भारी खेलना जो थी से पुराने टाइम खेली जांदियां थियां, पर हुण पता नहीं किती से न्याणे चली गए कने किती से खेलना भी चली गईयां।

नमस्कार। और ओज के कुलवी कार्यक्रमना देखा ओज का जे ध्याड़ा सा 8 मईरा ऐसा भी ना एक पवित्र ध्याड़ा सा विश्व रेड क्रॉस ध्याड़ा। विश्व रेड क्रॉस रा नाम सुन दे एक मानवता और जरूरतमंदरी सेवा दुखी पीड़ित कोई भी कोई दुर्घटना हुआ सा तो रेड क्रॉसरी जासरी टीम सा स्वयं से भी सेवा न पूजी जासी और कई जैसा तड़फती आत्मा बे शांति मिला सा तिंदरी जिंदगी रा एक जीवन दान परमेश्वर रा कोम के रा सा। तेबे तो बोला सी जे मानवतारी सेवा ना आगे जा और रेड क्रॉसरी तें इतना तो ऐसा जरूर कह सकते जे खून दान महादान और सेवा जे कार सेवा जनमानस तैय ए पूरे आम तमाम देशा दुनिया भीतर विश्व रेड क्रॉस दिहाड़ा ओस मनाया सी। विस्तारा संग गलबात के नहीं आसा अनमोल वचन शुरू ना सा लेने और इन वचन रे जरिए असरी जिंदगी भी कोई एक जैसा शब्द असरे जहन ना बेशू तो असरी जिंदगी संवरी सका सा। बुजुर्ग बोला से बुजुर्ग जैसा ते डोला ना पाए भी नहीं ते ठड़ाके दे आती जिंदगी ना और जिंदगी दे जे भटके दे लोग सी ते सीधे राह रस्ते ने जी जा सी। ऐसी ताकत अनमोल बचनेरी तभी अभी आसा लोग छूने लाला चिड़िए सेरी नहीं जाना दो त्राम पहाड़िया और बाजू डोलकू बाजू नगारा मोतीराम ठाकुर की आवाज़ है ना और जाते जाते आसा ओ इंदिरा लाड़िए ऐशर टाड़ा जैसा तीर्थ राम की आवाज़ है ना और नौवीं ताजी खबर भी लानी। तर जी सभी ने पहली गल जैसा अस ढूंढी जाए अनमोल बचन आसी जिंदगी ना की जगह रखा सी। देखा जी आसे बेशकीमती जे गला सी जिंदगी रे ये मूल मंत्र हुआ सी जूनी भी तरह हर मानु बे एक सही सही ठीक दिशा और गुरु ज्ञान रा सहारा मिली जा सा। जिंदगी भी एक बार जैसा राह रस्ते ना से कई बार भटकी जा सी और कोई भी मानुष ऐसा भूल हो ही जा सा पर जिंदगी ना एक सीख मिला सा कि अपनी वाणी रा एक खास जैसा अहमियत रो आसा जिंदगी ना ए वाणी वे जो मेरा खर्चा नहीं लगता। मीठा ढूंढ इंसान भाई मानुआ शुभला ढूंढ शुभली राह दस ईमानदारी संग अपनी वाणी रा इस्तेमाल कर। हर एक जुबानी रे शब्दारा वजन ता भाड़ा जो बोलूँ वाले रे मानू रे हाव भाव पेंदे टिकू दरो आसा एक ईमानदारी हो सो एक बेईमानी। जबे कि बाणी रा हर एक शब्द मंत्र भी बनी जा सा जै सो बाणी रे गलत तौर तरीके हाव भाव संगे मकसद ना पेश करी दिया सी या से गाली गलोच बोली दिया सी सारा वातावरण सारा बोर खराब करी दिया सी। तमाणू रा तोली मोलिया शब्द रा चुनाव करना चाहिए कौसी रे आत्मा बे ठेस ना लागे। शोभला ढूंढना और शोभला कोम केरना जग बलाई रा और शोभला ढूंढने रा बुरा मानू भी खरा बनी जा सा। अगर बुरे मानू व्यास शोभला शोभला बोल देना खरा बनी जा सा। अरे शोभले मानू व्यास है माड़ा बोल दे रोल है ना माड़ा बोल दे रोल यानी कि छह केरदा यानी कि छह केरदा सो गिछा सा भाई ये तो शाबाश है ये बेटा शोभला कोम के रसा सुबीढ़ा कोम के रसा सो आगे में बढ़ने रही एक हिम्मत मिला सा। आस अब एक ही हो रही रे तई हैं जै हो रही रे बच्चे शोभले आस रहे बच्चे माड़े ए गलत गल सा। जे अच्छाई सी तू ही आगे बढ़ाना और गुरु ग्रंथ दी है बढ़ावा देने तई हैं ए बाणी की ताकत जैसा ना ए सोएद माणू चका सा और राह रस्ते ना ठीक रस्ते पे लाई दिया सा। तो देखा जी ए ती अनबोल बचन तो तोतराम पहाड़ी और तैयार सी सेरी नहीं जाना तो गेहूं रदाणा लिया जी सुनी लिया

சேரி போக்கிறா கேங்குரா தானா, சேரி நீ ஜானா, போலா லாரா நீ லானா. தேகா ஜி, ஜிந்தகி நா சச்சி சச்சி கல் டூண்டனி, ஒரு கோய் பஷா நா ठगना नहीं आती. जब बशा चूटू तो तब सौ गल बिगड़ी जा सा. तंडा है दो त्राम पहाड़ियों रे यही गाने ने जैसे बखान के रू. एक विश्वास और बशा एवं जिंदगी रे तेई प्रेम प्यार री गल जैसा वादे री गल आगे बे रो आसा. गल के रहूँ विश्व रेड क्रॉस दिहाड़े री. विश्व रेड क्रॉस दिहाड़ा औज आसे मना दे लागे सी. हर वर्ष जी बांती मई महीने री 8 तरीका जबे जासी औज का दिहाड़ा. भरपूर रूपाना विश्व रेड क्रॉस दिहाड़े री तैय रखी दिनू दसा. आम तमाम देशा दुनिया भीतरे ए दिहाड़ा बड़ी शुभले तौर तरीके संगे रेड क्रॉस यानी माणू रे प्रति एक सेवा कार सा. मतलब अपनी इच्छा रे अनुसार सब मानू उन्हें जुड़िया मददगार साबित हुआ सी, ताकि समाजा भीतरे एक सामाजिक कल्याण और भला भलाई रा कोम आम तमाम बखूबी रूपाना

देखा जी एता से लोकगीत सुनु तो ये थी मोतीराम ठाकुर नमिता जी खबरा भी सी। देखा जी राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस ना शामिल होने वाला है कुल उपभोक्तरी जो तादाद सा इसके वर्ष मार्च महीने 2026 तक जैसा 2,17,00,000 पूजी गई दिशा। एनपीएस पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण जरिए विनियमित या योजना सेवानिवृत्ति ने बाद नागरिक अब लुम्बे वक्त तंगे माली सुरक्षा प्रदान किया सा फाजत दिया सा। इस प्रबंधन री परिसंपत्ति एनपीएस रे तहत तकरीबन 16,00,000 रुपये तक पूजी दी सा 16,00,000 करोड़ तक पूजी और अटल पेंशन योजना ना शामिल होने वाले लोगों की तादाद भी 8,96,00,000 ने भी वो हुई दिशा। तो देखा जी इस योजना का शुभारंभ जैसा मई 2015 में हुआ थी। अगली खबर जी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में मिली दिशा जै 9वें वैश्विक आर्थिक क्रमाना भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा विषय पर दुई दिहाड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और शिमला ना शुरू हुआ। कोटश्वेरा राजकीय महाविद्यालय शिमला ना देशभक्त यूनिवर्सिटी मंडी गोविंदगढ़ पंजाब रे संयुक्त तत्वाधान ने आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर प्रसाद और केरू और तीने सम्मेलन ना औस के परिप्रेक्ष्य ने महत्वपूर्ण करार देते ढूंढू दबाई भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने रहते हैं अग्रसर सा जो सामूहिक यतन जतन जैसा ये संभव सी। सिविलना ना ये जानकार जिस वैश्विक आर्थिक चुनौती ये खास जानकार पर्यावरण और तकनीकी समेत सभी क्षेत्र रे चर्चा होनी आगे भी कार्य योजना तैयार केने थी ताकि भारत में आर्थिक रूप ना मजबूती मिली सके। तो ये थी प्रदेश नौता जी खबरा। तो आखिर ना जाते जाते जैसा आसा जैसा ये तीर्थरामोला गाऊ तो सटाला जैसा नाटी रहा सुनना तो लिया जी महाराज।

0: कुलवी कार्यक्रम अभी आपने सुना। इसी के साथ हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम अब समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ले किए जाएंगे। कृपया लिखिए।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Senior BJP leader Subendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: द इलेक्शन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड जस्ट अ फ्यू डेज अगो अराउंड 8 प्रपोजल्स एंड सपोर्टिंग नॉमिनेशंस वर रिसीव्ड एंड ऑल ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ द सेम नेम सफिशिएंट टाइम वॉज ऑल्सो गिवन फॉर एनी अदर नॉमिनेशन बट नो सेकेंड नेम वॉज प्रपोज्ड देयरफॉर एज द सेंट्रल ऑब्जर्वर आई डिक्लेयर सुवेंदु अधिकारी एज द इलेक्टेड लीडर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव पार्टी
2: विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: Tomorrow morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. Prime Minister Narendra Modi, along with a host of union ministers and several chief ministers from BJP-ruled states, will attend the ceremony. As the ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, cultural performances will also form part of the program. In the formation of a new government in Tamil Nadu, TVK, the single largest party, has sought support from the CPI, CPM and the VCK. Congress has already lent support with 5 MLAs. After much discussion today, the CPI and CPM, both having 2 MLAs each, has offered unconditional support to TVK to form the government. Our correspondent reports, VCK.

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा
1: नमस्कार।
0: किसान भाइयों, आज के अंक में मैं हूँ हेमलता शर्मा
1: और मैं हरी सिंह चंदेल।
0: हरी जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: हेमलता जी, मैं तो ठीक हूँ और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो किसान और बागवान भाई बहन हैं वो भी स्वस्थ होंगे और आजकल अपने कृषि और बागवानी के कार्य में जो है व्यस्त होंगे। तो हेमलता जी, जैसे कि मई का महीना चला है तो ये महीना कृषि और बागवानी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय रबी फसलों की कटाई और खरीफ फसलों की बुआई का समय चला होता है। आजकल हिमाचल प्रदेश में निचली पहाड़ी और घाटियों में गेहूं की कटाई के बाद गाही और दानों की सफाई का काम चला हुआ है और खरीफ की मुख्य फसल मक्का की बुआई इस महीने हमारे जो किसान और बागवान भाई वो भी कर सकते हैं।
0: किसान भाई, यदि सब्जी उत्पादन की बात की जाए तो बेमौसमी सब्जियों में हिमाचल में मई में टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की रोपाई की जाती है और बेल वाली सब्जियों में लौकी, तोरी, करेला, खीरा और भिंडी की बुआई और उसकी देखभाल की जाती है। बात आती है अदरक और हल्दी की, अदरक, हल्दी और अरबी की रोपाई भी की जा सकती है
1: जी, और हेमलता जी, अगर बागवानी के कार्य की बात कर तो इन दिनों फलों की सेटिंग और विलन का काम हमारे बागवान भाई जो है कर रहे होंगे, क्योंकि फलों के सेट होने के बाद अतिरिक्त फलों को हटाया जाता है ताकि बचे हुए फलों का आकार अच्छा हो।
0: जी,
1: क्योंकि मई महीने में ओलावृष्टि का भी खतरा होता है, इसलिए ओलावृष्टि रोधी जाल यानी कि एंटी हेल नेट का उपयोग भी हमारे बागवान भाई समय रहते करें।

0: और सूखे की स्थिति में विशेषकर सेब के पेड़ों के बेसिन में ड्रिप सिंचाई या हल्की सिंचाई अवश्य करते रहें।
1: जी
0: तो हेमलता जी, आज क्या कुछ खास रहने वाला इस कार्यक्रम में हमारे किसान और बागवान भाई बहनों के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं।
1: काम की बातों में बात करेंगे, स्वरोजगार के लिए मधुमक्खी पालन, साथ में मनोरंजन करवाएंगे प्यारे से लोकगीत के साथ। जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण सुनाया जाएगा, जिसका विषय है मोटे अनाज का महत्व एवं संरक्षण। बातचीत में भाग लेंगे डॉक्टर राजेश धनजल और उनसे बातचीत करेंगे कुलदीप। तो कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं स्वरोजगार के लिए मधुमक्खी पालन। किसान भाइयों, हिमाचल प्रदेश में स्वरोजगार के लिए मधुमक्खी पालन एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय होता है, क्योंकि यहाँ सेब, नाशपाती और अन्य फलों के बागान प्रांगण के लिए मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। किसान भाइयों, किसी भी कार्य को करने के लिए यदि उसकी जानकारी हो तो कार्य करना आसान हो जाता है। जैसे स्वरोजगार के लिए मधुमक्खी पालन है, तो इसके लिए यदि आप किसी संस्था से प्रशिक्षण लेंगे तो आपका कार्य दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर सकता है। मौन पालन को एक सरल व्यवसाय बनाने के लिए किए जाने वाले सभी व्यवसाय कुछ मूल बातों पर आधारित होता है। किसान भाइयों, सबसे पहले ये सुनिश्चित करना होता है कि शहद के लिए पुष्प रस मकरंद को इकट्ठा करने के लिए सही समय पर वंशों की शक्ति अर्थात मधुमक्खियों की संख्या बढ़े। वंशों में पुष्प रस के भंडारण के लिए इसमें शहद में परिवर्तन करने के लिए मधुमक्खियों को मोमी छत्तों की उपलब्धता सुनिश्चित करना होता है। सही समय पर मौन वंशों से शहद भरे छत्तों को निकाल कर उनसे शहद निष्कासन करना होता है। मौन वंशों को किसी भी प्रकार की विपदा के लिए तैयार रहना चाहिए।
0: किसान भाइयों, प्रत्येक मौन पालक को अपने स्थान के मधुश्राव, जिसे कि हनी फ्लो भी कहते हैं, और जिन स्थानों पर वंशों को शहद हेतु स्थानांतरण करना है, उसकी पूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। किसान भाइयों, मधुपालन का प्रथम सिद्धांत यह दर्शाता है कि हनी फ्लो से लगभग 8 से 10 सप्ताह पहले वंशों का सही प्रबंधन जो है आरंभ हो जाए, परंतु विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध होने वाले मौनचरों पर निर्भर करता है कि मधुश्राव कितने दिनों बाद आरंभ होगा। यदि यह समय बहुत कम हो या बहुत अधिक हो तो मौन वंशों का प्रबंधन अलग ढंग से करना पड़ता है।
1: जी,
0: यदि बसंत ऋतु होने से 55 से 70 दिनों में मधुश्राव आरंभ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या क्या प्रबंध करने होते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपने वंशों को अधिक अंडे देने वाली नई रानी देनी है और वंशों को अधिक मात्रा में खुराक की व्यवस्था भी करनी है।
1: जी,
0: यदि मधुश्राव मौन वंश पूरी तरह शक्तिशाली ना हो तो दो वंशों को मिलाकर एक शक्तिशाली वंश जो है आप बना सकते हैं।
1: जी किसान भाई, इन प्रबंधों से वंश मधुश्राव से अधिक शहद इकट्ठा करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। और यदि बसंत ऋतु शुरू होने के 80 दिन या इससे अधिक समय पर मधुमक्खी हो तो ये समय अधिक होता है, वंशों में भीड़ आ जाती है। ऐसी परिस्थिति में वंश में काम करने वाले प्रवृत्ति कम हो जाती है, इसलिए मौन वंशों को अधिकतम संख्या तक पहुँचने से पहले ही विभाजित कर देना चाहिए, जिससे इन वंशों में मधुश्राव और मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती रहे। मधुश्राव आने पर विभाजित वंशों को आपस में मिला दें। और किसान भाइयों, शक्तिशाली मौनवंश शहद अधिक मात्रा में इकट्ठा कर लेते हैं। यदि हम मधुश्राव के समय प्रबंधन की बात करें तो मधुश्राव का संकेत ताजे मोम के कारण शहद कोष्ठों का सफेद होना होता है। वंश इस समय ताजे मोम के छोटे छोटे छत्ते मौन गृह के इधर उधर बनाने लग जाते हैं। मौनालय में रखे गए मौन वंशों का भार भी बढ़ जाता है। ऐसे संकेत मिलते हैं कि मौन वंशों का शहद इकट्ठा करने के लिए उत्साहित होना आवश्यक होता है। ये तभी संभव होता है किसान भाइयों, यदि वंश शक्तिशाली हो और उनमें बकछूट की प्रवृत्ति ना हो और वंश शिशु पालने की जगह अधिक से अधिक शहद इकट्ठा करें।
0: किसान भाइयों, बात करते हैं कि आपने शहद का निष्कासन जो है कैसे करना है। तो शहद निष्कासन के लिए केवल मोमी टोपियों से बंद भरी चौकटों को या ऐसी चौकटे जिनमें 3/4 भाग बंद हो गया हो उसे निकाल लें।
1: जी,
0: कई मौन पालक कच्चा शहद निकाल लेते हैं, जिससे कि उसमें नमी अधिक होती है। इसके कारण शहद में खट्टापन आने की संभावना जो है बढ़ जाती है। मधुश्राव के अंत में मौन वंशों की शक्ति अनुसार प्रत्येक वंश में 5 से 15 किलोग्राम शहद उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आप शहद का निष्कासन जो है मधु निकासन यंत्र की सहायता से कर सकते हैं।
1: जी,
0: ताजा शहद निकालने के बाद उसे साफ कर लेना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि शहद को दोबारा गर्म ना करना पड़े, क्योंकि इसका प्रभाव शहद की गुणवत्ता पर भी पड़ता है।
1: जी किसान भाई, यदि मौन पालन का विविधकरण की बात की जाए तो हमारे भारतवर्ष में मौन पालन मधुमक्खियों का प्रयोग केवल शहद उत्पादन या इनसे प्राप्त होने वाली मौन के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन मौन वंश कई अन्य उपयोगी पदार्थ भी देते हैं जिनके

0: बारे में अभी तक काफी अनभिज्ञता है। यदि मौन पालन सफल व्यवसाय के रूप में अपनाना है तो इस विषय की जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है कि मौन वंशों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को हम कई श्रेणियों में बांटते हैं। जैसे पहली श्रेणी की बात की जाए तो वे पदार्थ जो मधुमक्खियां वंश से बाहर से इकट्ठा करती है, उदाहरण के रूप से शहद, पराग व प्रोपिलस, और दूसरी श्रेणी के जो वंश होते हैं ऐसे पदार्थ जिन्हें मधुमक्खियां स्वयं बनाती है, उदाहरण के रूप में मोम, रॉयल जेली, मौन विष। और यदि प्रथम श्रेणी की बात की जाए तो उनमें प्रमुख है शहद। तो शहद प्रकृति की एक अमूल्य देन है, इसकी विविधता पुष्प स्रोत पर भी निर्भर करती है। किसान भाइयों, आमतौर पर स्रोत के आधार पर इसे सफेदे का शहद, सरसों का शहद या छिछड़ी का शहद इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। मौन पालन में शहद मशीन द्वारा निष्कासित किया जाता है, लेकिन जंगली मधुमक्खियों की शहद केवल छत्ते निचोड़कर निकाला जाता है। गुणवत्ता के आधार पर मशीन द्वारा निष्कासित शहद अधिक शुद्ध होता है। यदि हम विदेशों की बात करें तो विदेशों में शहद की एक अन्य किस्म की पसंद भी होती है जिसमें छत सहित ही शहद बेचा जाता है। इसे कॉम शहद के नाम से भी जाना जाता है। आम व्यक्ति केवल तरल शहद से ही परिचित है और यदि शहद जम जाए तो इसे मिलावटी समझा जाता है। ये धारणा बिल्कुल गलत है। शहद का जमना इसकी गुणवत्ता को दिखाता है कि शहद का जमना इसकी रचना और जिस तापमान में भंडारित किया हो उस पर निर्भर करता है। विदेशों में कई लोग जमा शहद अधिक पसंद करते हैं। विशेष विधि द्वारा क्रीम शहद, जो कि क्रीम की तरह दिखता है, बनाकर प्रयोग करते हैं। तो यदि शहद के हम पराग की बात करें तो पराग भी मधुमक्खियों के भोजन का एक मुख्य भाग होता है। फूलों से पराग इकट्ठा करने के पश्चात मधुमक्खियां इसे छत्ते के कोष्ठ में डालकर भंडारित करती है। कक्ष में शिशुओं की सब पराग उपलब्धता पर निर्भर करता है।
1: जी, अब बात करते हैं दूसरी श्रेणी के मौन पदार्थों की, तो उसमें आते हैं मोम और रॉयल जेली। तो मधुमक्खियों से प्राप्त होने वाला मोम कमेरी मधुमक्खी के शरीर पर उपस्थित ग्रंथियों से मिलता है। ये ग्रंथियां 14 से 18 दिन की उम्र वाली कमेरी मधुमक्खी से अधिक सक्रिय होती है। इस मोम का प्रयोग वे छत्ता बनाने में करती है, परंतु मोम बनाने के लिए मधुमक्खियों को काफी मात्रा में शहद खाना पड़ता है।
0: जी,
1: एक अनुमान के अनुसार 1 किलो मोम बनाने के लिए मधुमक्खियां लगभग 7 से 8 किलोग्राम शहद प्रयोग करती है। इसलिए मोम प्राप्त करने के लिए वंशों का प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु शहद निष्कासन के बाद बचे मोम को टूटे फूटे छत्ते, पुराने छत्ते या जंगली मधुमक्खियों के छत्ते जिन्हें वे भागते समय छोड़ देती है प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खियों के मोम का प्रयोग मौन वंशों के छत्ताधार बनाने में होता है। इसके अलावा इससे बनी मोमबत्तियों की भी काफी मांग होती है। मोम का प्रयोग कई सौंदर्य पदार्थ और पॉलिश बनाने में भी होता है। अब बात करें रॉयल जेली की, तो यह एक दुधिया रंग का पदार्थ होता है जिसे 6 से 12 दिन की आयु वाली कमेरी मधुमक्खियां अपने मुंह में स्थित ग्रंथियों से उत्पन्न करती है। यह रानी मधुमक्खी का विशेष आहार होता है और छोटी उम्र के शिशुओं का 3 दिन तक यह आहार होता है। यह एक पौष्टिक आहार है जिसमें 15 से 18% प्रोटीन और कई अन्य महत्वपूर्ण विटामिन, अमीनो एसिड और खनिज होते हैं। रॉयल जेली मनुष्य के लिए एक पौष्टिक और शक्ति प्रदान करने वाला आहार है। इसे प्राप्त करने के लिए वंश में कृत्रिम रानी पालन विधि अपनाई जाती है। जब रानी कोष्ठ में शिशु 72 घंटों की उम्र का हो जाता है तो उसे हटा दिया जाता है और कोष्ठ से रॉयल जेली चम्मच द्वारा इकट्ठी की जाती है। इसे ठंडे तापमान अर्थात रेफ्रिजरेटर में भंडारित करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम होती है।
0: किसान भाई, ये तो सुनिए आपने जानकारी पूर्ण बातचीत जिसका विषय था स्वरोजगार के लिए मधुमक्खी पालन, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी पूर्ण बातचीत से अवश्य लाभ उठाएंगे। तो अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों, आइए सुनते हैं समूह स्वरों में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना समूह स्वरों में ये लोकगीत। तो हेमलता, जब कार्यक्रम में वक्त हो चला है जानकारीपूर्ण बातचीत का। आज का विषय है मोटे अनाज का महत्व एवं संरक्षण। इस विषय पे ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर राकेश धंजल और उनसे बातचीत करेंगे कुलदीप, जिसका आज आप सुनेंगे पुनः प्रसारण।
1: जी,
2: किसान और बागवान भाई बहन, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि जगत कार्यक्रम के माध्यम से हम समय समय पर आपको विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो देखिए किसान और बागवान भाई बहनों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं मोटे अनाज के महत्व एवं संरक्षण के बारे में, और हमें इस विषय में अधिक जानकारी देंगे डॉक्टर राकेश धंजल। तो सबसे पहले तो डॉक्टर धंजल का हम अपने इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
3: धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर धंजल, जैसे कि अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में देखिए व्यावसायिक कृषि और बागवानी की जाती है, लेकिन जो पुराने समय में हिमाचल प्रदेश में या कहीं भी भारत की अगर हम बात करें तो मोटे अनाजों की बहुत काश्त की जाती थी। तो अगर हम बात करें मोटे अनाजों की, तो मोटे अनाजों की पृष्ठभूमि की और उनके इतिहास के बारे में थोड़ा सा हमारे जो किसान और बागवान भाई बहन हैं उनको आप जानकारी देना चाहें।
3: धन्यवाद। मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपने प्रश्न किया पृष्ठभूमि व इतिहास के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 1965 से 1966 तक भारत में मोटे अनाज प्रमुख अनाज थे, जिन्हें हम भोजन व अन्य रूप में उपयोग करते थे। समय के साथ साथ व हरित क्रांति के बाद वैज्ञानिकों ने देश के लोगों की थाली में गेहूं व चावल परोस दिया। चावल जो आसानी से पकने लगे व गेहूं की रोटी मोटे अनाजों की रोटी से मीठी व नरम होती को खाकर लोगों का रुझान इन फसलों की तरफ हुआ। समय के बदलाव के साथ

0: लोगों ने मोटे अनाजों को ग्रामीण व गरीबों के खाने के रूप में देखना शुरू कर दिया, जिससे इनका प्रचलन दिन प्रतिदिन कम होने लगा।
1: जी, हमारे जो किसान और बागवान भाई बहन हैं इस समय आपकी बातचीत सुन रहे हैं, तो अगर हम बात करें अनाज की जो उत्पादन है वो तो किसान भाई करते हैं, लेकिन
0: बिल्कुल
1: साथ साथ जो उसका उपयोग है या उपभोग है वो तो हमारे सभी पूरी जनता करती है। तो देखिए, अगर हम बात करें मोटे अनाजों की बात करें, तो मोटे अनाजों में कौन से अनाज जो है वो मोटे अनाजों में आते हैं?
0: मोटे अनाज जिन्हें हम आज श्री धान व मिलेट्स भी कहते हैं, यह पोषक तत्व से भरपूर अनाज होते हैं। मोटे अनाज का जिक्र करने पर लोगों के जहन में बाजरा ही आता है, क्योंकि मोटे अनाजों में की श्रेणी में बाजरा एक प्रमुख मोटा अनाज है, जबकि इस श्रेणी में अन्य अनाज भी आते हैं। मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि इन अनाजों की तीन श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे नेगेटिव ग्रेन, न्यूट्रल ग्रेन और पॉजिटिव ग्रेन। अगर हम नेगेटिव ग्रेन की बात करें तो इन अनाजों के सेवन से भविष्य में कई तरह की बीमारियों की संभावना बनी रहती है, क्योंकि इन अनाजों में पोषक तत्व जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में कारगर होते हैं की मात्रा कम पाई जाती है। इनके खाने से हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है। इस श्रेणी में मुख्यतः अनाज जो आते हैं वो गेहूं व चावल आते हैं। जहां तक न्यूट्रल ग्रेन की बात है, तो इन अनाजों के सेवन से पहले तो बीमारी नहीं होती है। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो वो ठीक हो जाती है, क्योंकि यह अनाज ग्लूटेन मुक्त होते हैं। जो ग्लूटेन से शरीर का मोटापा, गैस, कब्ज बनी रहती है, जिससे हमारी पाचन क्रिया प्रभावित होती है। तो इन ग्रेन में मुख्यतः ज्वार, बाजरा, रागी जैसे अनाज आते हैं। अगर आज से हम इन अनाजों का 20-30% भी उपयोग करना शुरू कर दें तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर हो जाता है, क्योंकि इन अनाजों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, वसा, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, जिंक आदि तत्व मौजूद होते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस रागी में दूध की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, और बाजरे में प्रति किलो 71 मिलीग्राम आयरन होता है, जो कि अनार जो हम रोज की दिनचर्या में खाते हैं तो अनार से 2 गुना इसमें आयरन ज़्यादा होता है। तीसरे और अंतिम श्रेणी की हम अगर बात करें तो उनको पॉजिटिव ग्रेन कहते हैं। यह अनाज में तो अनाज होते तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन मानव शरीर की कई बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। इसमें मुख्यतः कंगनी, सावा, कुटकी, कोदो आदि अनाज आते हैं। इनमें पोषक तत्व जैसे विटामिन बी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कॉपर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इन अनाजों के सेवन से हृदय रोग, कैंसर, गठिया, शरीर में सूजन, अस्थमा व शुगर जैसी बीमारियों से बचाव में सहायता मिलती है। मैं श्रोताओं को यह भी बताना चाहूँगा कि इन पॉजिटिव ग्रेन में गेहूँ से 10 से 15 गुना व चावल से 15 से 20 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है।
1: जी, जो मोटे अनाज की आपने बात की, तो अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मोटे अनाज के बारे में आप हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को कोई बात बताना चाहें?
0: बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपको हैरानी होगी कि प्रदेश के पहाड़ी लोग जो परिश्रमी होते हैं, परंतु समय के बदलाव के साथ साथ इनके खान पान में भी परिवर्तन होने के कारण आज प्रदेश के 53% महिलाएं व युवतियां और 50% गर्भवती महिलाएं एनीमिया की समस्या से पीड़ित हैं। इसके अलावा 5 साल से कम उम्र के 53% बच्चे खून की कमी व 13.7% बच्चे अन्य बीमारियों से कुपोषित हैं। इन सभी समस्याओं के निदान के लिए मोटे अनाजों का सेवन एक मुख्य विकल्प है, क्योंकि दवाओं की तुलना में मोटे अनाजों में मौजूदा पोषक तत्व ज़्यादा पोषण प्रदान करते हैं।
1: जी डॉक्टर धंजल, आपने बात की कि मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज की हिमाचल के बारे में आपने बात की, और साथ ही साथ इनके जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में विस्तार से आपने हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को जानकारी दी। तो क्या हमारे जो किसान और बागवान भाई बहन हैं, क्या वो मोटे अनाज

0: कंगनी से हम कंगनी की खिचड़ी, बिस्किट, केक और पुलाव भी बना लेते हैं, और सांवा से सांवा का हलवा, खीर, टिक्की बनाई जा सकती है। ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।
1: डॉक्टर धंजल, अंत में हमारे सभी किसान और बागवान भाई बहनों को कोई विशेष बात आप कहना चाहें?
0: अंत में मैं आप सभी श्रोताओं से यही निवेदन करूंगा कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका गांव स्वस्थ है, आपका गांव स्वस्थ है तो आपका जिला स्वस्थ है, आपका जिला स्वस्थ है तो आपका प्रदेश स्वस्थ है, और आपका प्रदेश स्वस्थ है तो आपका देश स्वस्थ है, और अंत में अगर आपका देश स्वस्थ है तो पूरा विश्व स्वस्थ है।
1: तो डॉक्टर राकेश धंजल जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सभी किसान और बागवान भाई बहनों के साथ साथ हमारे सभी श्रोताओं को आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी मोटे अनाजों के महत्व एवं उनके संरक्षण के बारे में। तो ये सब जानकारी देने के लिए डॉक्टर राकेश धंजल जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, ये तो सुना आपने जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय था मोटे अनाज का महत्व एवं संरक्षण। बातचीत में भाग ले रही थी डॉक्टर राकेश धंजल और उनसे बातचीत कर रहे थे कुलदीप। किसान भाइयों, जानकारी का होना हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व रखता है, और यदि जानकारी हो तो कार्य करना आसान हो जाता है, समय की बचत होती है, कार्य अतिशीघ्र हो जाता है। तो कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, अब आपको इंतजार है प्यारे से लोकगीत का। किसान भाइयों, आइए सुनते हैं आशा कंवर की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना आशा कंवर की आवाज में ये लोकगीत। तो हेमलता जी, अब चलते चलते बात कर लेते हैं कल के आकर्षणों की भी। किसान भाइयों, कल काम की बातों के तहत विषय रहेगा आलू में जल एवं पोषक तत्वों का प्रबंधन। साथ ही मनोरंजन करेंगे प्यारे से लोकगीतों के साथ, और जानकारीपूर्ण बातचीत का विषय रहेगा पशुओं में संतुलित आहार।
1: जी, और किसान भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी श्रोताओं से अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता दीप

अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम 103.7 MHz पर। आप ट्यून इन है आकाशवाणी FM शिमला के साथ। आप सुन रहे हैं FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जनसंपर्क को सुगम बनाने के लिए राज्य सचिवालय में डिजिटल गेट पास प्रणाली का किया शुभारंभ। प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने प्रदेश सरकार पर OPS व NPS कर्मचारियों के बीच DA को लेकर भेदभाव करने का लगाया आरोप। प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में कल होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा। और लाहौल स्पीति जिला में बर्फबारी से बंद दारचा श्रृंखला सड़क सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जनसंपर्क को सुगम बनाने के उद्देश्य से आज राज्य सचिवालय शिमला में डिजिटल गेट पास प्रणाली और यूनिफाइड डिजिटल कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए प्रमुख इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पहल जनता व सरकार के बीच डिजिटल सेतु का कार्य करेगी, जिससे जनसंपर्क अधिक सुविधाजनक और प्रभावी बनेगा। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली विभिन्न सरकारी विभागों को एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैठक संबंधी आग्रह भेजने की सुविधा भी प्रदान करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने एक बैठक में नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन व हिमाचल सदन और हिमाचल भवन चंडीगढ़ में आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली में निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन के कार्य की समीक्षा करते हुए परियोजना को 15 जून से पहले पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में आगामी 17 मई को होने वाले 4 नगर निगमों और शहरी निकायों में होने वाले मतदान को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के प्रमुख नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार में जुटे हैं। इस बीच

0: प्रदेश की 3,754 पंचायतों के लिए तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दूसरे दिन आज बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र भरे। किन्नौर जिला में आज विभिन्न पदों के लिए कुल 613 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जबकि लाहौल स्पीति में 67 नामांकन भरे गए। 11 मई को भी नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 12 मई को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापिस ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडरों की आपूर्ति भी बढ़ा दी है। सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में वाणिज्यिक आपूर्ति लगभग 70% तक बहाल हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कहीं भी पेट्रोल या डीजल की कमी नहीं है।
1: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने ओपीएस को कर्मचारियों के हित में बताकर लागू किया, लेकिन आज पुरानी पेंशन स्कीम अपनाने वाले कर्मचारी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि आज स्थिति ये है कि एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र सरकार की दरों के अनुसार लगभग 60% डीए दिया जा रहा है, जबकि ओपीएस कर्मचारियों को राज्य सरकार की दरों के अनुसार केवल 45% डीए मिल रहा है। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि समान पद, समान कार्य और समान जिम्मेदारियों के बावजूद कर्मचारियों के बीच इस तरह का अंतर पूरी तरह भेदभावपूर्ण है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि ओपीएस और एनपीएस कर्मचारियों के बीच डीए को लेकर बनाए गए इस भेदभाव को तुरंत समाप्त किया जाए और सभी कर्मचारियों को समान दर पर महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए। सिकंदर कुमार ने कहा कि भाजपा हमेशा कर्मचारियों के हितों के साथ खड़ी रही है और भविष्य में भी कर्मचारियों की आवाज को मजबूती के साथ उठाती रहेगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश के प्राचीन मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं हैं, बल्कि भारत की समृद्ध सभ्यता, सांस्कृतिक मूल्यों और आध्यात्मिक परंपराओं के महत्वपूर्ण प्रतीक भी हैं। उन्होंने आज कांगड़ा जिला के प्राचीन बैजनाथ मंदिर में दर्शन किए और देश व प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। राज्यपाल ने हिमाचल की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के संरक्षण व संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कल 9 मई को प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के निर्देशानुसार इन लोक अदालतों में बैंक मामलों, श्रम विवादों और बिजली व पानी के बिलों से जुड़े प्रकरणों सहित अन्य लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रंजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए अब तक करीब 63,000 मामले प्राप्त हुए हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने दारचा श्यंकला सड़क पर बर्फ हटाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लाहौल स्पीति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष व उपायुक्त किरण भड़ाना ने इस सड़क को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने के आदेश जारी किए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने दारचा श्रृंखला सड़क पर बर्फ हटाने और मार्ग बहाली का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सड़क अब डबल लेन के रूप में तैयार है, जिस पर भारी और हल्के दोनों प्रकार के वाहन चल सकेंगे। प्रशासन ने कहा है कि वाहनों की आवाजाही मौसम और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित की जाएगी। पर्यटकों, यात्रियों और स्थानीय लोगों को यात्रा से पहले जिला प्रशासन द्वारा जारी मौसम और सड़क संबंधी

0: और नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। दारचा श्रृंखला सड़क मार्ग के खुलने से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय लोगों की आवाजाही को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: नए वैश्विक आर्थिक क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज शिमला में शुरू हुआ। कोटशिरा कॉलेज शिमला और देश भगत यूनिवर्सिटी मंडी गोविंदगढ़ पंजाब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने किया। उन्होंने सम्मेलन को आज के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, जो सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।
2: जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस है, हिंदुस्तान कैसे उसमें उभरता हुआ इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, वो सारे टच होंगे। यहाँ पर जो एक्सपर्ट आए हैं, तो मुझे विश्वास है कि ये जो 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, ये अपने आप में सक्षम होगी, इनोवेटिव होगी, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़े हुए एक्सपर्ट इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: सम्मेलन में विशेषज्ञ वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, पर्यावरण व तकनीकी सहित सभी क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे, ताकि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और दैनिक खर्च चलाने के लिए लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है, जो इस सरकार की विफल आर्थिक नीतियों का सबसे बड़ा प्रमाण है। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास न तो आर्थिक दृष्टि है और न ही वित्तीय प्रबंधन की कोई स्पष्ट नीति। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश की जनता को राहत देने के बजाय केवल महंगाई बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश की जनता के हितों की आवाज उठाती रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसंपर्क को सुगम बनाने के लिए राज्य सचिवालय में डिजिटल गेट पास प्रणाली का किया शुभारंभ। प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने प्रदेश सरकार पर ओपीएस व एनपीएस कर्मचारियों के बीच डीए को लेकर भेदभाव करने का लगाया आरोप। प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में कल होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा। और लाहौल स्पीति जिला में बर्फबारी से बंद दारचा शिंकुला सड़क सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देशगान।

0: देशगान अभी आपने आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुना। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। प्रस्तुत है प्रसारण के 90 वर्ष पर श्रीयुत श्रीनिवास जोशी जी से डॉक्टर हुकम शर्मा जी की बातचीत, जिसे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला पर भी सुना जा सकता है।
1: नमस्कार श्रोताओं, रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष, हम सभी जानते हैं कि एक बहुत लंबा सफर रेडियो ने तय किया है और 90 वर्षों के इस इतिहास में हमारा श्रोताओं के साथ और आकाशवाणी से जुड़े हुए जितने भी जो कलाकार लोग रहे या किसी भी तरह से जो आकाशवाणी से जुड़े रहे, उनके निरंतर प्रयासों से आज हम एक अच्छे स्तर पर पहुंच चुके हैं और प्रसारण जो है आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हमें लगता है। 90 वर्षों के इतिहास में क्या कुछ हमने देखा, इसी संदर्भ में हमारा ये प्रयास रहता है कि आकाशवाणी से जुड़े हुए जो वरिष्ठ कलाकार रहे हैं, हमारे वरिष्ठ श्रोता रहे हैं, उनके अनुभव साझा करें हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से। और आज एक ऐसी प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा कहें या उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, मैं किन शब्दों का इस्तेमाल करूं, आपका जाना पहचाना नाम है हम सभी का, श्रीयुत श्रीनिवास जोशी जी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी आप रहे हैं और शायद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इससे भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, हर एक व्यक्ति के दिलो दिमाग में अपनी जगह बनाना हो, ऐसी ही शख्सियत हैं श्रीयुत श्रीनिवास जोशी जी। आप कला जगत में वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं, शिमला के सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और उन वरिष्ठ रंगकर्मियों में जो आज शायद सिने जगत में भी जिनका बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ भी आपका बहुत बड़ा अनुभव रहा है नाटकों की अगर हम बात करें। आकाशवाणी के ए ग्रेड के नाटक के कलाकार आप हैं बतौर कहानीकार और बहुत से नाटकों का आपने लेखन भी किया है। जोशी साहब, आकाशवाणी स्टूडियोज में हम आपका स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद।
1: प्रसारण के 90 वर्ष पर आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, 90 साल की, पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ पूरे आकाशवाणी के जितने भी सदस्य हैं उनको। मैं 1956 से 1955 में

0: ये स्टेशन खुला था 1956 या 57 से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, और मैं एक कैजुअल अनाउंसर रहा था। तब हमें केवल 10 रुपए मिलते थे। अब 90 वर्ष में क्या क्या रेडियो ने किया है, इस बारे में मैं बात करता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि मोदी के आने के बाद मन की बात एक प्रोग्राम ऐसा है जो बहुत लोगों को भाता है और बहुत सारे लोग इसको सुनते भी हैं। दूसरा, लोक संगीत के लिए बहुत बड़ा काम किया है आकाशवाणी ने। लोक संगीत मर जाता यदि आकाशवाणी ना होता तो। आकाशवाणी की वजह से लोक संगीत आज जीता है, जागता है और लोगों को बहुत पसंद आता है ये प्रोग्राम। दूसरी बात जो क्लासिकल की है, वो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि क्लासिकल में आकाशवाणी का कार्यक्रम तो अच्छा है, लेकिन उतना मन भावन नहीं है जितने मन भावन प्रोग्राम और हैं। तो क्लासिकल संगीत को बढ़ावा देना, किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, ये आकाशवाणी को सोचना होगा।
1: आपने कहा कि 1956-57 से आप आकाशवाणी शिमला से जुड़ चुके थे बतौर कैजुअल अनाउंसर। तो देखिए, जो आकाशवाणी का जो उद्घोषक होता है वो तो एक तरह से हम कहें कि आकाशवाणी का उसको चेहरा भी कहा जाता है। तो क्या क्या अनुभव रहे आपके उस दौर में, किस तरह से आकाशवाणी चलता था? हम आकाशवाणी शिमला की ही बात कर लेते हैं यहाँ।
0: मुझे 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। सवेरे का कहते थे कि आप रेडियो स्टेशन चालू करोगे, तो मैं ही आता था। एक इंजीनियर होता था और एक पियन होता था। हम केवल 3 व्यक्ति होते थे। और ये आकाशवाणी तब होता था जहाँ आजकल विधानसभा है। विधानसभा के जो निचली मंजिल है उस पर ये आकाशवाणी हुआ करता था। मैं ये कह सकता हूँ कि उन दिनों मैं राजा होता था। 150 रुपये मुझे मिलते थे 15 दिन के, दस
1: जी
0: रुपए रोज। और मैं कॉलेज में जाता था, कॉलेज वाले कहते थे, यार जोशी तू कुछ खिला दे हमको। और मैं उनको खिलाता पिलाता रहता था। काफी, मैं एक तरह से समझ लीजिए कि मेरे पास बहुत पैसा होता था।
1: जी
0: डेढ़
1: जी
0: सौ रुपया खर्च नहीं होता था उस समय में। आज तो 150 रुपये की कोई वक़्त ही नहीं है, लेकिन उस वक्त ऐसा था कि 150 रुपया बहुत होता था। हम गेंदामल हेमराज के यहाँ जाते थे और वो बुना लेते थे। चेक मिलता था तो हमारा बैंक में अकाउंट तो होता नहीं था, तो बस हम गेंदामल हेमराज को 8 आने देते थे या 1 रुपया देते थे, पता नहीं। 149 रुपये वो हमको पकड़ा देता था।
1: जी
0: तो 149 रुपये में हम खूब मस्ती करते थे, आनंद लेते थे। और हमको ट्रेनिंग दी थी प्रतिमा पुरी ने। प्रतिमा पुरी आकाशवाणी की वो कर्मचारी हैं जिनका पहले पहले मुखड़ा दूरदर्शन ने देखा था।
1: जी
0: दूरदर्शन में जब पहले दफा आई थी तो प्रतिमा पुरी आई थी समाचार पढ़ने के लिए। प्रतिमा पुरी यहाँ से दिल्ली चला गई थी जब उनकी शादी हुई थी उसके, तो दिल्ली चली गई थी। दिल्ली में जा करके उन्होंने ये कार्यक्रम देना आरंभ किया था।
1: तो उस दौर में और भी कोई बहुत से लोग रहे होंगे। सुबह तो आपने कहा कि आप 3 लोग ही आते थे मॉर्निंग ट्रांसमिशन शुरू करने के लिए,
0: हाँ
1: लेकिन क्योंकि उसके अलावा भी जो अगले ट्रांसमिशन चलते थे, आपने कहा जैसे कि लोक संगीत के लिए बड़ा योगदान रहा, और शायद हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों के लिए भी मैं मानता हूँ कि आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा योगदान है कि हमारा प्रयास है कि जीवंत रहे ये बोलियाँ भी।
0: हाँ
1: तो
0: ठीक
1: उस दौर
0: है।
1: में भी कुछ ऐसा चलता था क्या?
0: हाँ, तब SSS ठाकुर हुआ करते थे, वो प्रोड्यूसर थे शायद यहाँ। और हिमाचली प्रोग्राम उन्होंने आरंभ किया था सबसे पहले। उस वक्त खेमराज गुप्त होते थे और कलावती होती थी, विजय सरस्वती होते थे, दिवाकर दत्त होते थे, और भी बहुत सारे लोग होते थे। मतलब विजय कुमार पंडित होते थे और अमरनाथ, दो अमरनाथ होते थे, दोनों के दोनों यहीं थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता था। इकट्ठे बैठ के करते थे वो प्रोग्राम, सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे और एकत्र होकर के वो प्रोग्राम करते थे। उस वक्त काली अचकन पहना करते थे और चूड़ीदार पजामा पहनते थे सारे लोग, सिवाय महिलाओं के। और प्रेमलता जी होती थी, हाँ,
1: जी
0: प्रोग्राम में हिस्सा लेती थी। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होता था। और जैसा आपने कहा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जो हिमाचली फोक है उसको अगर बढ़ावा दिया है तो आकाशवाणी ने दिया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता था, बहुत आनंद आता था उस प्रोग्राम को सुनने में। अब प्रोग्राम तो अभी भी अच्छे होते हैं, लेकिन उस वक्त का हमारे

0: जो ध्यान उस तरफ चला जाता था वो बहुत ज्यादा जाता था। हम उस वक्त बच्चे होते थे, एक तरह से जवान होते थे, और जवानी में हम प्रोग्राम को सुनते थे
1: जी,
0: और हमको बहुत अच्छा लगता था उस वक्त।
1: तो जोशी जी, आपने कहा कि 150 रुपया मिलता था, एक तो उस वक्त के आप एकदम से शहनशाह होते थे कि 150 रुपया आपके पास है, तो कॉलेज में जाके, कॉलेज में तो हीरो थे ही, लेकिन जब आप आम लोगों में जाते थे तब भी तो लोग आपसे मिलते होंगे कि ये है वो जो रेडियो में बोलते हैं, तो वहाँ भी कुछ अनुभव आपके रहे?
0: हाँ, बहुत सारे रहे। एक अनुभव मैं सुनाता हूँ, जब हमको आज़ादी मिली थी, जब ये स्टेटहुड मिला था हमारे को,
1: जी
0: तब इंदिरा गांधी जी आई थी, तो सतीश गर्ग होते थे यहाँ पर पैक्स।
1: जी
0: सतीश गर्ग ने कहा कि तुम अनाउंसमेंट करोगे वहाँ से,
1: जी
0: जिंदा अनाउंसमेंट, तो मतलब लाइव देना था। तो इंदिरा जी आई और आकर के मेरे सामने खड़ी हो गई।
1: जी जी
0: मैं टका बेंच में बैठा होता, टका बेंच उस वक्त टका कहते थे, 2 पैसे का,
1: जी
0: 2 पैसे को टका कहते थे, इसलिए 2 पैसे लगते थे वहाँ जाने के,
1: टका बेंच पे जाने के दो
0: टका
1: पैसे
0: बेंच में 2 पैसे लगते थे। तो टका उसको नाम दिया गया था क्योंकि वो 2 पैसे में आदमी अंदर बैठ सकता था। तो इंदिरा जी मेरे सामने खड़ी हो गई,
1: जी
0: मैं नर्वस हो गया बिल्कुल, और थोड़ी सी देर के लिए शायद आकाशवाणी में मेरे शब्द नहीं निकले होंगे। मैं खड़ा हो गया और वो भी खड़ी हो गई, और आमने सामने हम दोनों के दोनों हो गए। और फिर जब वो बोलने लगी तब कुछ शांत हुआ और मेरा मन जो अस्थिर हो गया था वो स्थिर हो गया।
1: जी जी हाँ, इतनी बड़ी हस्ती के एकदम से सामने आने पर, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा गौरव तो महसूस हुआ होगा कि आप आकाशवाणी का
0: हाँ,
1: वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे
0: तो
1: थे।
0: ये गौरव तो हमेशा रहा है। जब कभी भी मैं आकाशवाणी में आया हूँ तो मुझे एक गौरव प्राप्त होता है, और इसीलिए मैं आकाशवाणी का कोई भी कार्यक्रम हो वो ठुकराता नहीं हूँ, उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ।
1: जी, और जोशी जी, जैसे कि हमने शुरू में भी कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के आप सेवानिवृत्त अधिकारी भी हैं, और इतने महत्वपूर्ण पद पर कार्य करने के बाद फिर भी आप कला के क्षेत्र से जुड़े रहे, तो इन दोनों में एक तालमेल बैठाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ओर आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं प्रशासनिक अधिकारी की, दूसरी ओर बतौर नाट्य कलाकार आप मंच पर भी एक बतौर रंगकर्मी कार्य कर रहे हैं, रेडियो के नाटकों में भी भाग ले रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों में आप तालमेल कैसे बिठाते हैं?
0: ये कहते हैं कि अगर वेयर देयर इज विल देयर इज द वे, जहाँ कहीं भी आप चाहते हो कि ऐसा हो तो हो जाता है, क्यों नहीं होता है। मैं जब आकाशवाणी में अमरूद का पेड़, एक मेरी बहुत मशहूर कहानी है, कहानी समझ लो, एक संवाद है अमरूद का पेड़। वो अमरूद का पेड़ कहाँ हुआ था? वो जोगिंदर नगर में था,
1: जी
0: और जोगेंद्र नगर में मैं SDM होता, तो SDM होते हुए भी मैंने वो जो अमरूद का पेड़ लिखा, और लिखने पर उसको बहुत लोगों ने पसंद किया, जोगेंद्र नगर वालों ने तो बहुत ही पसंद किया, और वो मैंने आकाशवाणी से दिया था। पहला प्रोग्राम जो दिया था है आकाशवाणी से, वो ये दिया था जब SDM में हो गया था। उसके बाद मैं खुद तो नाटक नहीं करता था, लेकिन मैं बहुत सारे को एड दिया करता था। जो कोई भी नाटक वाला आता था उसको एड दे देता था, मदद कर देता था, वित्तीय स्थिति उनकी सुधर सके इसलिए काम करता था। और इसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हुआ है। आकाशवाणी में मैं लगातार आता रहा,
1: जी
0: मैंने लगभग यहाँ के लिए 150 के करीब ड्रामे किए हैं, और 150 मैंने यहाँ पर ये नाटक लिखे हैं और वो दिए हैं।
1: जी
0: खासकर हम नहीं सुधरेंगे, उसकी मैंने पुस्तक भी निकाली, हम नहीं सुधरेंगे, और वो आकाशवाणी ने प्रसारित किए थे, और बहुत अच्छा मेरा संबंध आकाशवाणी के साथ हमेशा रहा है।
1: तो जोशी जी, एक प्रशासनिक अधिकारी को कभी कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं, लेकिन कला जगत से जो आप जुड़े रहे हैं, कला जगत से तो वही व्यक्ति जुड़ता है जिसके दिल में कोमलता हो, यानी कुछ ऐसी भावनाएं जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी के मन में शायद कम हो सकती है, क्योंकि वहां आपको अपनी ड्यूटी निभानी है, तो इन दोनों में तो कैसे आपने सामंजस्य बिठाया? कभी कभी ये सुनने को मन करता है कि बताएं आप हमें कि ऐसा कैसे हो गया कि एक प्रशासनिक अधिकारी भी, एक बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकार भी, एक बहुत प्रतिष्ठित नाटककार भी, ड्रामा आर्टिस्ट आपके द्वारा मुझे भी आपके साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैंने जब भी देखा तो जिस भावनात्मक जो आपकी शैली

0: ड्रामा में रोल करने की है, तो हमें तो कभी कभी हम तो खो जाते हैं स्वयं आपके जब आप डायलॉग्स बोलते हैं, तो ये सब कैसे हुआ?
1: देखिए, लोग ये समझते हैं कि कोमलता का अर्थ ये है कि वो बहुत वीक सा एडमिनिस्ट्रेटर है।
0: जी
1: ये मैं नहीं मानता हूँ। कोमलता के साथ जब आपने कोई चीज लिख दी तो वो लिख दी, बस वो करनी है, हर हालत में करनी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैंने कठोर निर्णय भी लिए होंगे, लेकिन उनमें भावना ये रही कि क्योंकि मैंने लिख दिया एक दफा, ये अवश्य होना चाहिए। और इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं जो नाटक भी लिखता हूँ या जो कुछ यहाँ करता हूँ वो दिल से करता हूँ। और पहले ज़माने में ये होता था कि 3 आवर्स होते थे। पहले दिन आप रिहर्सल करते थे, रीडिंग करते थे, दूसरे दिन रिहर्सल करते थे, तीसरे दिन रिकॉर्डिंग होती थी।
0: जी
1: ऐसा प्रोग्राम होता था। यहाँ विजय सरस्वती होते थे, विजय सरस्वती के निर्देशन में मैंने बहुत सारे काम किए हैं। पीसी जोशी होते थे, उनके निर्देशन में मैंने बहुत सारे नाटक किए हैं। और इस प्रकार से हर एक के साथ मैंने काफ़ी काम किया। विजय कुमार पंडित होते थे,
0: जी
1: वो डायरेक्टर होते थे नाटक के, तो नाटक मैंने उनके साथ भी किए हैं, हर एक के साथ किए हैं नाटक। तो मैं ये समझता हूँ कि कोमलता को आप ये ना समझें कि कोमल है इसलिए ये वीक है, ये वीक आदमी नहीं है। कोमल होने पर भी आप एक सख्त आदेश दे सकते हैं।
0: प्रसारण विधा से आप बहुत लंबे अरसे से जुड़े रहे, आपने क्या कुछ परिवर्तन देखे? आकाशवाणी शिमला की ही हम चर्चा कर लेते हैं इस दौरान। प्रसारण विधा में आकाशवाणी शिमला को लेकर आप क्या अपने विचार व्यक्त करेंगे कि किस तरह से आकाशवाणी शिमला का सफर शुरू हुआ और अब कहाँ पहुंचा है?
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आकाशवाणी की अपनी बिल्डिंग है। आज ये जो है, पहले कहाँ होते थे हम? विधानसभा में होते थे। विधानसभा से हम शिफ्ट किए
0: वर्तमान
1: यहाँ,
0: में जी
1: शिफ्ट किए, और ये बिल्डिंग आपकी अपनी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सर्वजन हिताय वाला प्रोग्राम है आपका, वो हो चला हुआ है, और उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से आकाशवाणी को चला रखा है।
0: जोशी जी, आज आप आकाशवाणी स्टूडियोज में आए और प्रसारण विधा से जुड़ी हुई जो तमाम आपने अपने जो विचार साझा किए, अपने जो अनुभव साझा किए, वो सभी जानकर बहुत अच्छा लगा। बहरहाल, आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रसारण के 90 वर्ष पर श्रीयुत श्रीनिवास जोशी जी से डॉक्टर हुकम शर्मा जी की बातचीत अभी आपने सुनी। हम आकाशवाणी के शिमला के अंदर से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है।
3: सुरीला सफर संगीत का साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो क्या कहना उस प्रीत का।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। ये वक्त है भूले बिसरे गीत का।

तारों की टिमटिमाहट और मदहोश करने वाली ठंडी हवाओं के साथ हिल्स क्वीन शिमला के दिल की धड़कन एफएम शिमला पर रात के इन खामोश पलों में शुरू होता है संगीत का सुरमई सफर। गुड इवनिंग, नमस्कार, मैं स्वाति रोगरा हाजिर हूँ सुनहरे दौर के भूले बिसरे गीतों के साथ। ऐसे गीत जिन्होंने ब्लैक एंड वाइट दौर से यादों की रंगीन दुनिया का सफ़र तय किया है, और ये गाने आज भी हमें उन मीठी यादों में लेके जाते हैं जब हिंदी सिनेमा में गाने महज शब्दों से नहीं जज्बातों से बनते थे। तो एंजॉय कीजिए भूले बिसरे गाने एफएम शिमला पर, और कार्यक्रम का पहला गाना आपको सुनवा रही हूँ

Lüschke, Lüschke, Lünische. Lüschke, Lüschke,

मैं तेरी कॉपी ड्राइव, तू मेरा कॉपी ड्राइव, मैं तेरी कॉपी ड्राइव।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में शरारत फिल्म का ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा था शैलेंद्र ने और इसे कंपोज किया था शंकर जयकिशन ने। आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर।
1: मैं विक्रांत कौंडल, अतिरिक्त सचिव हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शिमला, श्रोताओं, आगामी 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक अदालत में आप सुलह समझौते के आधार पर लंबित मामलों, जिसमें सिविल, क्रिमिनल, कंपाउंडेबल, ट्रैफिक चलान, बैंक ऋण मामले तथा पारिवारिक विवाद जैसे मामलों का त्वरित समाधान पा सकते हैं। लोक अदालत का है यही आधार, न किसी की जीत न किसी की हार। धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम भूले बिसरे गीत, और अब कार्यक्रम में अगला गाना गूंज उठी शहनाई फिल्म से गीता दत्त, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें, बोल भरत व्यास के संगीत, वसंत देसाई का।

बड़ी हिट रोमांटिक फिल्मों में से एक थी और इसमें लीडिंग रोल्स में थे राजेंद्र कुमार और अमिता। पर क्या आपको मालूम है, इस फिल्म के लिए अमिता की जगह पहले आशा पारेख को कास्ट करने के बारे में विचार किया जा रहा था, लेकिन डायरेक्टर विजय भट्ट ने उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था दैट शी इज़ नॉट अ स्टार मटीरियल। लेकिन किस्मत का खेल देखिए जनाब, गूंज उठी शहनाई से रिजेक्ट होने के बाद ठीक उसके अगले दिन नासिर हुसैन ने आशा पारेख को एक्टर शमी कपूर के साथ कास्ट किया लीडिंग हीरोइन के रोल में और फिल्म थी दिल देके देखो। ये फिल्म रिलीज़ हुई, लोगों को पसंद आई और आशा पारेख का काम सबको पसंद आया, उन्हें फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे और रातों रात आशा पारेख बन गई ह्यूज स्टार। अपनी एक्टिंग स्किल्स, काम के लिए डेडिकेशन और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस के लिए आशा पारेख को आज भी याद किया जाता है। तो आइए सुनते हैं आशा पारेख की डेब्यू फिल्म दिल दे के देखो का ये टाइटल सॉन्ग, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना जिसे कंपोज किया उषा खन्ना ने।

0: और इसी मेलोडियस गाने के साथ भूले बिसरे गीतों में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं एफएम शिमला के साथ।
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
2: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

0: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज एट 9। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनके सरकार प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आर एन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस

0: और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहा है।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
3: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
4: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिदाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिदाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में ये लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुँच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अड़िग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर

0: विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज

0: 328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर 94.48 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आज इस प्रोग्राम में जिस फिल्म के गाने, किस्से, कहानी आप सुनेंगे, ये मूवी अर्ली 2000 एरा की रोमांटिक फिल्मों में से एक है और फैमिली एंटरटेनमेंट के साथ साथ इस मूवी को रोमांटिक ड्रामा फिल्मों की कैटेगरी में गिना जाता है। ईयर 1998 में रिलीज हुई ये फिल्म है जब प्यार किसी से होता है।

थी। यानी आपको भले ही उस दौर की किसी फिल्म की कहानी या किरदारों की कोई बात याद नहीं होगी, बट उस टाइम के जो गाने थे ना वो बेशक याद होंगे। खासकर मिलेनियल्स की बात करें तो 90s एरा में ये जनरेशन कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, इनके गाने सुनते सुनते बड़ी हुई है। और नॉस्टैल्जिक एरा की सुपरहिट फिल्में और उनके गाने आज भी बड़े शौक से जो है लोग सुनना पसंद करते हैं। उसी दौर की ये कमाल की फिल्म है जब प्यार किसी से होता है। हालांकि इसी नाम की 60 के दशक में भी फिल्म बनी थी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ईयर 1998 में रिलीज़ हुई इस फिल्म की। ये मूवी सलमान खान और ट्विंकल खन्ना द्वारा अभिनीत एक क्यूट रोमांटिक स्टोरी है, जिसमें आदित्य नारायण ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अहम भूमिका निभाई है। ये फिल्म उस साल की दूसरी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, जिसके गाने खास तौर पर खूब पसंद किए गए।

ये मेलोडियस गाने आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। ये है प्रोग्राम एक फिल्म से, और आज प्रोग्राम में बात हो रही है ईयर 1998 की। ये फिल्म है जब प्यार किसी से होता है। इस फिल्म की कहानी लिखी मशहूर पटकथा लेखिका हनी ईरानी ने और फिल्म का निर्देशन किया दीपक सरीन ने। इस फिल्म के लिए लाजवाब गाने लिखे जाने माने गीतकार आनंद बख्शी ने, और फिल्म के शानदार म्यूजिक और गानों को कंपोज किया 90s की फेमस म्यूजिक जोड़ी जतिन ललित ने। अपनी मीठी आवाजों में गाने रिकॉर्ड किए लता मंगेशकर, कुमार सानू, अलका याग्निक, सोनू निगम और उदित नारायण ने। जब किसी से प्यार होता है तो लाइफ में अच्छे बुरे क्या चेंजेस आते हैं, इसी प्लॉट पर बनी है ये फिल्म। और इस फिल्म की कहानी है एक अमीर प्लेबॉय सूरज की, जिसे शर्मीली बुटीक मैनेजर कोमल से प्यार हो जाता है। कोमल की शर्त पर वो अपनी जीवन शैली बदलता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक बच्चा सामने आता है और पता चलता है कि वो सूरज का बेटा है। यहाँ से फिल्म की कहानी नया मोड़ ले लेती है, और फिल्म के हीरो यानी सलमान खान के किरदार में जो चेंजेस आते हैं, वो किस तरह अपनी बुरी आदतों को छोड़कर एक मैच्योर फैमिली मैन बनता है, इसी प्लॉट पर फिल्म की कहानी आधारित है। इस फिल्म में मुख्य किरदारों में है सलमान खान, ट्विंकल खन्ना, अनुपम खेर, जॉनी लीवर, फरीदा जलाल, सईद जाफरी, मुश्ताक खान, हिमानी शिवपुरी, बाल कलाकार आदित्य नारायण, और फिल्म में नम्रता शिरोडकर का छोटा सा लेकिन प्रभावशाली किरदार है। तो जी, अब आपको कार्यक्रम का ये अगला गाना जो मैं सुनवा रही हूँ, ये पिक्चराइज है सलमान खान और नम्रता शिरोडकर पर।

नम्रता शिरोडकर और सलमान खान पर पिक्चराइज ये गाना अभी आपने एंजॉय किया। एक फिल्म से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं FM शिमला पर। आज की फिल्म है जब प्यार किसी से होता है, और इस फिल्म के साथ ही दोस्तों नम्रता शिरोडकर का फिल्मी सफ़र भी शुरू हुआ था। ट्विंकल खन्ना और नम्रता शिरोडकर की सलमान खान के साथ ये पहली और आखिरी फिल्म थी, और दूसरी किसी फिल्म में उन्होंने सलमान के साथ काम नहीं किया। वो पर्दे पर उनके साथ स्क्रीन शेयर करते नज़र नहीं आए, और परदेस फिल्म के बाद ना आदित्य नारायण की भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट ये लास्ट मूवी थी। प्यार और जिम्मेदारी के बीच बदलाव को दर्शाती ये फिल्म, जिसका संगीत शानदार है, दृश्य और डायलॉग्स इमोशनल हैं, सलमान खान का रोमांटिक और करिश्मेटिक स्टाइल और ट्विंकल खन्ना की मासूमियत इस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाते हैं। टिप्स इंडस्ट्रीज़ के बैनर बनी ये फिल्म ईयर 1998 की कामयाब फिल्मों की लिस्ट में शामिल थी। स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड की लोकेशंस पर शूट हुई इस फिल्म का जो फिल्मांकन है वो भी शानदार रहा, जो फिल्म देखने वालों को फिल्म के अंत तक जो है अपनी ऑडियंस को इस फिल्म ने बांधे रखा, और इस फिल्म के सुपरहिट मेलोडियस गाने उस दौर में भी खूब चले, आज भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं। सो ओवरऑल ईयर 1998 की ये रोमांटिक ड्रामा म्यूजिकल फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग है। तो सुनते हैं इस फिल्म का एक और गाना FM शिमला पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: और इसी गाने के साथ एक फिल्म से प्रोग्राम में आज बस इतना ही। आज की हमारी फिल्म थी ईयर 1998 की जब प्यार किसी से होता है।
1: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
2: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
0: FM शिमला पर ये वक्त है कुछ और बढ़िया से गाने एंजॉय करने का। ये है प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन। प्रोग्राम का ये पहला गाना ये टाइटल सॉन्ग तेरे मेरे फेरे फिल्म से।

0: अगर आप उस जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
1: आपका थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है।
0: आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: ये लव सॉन्ग्स आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला पर 103.7 मेगाहर्ट्ज पर अपनी रेडियो दोस्त स्वाति डोगरा के साथ।
1: मैं विक्रांत कौंडल, अतिरिक्त सचिव हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शिमला, श्रोताओं, आगामी 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक अदालत में आप सुलह समझौते के आधार पर लंबित मामलों, जिसमें सिविल, क्रिमिनल, कंपाउंडेबल, ट्रैफिक चलान, बैंक ऋण मामले तथा पारिवारिक विवाद जैसे मामलों का त्वरित समाधान पा सकते हैं। लोक अदालत का है यही आधार, न किसी की जीत न किसी की हार। धन्यवाद।

0: पानी से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है उसे संभाल कर रखना, चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, प्रेम या कोई अच्छा इंसान। अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ों में ये गाना आपने सुना लाल सिंह चड्ढा फिल्म से, और इसी गाने के साथ दिल की आवाज़ भी सुन प्रोग्राम में आज बस इतना ही।
1: किसान हो या युवा या कोई पंजीकृत महिला संगठन, आप अपने कारोबार को सशक्त बनाने हेतु आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर विज्ञापनों का प्रसार करवाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं।
2: शुभ वाणी, भाववाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ट्यून इन है आप एफएम शिमला के साथ, और इस फ्रीक्वेंसी पर अब शुरू होती है गजलों की ये रुमानी महफिल।

ये दिलकश गज़लें आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आँखों में शोखी जुल्फों में बादल, आँखों में शोखी जुल्फों में बादल, बातों में ताजगी रखती है एक लड़की है प्यार।

जुल्म के सारे हुनर कुछ यूं आजमाए गए, जुल्म के सारे हुनर कुछ यूं आजमाए गए, जिसने जुल्म सहा वही जुल्मी कहलाए गए।

0: इसी के साथ गज़लों की इस रुमानी महफिल में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ।
1: सरकारी विभाग हो या बैंक या फिर कोई सार्वजनिक उपक्रम यानी PSU,
2: आप सस्ते दामों पर आकाशवाणी के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का आकाशवाणी के माध्यम से विज्ञापनों द्वारा प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुंचा सकते हैं।
1: आकाशवाणी की पहुंच प्रदेश के दूर दराज ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों तक है
2: और आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर ये सेवाएं उपलब्ध हैं।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
2: नियम और शर्तें लागू।

आप जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आइए अब हमारे साथ आनंद लीजिए कुछ सदाबहार गीतों का। कार्यक्रम का पहला गाना मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की।

यसुदास की आवाज़ में ये गाना आपने सुना सावन को आने दो फिल्म से। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन है आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। आनंद ले रहे हैं कुछ सदाबहार नगमों का और आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं 70 के दशक के कुछ सदाबहार गाने। वक्त की सबसे शानदार बात यह होती है दोस्तों कि वो बीत जाता है, अच्छा हो या बुरा, बस बीत जाता है। कभी कुछ पल हमें गमगीन कर देते हैं तो कभी खुशियों की बौछार ले आते हैं, और इन सब के बीच जिंदगी का सफ़र उतार चढ़ावों के साथ यूं ही चलता रहता है। किशोर कुमार की आवाज़ में सुनिए अभिमान फिल्म से ये गाना।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में ये गाना आपने सुना बुढ़ा मिल गया फिल्म से। अगला गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में पिया का घर फिल्म से।

तोड़ कर जोड़ लो चाहे हर चीज़ दुनिया में, सब कुछ काबिले मुरम्मत है एतबार के सिवा। कार्यक्रम का ये आखिरी गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में दर्द फिल्म से।

0: इसी गीत के साथ सदाबहार नगमों में आज बस इतना ही।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
4: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
3: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
4: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
3: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जाँच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ECI नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जाँच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े

0: participate in the Somnath Amrit Parv on the 11th of this month at Prabhas Patan in Somnath. Speaking to media, Gujarat State Cabinet Minister Jitubhai Vaghani said that various events will be organized at Somnath as part of the Somnath Amrit Parv, showcasing India's rich cultural and heritage traditions. And that is the end of this news bulletin.
1: मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी एफएम शिमला। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं और अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।